0: जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1-7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5-6 विकास की अवस्था के बाद 40-60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1-2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3-7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1,500 PPM का 3-5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5-3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1-1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बात BAU के साथ में। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक किराना दुकान चलाते हैं। और जब हम किराना दुकान की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर समाज के हर तबके के लोग आते हैं और वहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं। एक किराना दुकान में जब कोई बैठता है तो वहाँ पर कई बार ऐसे 4-5 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और अलग अलग बातों के बारे में वो चर्चा करते हैं, देश विदेश के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके समाज में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या उनकी परंपरा है उसके बारे में भी बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि किराना दुकान जो होता है वहाँ पर हर बात होती है, हर तरह की बात होती है और आप कह लीजिए कि हमारे जो समाज की होती है वो एक तरह से आत्मा है। हर किसी के घर पे राशन तो पहुंचता ही है, साथ ही हर किसी के घर की गपशप और हर किसी के घर की परेशानी भी वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही विस्तारित तरीके से वहाँ पर चर्चा की जाती है। ऐसे ही किराना दुकान एक संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत कुमार। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जितनी भी इनके जितना भी इनसे बन पड़ता है ये अपने आसपास के लोगों की मदद भी करते हैं और अगर इनके पास कोई जानकारी होती है, किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी है या फिर कुछ बदलाव हुए हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, ये बातें भी लोगों तक पहुँचाते हैं। और इनके पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म कह दीजिए है कि किराना दुकान है इनके पास। बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की परेशानी बताते होंगे और इनसे जहां तक हो सके उनकी परेशानी का समाधान करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रंजीत कुमार का। रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैम।
0: तो रंजीत जी आप बताइए कि किराना दुकान आप कब से चला रहे हैं?
1: ये पारिवारिक है, बहुत पुराना है, करीब 10-20 साल हो गया।
0: 10-20 साल हो गया। तो जब किराना दुकान में आप बैठते हैं तो बहुत तरह तरह के लोग आते होंगे, बहुत तरह तरह की परेशानी बताते होंगे।
1: जी जी।
0: तो रंजीत जी आपके किराना दुकान में तरह तरह के लोग आते होंगे, उनके तरह तरह की परेशानियां वो आपको बताते होंगे।
1: जी जरूर बताते हैं।
0: तो जब आप उनकी परेशानी सुनते हैं तो आप अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनकी मदद हो सके?
1: जी जरूर करते हैं।
0: तो किस तरह की मदद आप करते हैं?
1: पहले तो आर्थिक रूप से जरूर मदद कर देते हैं और क्या कहता है, न्यूज के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है, पेपर के द्वारा होती है, फेसबुक के द्वारा होती है, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो इस तरह की होता है। अब ऐसा नहीं कि बोल उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, वेरीफाई करके मतलब जो सही जानकारी होती है वही सिर्फ देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो मतलब आप जानकारी पहुंचाते हैं लोगों तक और सही?
1: जी।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जानकारी, न केवल जानकारी पहुंचाते बल्कि उसको वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं।
1: जी।
0: जो सही बात है वही लोगों तक पहुंचे, ये बहुत ही अच्छी बात है। जानकारी पहुंचानी दूसरी बात होती है और सही जानकारी पहुंचानी सबसे ज़रूरी है। तो आप सामाजिक कार्य करते हैं तो मतलब कब आपने ऐसा काम करना शुरू किया और लोगों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, तो ये कब से आपने शुरू किया?
1: ये मैम करीब 2004 या 2005 से ये रेगुलर चल रहा है।
0: पहली बार आपने किसी की किस तरह की मदद की थी और क्यों की थी?
1: पहली बार मैम ये क्या कहता है, एक आदमी बीमार पड़ा था तो उनको हमने मायागंज ले गए थे, वहाँ डॉक्टर से जितना देर भी टाइम लगा सब कि वो प्रोवाइड करवाएं, इलाज करवाएं, फिर वापस आ गए। फिर इस टाइप से मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये फैमिली को सिर्फ देखते हैं, समाज में जो भी सारे को देख करते हैं, कोशिश करते हैं।
0: तो जिनकी आप पहली बार आपने मदद की थी वो क्या बुजुर्ग आदमी थे?
1: जी मैम।
0: कई बार हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आसपास बच्चे नहीं हैं।
1: जी जी।
0: परेशान हो जाते हैं वो।
1: जी।
0: तो ऐसे और भी आसपास अभी मतलब अभी भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं?
1: जी।
0: जिस तरह की भी मदद हो।
1: जी।
0: जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पहली बार किसी बुजुर्ग को आप हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो इसके साथ आप और आर्थिक सहायता भी करते हैं, तो आपने कभी किसी की आर्थिक सहायता की हो तो किस तरह की वो आर्थिक सहायता थी?
1: आर्थिक सहायता में यूँ क्या कहता है, उनको दवाई जब दिला रहे थे तो उनके पास पेमेंट का इशू था, तो हमने पेमेंट इशू क्लियर कर दिया और वो ये नहीं सोचे कि वो कब देंगे।

0: कोई दिक्कत नहीं।
1: बस आपने यही सोचा कि दवाई के लिए पैसे दे रहे हैं तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है। तो और जब आप आर्थिक सहायता करते हैं रंजीत जी, तो क्या आप को कभी ऐसा लगता होगा कि जितनी उन्हें ज़रूरत है सामने वाले को, उतनी जो रकम है हमारे पास नहीं है, तो फिर आप किसी और की भी मदद लेते हैं या फिर आपसे जितना बन पड़ता है वही आप करते हैं?
0: कोशिश करते हैं मैम कि दूसरे से भी हेल्प लें, लेकिन सब आदमी नहीं समझता है, तो जहाँ तक मेरा अपना होता है उतना ही करके छोड़ देते हैं मैम, और उनको रास्ता बतला देते हैं कि इस रास्ते से आप जाइए तो अगला आप और ज़्यादा आपका सहायता हो जाएगा मैम।
1: तो आपके किराने दुकान पे कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जिन्हें कोई राशन नहीं लेना या कोई और चीज नहीं खरीदनी?
0: जी जी जी,
1: वो केवल पूछने आते होंगे कि भैया कोई परेशानी है तो उसके बारे में बता दीजिए, योजना के बारे में जानने आते होंगे। तो कई सारे कार्ड बनते रहते हैं, कई सारे और भी चीजें होती है, तो उसमें भी आप लोगों को मदद करते हैं?
0: ये आयुष्मान योजना जो निकला था उसमें भी बहुत सारे आदमियों को बताते रहते थे हमेशा, और ये स्वच्छ भारत अभियान का जो टॉयलेट वाला सिस्टम निकला था तो उसमें भी बहुत सारे को बतलाए थे, बहुत सारे को बतलाते रहते थे, अभी भी बतला देते, बहुत अभी भी छूटा हुआ है कि बहुत जगह अभी भी टॉयलेट नहीं बना है, तो उस बारे में भी बतलाते हैं कि इस रास्ता जाइए आपका टॉयलेट बन जाएगा, स्टेप से करते रहते हैं।
1: तो रंजीत जी, आप लोगों को टीका के बारे में भी जागरूक करते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग टीका से डरते हैं।
0: जी जी जी मैम।
1: तो जब आप उन्हें टीका के बारे में बताते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें बताते हैं?
0: बतलाते कि नहीं, ये सरकार का जो टीका है ये वेरीफाई किया हुआ है, सब चीज सही है, आपको अपंग जो होता है वो नहीं होगा, बौंझपन नहीं होगा, इसी तरह से समाज में फैला हुआ ये सुई लेने से मतलब हो जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं नहीं ये कुछ नहीं होगा, हम भी लिए हैं और बहुत कुछ दिलाए में कहीं कोई इस तरह का शिकायत नहीं आई है अभी तक।
1: तो रंजीत जी, आपके जब किराना दुकान के इन सब के बारे में बातें तो होती हैं, लोग अपनी परेशानी लेकर भी आते होंगे, लोग अपने घर की परेशानी घर की बात भी लेकर आते होंगे, और कई बार जैसे अभी त्यौहार आने वाला है तो त्यौहारों के बारे में भी बात करते हैं, तो क्या आप कभी उन्हें कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं? जैसे अभी विश्वहरी पूजा आने वाली है तो क्या इसके बारे में भी आप उन्हें बताते हैं?
0: हाँ हाँ जरूर बताते हैं मैम।
1: तो क्या कहानी जो है विश्वहरी पूजा के पीछे की, वो कहानी आप हमें हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
0: जरूर मैम, जरूर सुनाना चाहेंगे, क्यों, और अगर हम कहीं बाहर किसी राज्य में जाते हैं खासकर बंगाल तो जरूर जाते हैं, तो वहाँ इस का जो कहानी है ये बेला विश्वहरी वाला, तो उसको और वहाँ चाव से सुनते हैं, वहाँ बंगाल में उतना नहीं है इसकी जानकारी, तो जब हम लोग जाते हैं यहाँ का गाना वीडियो जो भी चीज़ होता है तो ये सब उन लोग को बतलाते हैं, तो और वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, कभी कभी आते भी हैं वो लोग देखने के लिए यहाँ।
1: आप हमारे श्रोताओं को कहानी सुनाइए रंजीत जी।
0: जरूर मैम, जरूर सुनाइए। ये कहानी है बिहला और विश्वहरी के लिए, अभी जो अभी जल्दी इधर आने वाले हैं। ये कहानी है ऐसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये नाथ नगर चंपा नगर से शुरुआत होती है, इस कहानी में एक चांद सौदागर रहते थे, चांद सौदागर था, वो शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी के जो परम भक्त थे, तो शिव जी की पुत्री कथित पुत्री है, क्या कहते हैं मनसा देवी, वो एक बार चांद सौदागर से मिली और बोली कि आप जब मेरे पिताजी की या मेरे देव के पूजा करते हैं तो आप मेरी भी पूजा कीजिए, मैं भी तो उस लायक हूँ ना, तो लेकिन चांद सौदागर बोले कि नहीं नहीं देवी, मैं सिर्फ आप भगवान शिव के ही पूजा करूँगा, आपकी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हृदय को स्वीकार नहीं होगा। तो बेला मनसा देवी तो क्रोधित हो गई उस पर, तो क्रोधित हो गई तो का वो डराया गया धमकाया गया कि आप अगर पूजा नहीं कीजिएगा तो मैं आपके सारे पुत्रों को मार दूंगी, आपका जहाज डुबा दूंगी, आपका बिजनेस बर्बाद कर दूंगी, मैं आपको किसी तरह से जीने लायक नहीं रहने दूंगी। सारे नुकसान पहुंचाऊंगे। फिर भी चांद सौदागर बोले कि नहीं देवी, आप कुछ भी कीजिए, मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। ये अटल मतलब ये निर्णय लिया हुआ है फाइनल। तो फिर भी उनको उनका जहाज जो था वो डुबा दिए, बिजनेस खराब कर दिए, 6 पुत्र जो थे सबको मार दिए, फिर भी वो नहीं माने। तो फिर जब 6 पुत्र सारे को मार दिए तो भगवान शिव का पूजा करते करते चांद सौदागर के घर में एक फिर एक दो वर्ष के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम लखिंदर था। तो जब लखिंदर बड़े हुए वो भी उसी टाइप से भी सब चीज़ करने लगे। लखिंदर जब बड़े हुए तो उनका भी चांद सौदागर शादी करवा दिए देवी बिहला से, देवी बिहला से शादी करवा दिए। तो देवी बिहला को ज्योतिष जी ने बतलाया कि आपका ये जो शादी हो रहा है तो ये क्या कहते हैं, आपके ज़्यादा शादी नहीं ज़्यादा दिन टिकने वाली है, क्योंकि आपका आपके पति को मृत्यु अकाल मृत्यु आने वाली है आज ही रात में। फिर भी वो नहीं माने कि नहीं ये मेरे रहते नहीं ऐसा हो सकता है। तो उसके पहले ये हुआ था कि चांद सौदागर एक महल बनवाए थे, तो वो लोहे का महल बनाया गया था, एकदम बारीक एक भी छिद्र नहीं हुआ, उनका जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हुआ। लेकिन जो बनाने वाले वो थे विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जी, उनको देवी क्या नाम है बिला नहीं मनसा देवी सॉरी मनसा देवी को बोला गया कि आप जो है मेरे कहने पे एक छोटा सा क्षेत्र दीजिए जो कि पता नहीं चले, चेक भी हो जांच भी हो फिर भी पता नहीं चले कि ये छिद्र है। तो सब चीज़ चेक हुआ, सब चीज़ सही हो गया, उसी महल में दोनों को रखा गया था, लखिंदर को और देवी बिहला को। तो जब प्रथम रात्रि थी तो उसी रात में मतलब तो वो देवी मनसा देवी जी में एक सांप को भेजा गया एकदम महीन छिद्र में, एकदम चीटी की मतलब हवा टाइप का एकदम, तो वो उसमें गया। और जब गया तो देवी बिहला जो है जब पता चल गया कि इस मेरे में आ गया है, मेरे महल में आ गया है, तो देवी महल में आ गया तो उनको बोला कि आप मेरे पति को नहीं मार गए, आपको जो बोलिएगा हम करेंगे। रात भर उनका सांप का सेवा हुआ, दूध लावा जो भी चीज़ होता है खाने पीने का सब चीज़ रात भर दिया गया। लेकिन एक दोपहर एक टाइम आया 2 से 3 बजे के रात में, दोपहर लास्ट पहरे में, तो उनका नींद आ गया, उनको तो नींद आ गया, बस वो उसको डस लिया। तो लखिंदर को डस लिया गया, तो सुबह राजकुमार था राजा था, तो सुबह कोहराम मचने लगा, पूरा राज्य में हाहाकार मच गया, मेरे राज्य का क्या होगा, सब मतलब परेशान हो गया। सब कहा कि इसको तो जलाया नहीं जा सकता है, तो अब इसको क्या किया जाएगा। तब देवी बिहला बोली कि नहीं, मैं अपने पति को जीवित करके दिखाऊंगा, चाहे इसके मुझे संसार में कहीं भी जाना पड़े। तो एक केले का थम होता है, तो उसको मंजूसा बोला जाता है, उस पर वो नाव टाइप का बना दिए और उसी पे चल नदी के द्वारा चलते गए। 2-3 साल 4 साल 5 साल इस टाइप से जाते यात्रा करते करते बहुत दूर पहुँची। बीच में बहुत सारा तूफान आया, आंधी आया, बहुत कोई डराया कि नहीं आप नहीं जा पाइएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी परेशानी हुई। लेकिन देवी बिहला जो है नहीं डरी। तो वो यात्रा करते करते देवों का जो घाट होता है वहाँ धोबीन घाट कहा जाता है, तो उस घाट पे वो पहुँची। तो धोबीन घाट पे जो वहाँ का जो कपड़ा धोने वाली थी देवलोक का धोबीन घाट में जो कपड़ा धोने वाली थी, तो क्या नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो तो उनको बोलेगी देवी, बोला बोले कि देवी आप, मैं इतने पृथ्वी लोक से आई हूँ, मैं इतना इतना कष्ट की हूँ, आप प्लीज़ मुझे देवों के, मैं भगवान शिव से मैं एक बार मुझे मिला दीजिए और देवी मनसा से भी मिला दीजिए ताकि मैं अपने पति को जीवित कर सकूँ। बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रयास किए, तब उनको दया आ गया, धोबिन जो थी तो उनको दया आ गई कि हाँ मिला देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मिला दिए। तब उनसे रिक्वेस्ट की देवी भी, भगवान से, भगवान शंकर से भी बोले, तो बोला कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, ये जो किया है वो मेरी पुत्री है, उनसे ही बात कीजिए, वही कर सकती है इसके बारे में कुछ भी। तो देवी मनसा को बोले, तो बोले मनसा बोले ठीक है, मैं आपके सब चीज़ वापस कर दूंगा, आपके पुछे पुत्र को जो मरा है उनको वापस कर दूंगा, कचरा हाई डूबा उनको वापस कर दूंगा, आपका व्यापार बिजनेस तबाह हो गया उनको ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी पूजा करनी होगी, ये शर्त तो आपको मानना ही होगा। तो जो राजा थे चांद सौदागर, तो वो बोले कि भगवान शिव का मैं पूजा करता हूँ, आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ। तब देवी मनसा बोली कि ठीक है आप उनका भी पूजा कीजिए, लेकिन एक हाथ से उनका पूजा कीजिए, एक हाथ से मेरा भी पूजा कीजिए, नहीं मेरा बाएं हाथ से आपको कर कीजिए, और उनका जो जैसे ही करते हैं आप दाएं हाथ से वो कर सकते हैं। तो कहा ठीक है, मान दे, आप मान लीजिए, भगवान शिव उनको बोले तो मान लीजिए ठीक है, तो कहा ठीक है आज पूजा कर देंगे। तो उनको जैसे ये बोले तैसे उसी समय से उनका सब चीज़ सही हो गया, छह पुत्र जिंदा हो गया, सातों पुत्र जिंदा हो गया, व्यापार बिजनेस सही हो गया, जहाज़ फिर वापस अपने जगह पर आ गया, सब सारे जो चीज़ समाप्त हुआ था सब चीज़ वापस आ गया। तब से लेकर आज तक वो देवी बिलाबुसरी का जो पूजा होता है वो हमारे समाज में ये चल रहा है, परंपरा के रूप में चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज इसका उद्भव स्थल चंपानगर नाथ लगर, ऐसे तो पूरा देश में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ का एक विशेष महत्व है
1: चंपानगर में जो उनका स्थान है, वहाँ पे एक महीने पहले से ही तैयार।
0: जी जी जी जी,
1: और जो विवाह वाली रात्रि होती है पूरी परंपरा पूरी रीति रिवाज के साथ,
0: जी जी बहुत होती है,
1: शादी भी कराई जाती है, और उसके बाद जो चीजें होती है, मतलब जिस तरीके से बेटी को विदा किया जाता है दूल्हा की, वैसे ही पूरी शादी होती है।
0: और उन्हीं की याद में जो मंजूषा पेंटिंग जो हम लोग हमारे समाज में दिख रहा है, या सारे जगह दिख रहा है, सरकारी संस्थानों में या जहाँ भी दिख रहा है, उन्हीं के एक उन्हीं से वहाँ प्रेरणा लेके चल रहा है।
1: तो रंजीत जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से बिहुला बिशरी की जो कहानी आपने बताई, और साथ ही आप जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं आप करते रहिए, और हमारे समाज में ऐसे अगर कुछ और भी लोग हो जाए तो बहुत हमारा समाज बेहतर बन सकता है। तो रंजीत जी आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको जिस भी रूप में सामाजिक स्तर पे मदद करने का अवसर मिले, वो नहीं चुके कि मेरा क्या भला हो रहा है, आपका भला बाद में होगा, पहले आप दूसरे का भला कीजिए, और ये भी नहीं देखिए उसके बदला मुझे क्या मिलेगा। अगर आपके पास समय है और आर्थिक रूप से है करने का है तो ज़रूर कीजिए, अब पैसा नहीं है आर्थिक रूप से कम समय जरूर दीजिए, समय भी नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लिए उसको बतला दीजिए, ये प्रोसेस कीजिए, ये रास्ता पे जाइए, आपको ये हो जाएगा, इनसे मिलिए ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कीजिए कि उनका वो कुछ नहीं कर सकता था, मतलब वो नहीं कुछ बोला तो हम नहीं बोलेंगे करेंगे, नहीं, आपका ये भलाई का है, ये बाद में आपका इसको फल मिलेगा, तुरंत नहीं मिलता है। आदमी आज के ज़माने में कि तुरंत क्विक चाहता है, नहीं, हर चीज़ का थोड़ा सा समय लेना चाहिए, ये चीज़ मेरा मानना है।
1: बिल्कुल रंजीत जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि आप अपनी भलाई को बाद में सोचिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, वो बाद में सोचिए, सामने अगर कोई ऐसे परेशानी में व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी पहले मदद कीजिए, और उसका अगर जो फल मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, कह के गए हमारे कृष्ण जी गीता में, गए उन्होंने कहा है कि पहले कर्म कीजिए फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
0: जी जी मैडम
1: जी। और अगर आपकी एक किसी की मदद करने से किसी एक का भी अगर भला हो जाता है तो समझिए आपने बहुत अच्छा काम किया है।
0: और एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, आप जिस दिन मदद कीजिएगा जिस भी रूप में, चाहे एक सेकंड ही समय क्यों नहीं दें, तो आप घर आइएगा, खाना खाइएगा, आराम कीजिएगा ना, तो आपको उस दिन लगेगा कि हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिए हैं। आपके पास एक बहुत पैसा है लेकिन अगर क्या कहता है शांति नहीं है मन में, तो वो खुशी नींद नहीं आएगी। ये चीज
1: किसी की मदद करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ आए, आपने जो बातें हमें, जो कहानी आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप काम करते रहिए। उम्मीद है कि आपकी कहानी से जो आप कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, उसे हमारे श्रोताओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने स्तर पर अपने आसपास के लोगों की जिस तरह से हो सके मदद कर सके।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। इसी कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए।

कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहाँ आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
3: See you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं उन पशुपालक भाई बहनों के बारे में जो इस बात से परेशान होंगे कि जब उनके फार्म से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से वो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी वो मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं हम डॉक्टर ज्योति माला साहू से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
5: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
7: देखिए, पशु अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है पशुओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, जैसे गोबर, गौमूत्र, बिछावन की सामग्री और अन्य जैविक अवशेषों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से संग्रह करना, भंडारण करना, उनका उपयोग करना और निपटान करना, यह पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशुशाला स्वच्छ रहती है और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोगों का खतरा कम होगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है। साथ ही साथ इसका उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं जिससे खेती की लागत कम होगी और पशुपालकों की अतिरिक्त आय भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ की दृष्टियों से ये अत्यंत आवश्यक है।
5: जी मैम, अगर उचित प्रबंधन ना किया जाए तो क्या ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है?
7: देखिए, उचित प्रबंधन ना करने पर इसका पर्यावरण पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खुले में पड़ा हुआ पशु अपशिष्ट जो होते हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खियाँ, मच्छर और अन्य रोगकारक जीवों को वो उनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं। इससे मानव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा होता है। साथ ही साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और खास करके इस मौसम में जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि पशु अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और खुले में इस तरह से अगर अपशिष्ट हैं तो उनके सड़ने से मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वायु का प्रदूषण करती है और जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, उपचार और उपयोग किया जाता है तो हम जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इससे मीथेन जैसे हानिकारक गैसें का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके उपयोग से जैसे कि अभी देख रहे हैं कि LPG सिलेंडर का क्राइसिस है तो इनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम हो सकती है और इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके हम रासायनिक उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है उनको कम कर सकते हैं।
5: तो मैम, प्रबंधन के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं?
7: देखिए, जो भी पशुपालक भाई बहन है वो गोबर को खुले में ना फेंकने के बजाय अगर इन्हें गड्ढों में या इकाइयों में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है कंपोस्टिंग, जिसमें गोबर एवं अन्य पशु अपशिष्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में सड़ाकर खाद बनाई जाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें केचुओं की सहायता से, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का केचुआ आता है जो लाल रंग का होता है, इसे एसिना फेटिडा कहते हैं। तो इनकी सहायता से गोबर या अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। तीसरी वैज्ञानिक विधि है गोबर को बायोगैस संयंत्र में डालकर उससे मेथेन उत्पन्न करना, और इस मेथेन का उपयोग हम खाना बनाने में या बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं। इस बायोगैस संयंत्र से निकलती है स्लरी, जिनका उपयोग हम डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं, और स्लरी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा गौमूत्र को अलग से एकत्र करके जैविक तरल खाद, जिसे जीवामृत कहते हैं, वो बनाया जा सकता है, जो कि जैव कीटनाशक, एक अच्छा जैव कीटनाशक है। इसके अलावा डेयरी फार्म से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए सेटलिंग टैंक बिठा सकते हैं, ऑक्सीकरण पॉन्ड बना सकते हैं और बायोफिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पानी का उपचार कर सकते हैं और इन उपचारित पानी को पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे गोबर हैं, उनके गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण है बायोचार, इसको बनाया जा सकता है, जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है।
5: मैम, बायोचार क्या होता है?
7: देखिए, बायोचार एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन से परिपूर्ण होता है। यह गोबर, फसल अवशेष, लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों को एक सीमित ऑक्सीजन में, या कह लो कि कम हवा में, गर्म करके बनाया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब ये सारे अवशेषों को भट्टी में डाला जाता है, जिसका तापमान होता है 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह जलने के बजाय कार्बन युक्त बायोचार में बदल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। तो यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और यह पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है, और साथ ही साथ यह सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है, और यह बायोचार खास करके अम्लीय मिट्टी के सुधार में सहायक होते हैं, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत लाभदायक है ये।
5: मैम, बायोगैस संयंत्र के लिए कितना गोबर लगता है और गैस कितना बनता है और लागत कितनी होती है इसकी?
7: देखिए, बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर की जो मात्रा होती है वो संयंत्र के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम ताजा गोबर और उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह गोबर लगभग 1 से 2 गाय या भैंस से आसानी से मिल जाता है, और इसी प्रकार अगर 2 घन मीटर का संयंत्र हो तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन हमें चाहिए होगा। अब उत्पादन की बात करें तो 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घन मीटर गैस बनती है, जो कि लगभग 1 LPG सिलेंडर के एक हिस्से के बराबर ऊर्जा देती है। तो उसी तरह से हिसाब लगा लेंगे कि अगर 2 से 3 घन मीटर संयंत्र है तो यह होगा कि एक परिवार के एक दैनिक खाना बनाने की जरूरत को वो पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं कि समय की, तो कितना समय लगता है। अगर एक बार बायोगैस संयंत्र बैठा दिए तो संयंत्र को चालू करने के बाद गैस बनने में लगभग 30 से 45 दिन लगते हैं, क्योंकि गोबर को सड़ाकर उनका गैस बनाना है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन गैस बनती रहती है अगर गोबर और पानी की सही मात्रा उसमें डाली जाए तो। अब लागत की अगर हम बात करें तो एक घरेलू संयंत्र से लागत लगभग 25,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है, और बड़े संयंत्र की लागत उससे अधिक हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई योजनाएं हैं तो उनसे सब्सिडी भी मिल सकती है, जिससे वास्तविक खर्च काफी कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हर महीने एलपीजी गैस पर जो होने वाला खर्च है वो बच जाता है, और साथ ही साथ जैविक खाद भी मिल जाती है, जिससे खेती का खर्च भी कम हो जाता है।
5: जी मैम, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार की भी कोई योजनाएं हैं, और क्या कोई ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हमारे पशुपालक भाई बहन को?
7: जी हाँ, पशु अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य की बात करें तो पहले योजनाएं थी बायोगैस संयंत्र बैठाने के लिए, पर अभी फिलहाल ये योजना बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, इसके तहत ये योजना है जो बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए सहायता देती है। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के माध्यम से गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रही है, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। तो पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5: तो मैम, क्या पशु अपशिष्ट का खाद और ईंधन के अलावा भी किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
7: जी हाँ, बायोगैस के अलावा पशु अपशिष्ट से कई और लाभकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में हाल ही में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की काफी अच्छी मांग है, और इसके अलावा गोबर से गोबर के उपले, दिए, अगरबत्ती और प्राकृतिक पेड़ जैसी कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। और आजकल गोबर आधारित जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में इनके मांग में काफ़ी तेजी बढ़ रही है, जिससे किसान सीधे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकता है। तो इस प्रकार पशु अपशिष्ट को केवल कचरा ना मानकर अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।
5: अंत में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
7: मैं पशुपालकों को यही संदेश देना चाहूंगी कि वे वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
5: तो पशुपालक भाई बहन, जो भी आपके एनिमल फार्म से वेस्ट आता है उसका आप उपयोग करें, सदउपयोग करें, और इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई।
7: धन्यवाद।
5: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
7: कब से?
6: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
7: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
6: खांसी?
7: हाँ।
6: इसको तो एक आध महीना हो गया।
7: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
6: डॉक्टर, खांसी तो है।
7: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
6: TB?
7: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
6: ठीक है।
7: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा, देश जीतेगा।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
6: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
7: कब से?
6: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
7: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
6: खांसी?
7: हाँ।
6: इसको तो एक आध महीना हो गया,
7: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
6: डॉक्टर, खांसी तो है।
7: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
6: टीबी?
7: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
6: ठीक है।
7: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
11: So, see you at the vaccination center soon.
12: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
13: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं और मिर्च की रोपाई सफाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: कि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में खास करके बारिश के मौसम में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
0: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप, उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। डॉक्टर साहब, अब रोगों की बात करते तो इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं पशुओं को और क्या बचाव का तरीका है?
1: खास करके यंग जो पशुओं में, वैसे पशु जो 3 साल तक के बाछी हैं, पाड़ी हैं, या जो गाय का बच्चा है जो तंदुरुस्त है, उनमें खास करके ऐसा देखा जाता है कि प्रायः 3 साल तक के उम्र के पशुओं में गलघोंटू या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, लंगड़ी या बीक्यू, एंथ्रैक्स या पिलभड़वा, ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में होती हैं। और खास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेजी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में खास करके जो बीमारियाँ हैं, HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलबढ़वा, जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं, और जो एंथ्रेक्स है जिसमें कि बिना कोई खास लक्षण दिखाए बहुत तीव्र ज्वर होता है और जब तक आपको कुछ समझ में आएगा तब तक आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जब मरने के पश्चात उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके इन तीनों रोगों से बचाव के लिए हमको इन तीनों बीमारियों में, खासकर HSBQ या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर का और एंथ्रेक्स का, ये टीका सरकारी स्तर से या अपने व्यक्तिगत स्तर से भी हर एक जगह उपलब्ध है। इसकी टीका मॉनसून शुरू होने के पहले, अर्थात हमारे यहाँ जनरली 15 जून के बाद मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो मई महीना के से लेके और जून के 15 तारीख के पहले आपको इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अपने पशुओं में अवश्य करवा लेना है, ताकि खास करके जो यंग पशु हैं, जो 3 साल तक के उम्र की बाछी हैं, बाछियां हैं, बछड़े हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना

0: ज्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से एचएस, बीकी और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
1: जी।
0: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठाइल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, एक लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
1: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश और जल जमाव या बाढ़ आने पर पशुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें, क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्योंकि ये जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके इन गंगा नदी के किनारे और फिर जो हमारा उस पार का क्षेत्र है जहाँ की कोसी और गंगा, इन दोनों नदियों के चलते इस क्षेत्र में, और इसके अलावा जो लोकल नदियां हैं इनके, इनका जो जब अत्यधिक बारिश होती है या गंगा के पानी में या कोसी के पानी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो जल जमाव के चलते या जो काफी देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर भी पानी ऊपर आ जाता है और गांव में प्रत्येक घर में करीब करीब पानी घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो चारा दाना की समस्या है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ स्थान, ऊंचा स्थान चिन्हित कर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अगर अत्यधिक बारिश है या बाढ़ आने की संभावना है तो प्रखंड कार्यालय स्तर से या अंचल स्तर से इस चीज की सूचना प्रत्येक जगह, प्रत्येक आजकल मुखिया भी हैं, वार्ड परिषद के सदस्य हैं, तो सबके माध्यम से सभी गांव में ये सूचना रहती है कि कौन सा उच्च स्थान चिन्हित किया गया है जहां अपने पशुओं को ले जाएं, और वहां पर अगर आपके पास जो चारा है उसको ले जा सकते हैं, या फिर सरकार के स्तर से भी बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, सूखा चारा की व्यवस्था की जाती है, चोकर की दाना की व्यवस्था की जाती है, और अगर वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप देखते हैं तो पेड़ की टहनी है या फिर जो कुछ फसल अवशेष हैं उसको, या फीड ब्लॉक एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आजकल हम लोग पशु जो फसल अवशेष है उसका, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें उसके साथ दाना और अलग से मिश्रित करके कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के उसको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और स्कार्सिटी के समय, बाढ़ के समय उनको पशुओं जहां पर ऊंचा स्थान जो सरकार के स्तर से चिन्हित है वहां पर, वहां हम लोग फीड ब्लॉक भी दे के और पशुओं के लिए चारा दाना की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही साथ वहां हेल्थ सेंटर भी खुलता है पशुओं के लिए जहां टीकाकरण की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था रहती है। इसलिए निश्चित रूप से जब भी अत्यधिक बारिश हो और बाढ़ की संभावना हो तो सरकारी स्तर से या अंचल के स्तर से जो भी ऊंचा स्थान चिन्हित करके जहां पशु कैंप बनाया जाता है वहां अपने पशुओं को ले जाकर रखें, और जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो व्यक्तिगत रूप से आप सुविधा दे सकते हैं उसका लाभ लेके अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय बरसात के समय में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रोग पनप सकते हैं आपके पशुओं में, तो इसका ख्याल रखें और जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका अनुसरण ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

की शुरुआत भागलपुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों और हमारे किसान भाई बहनों, आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मखाना की अभी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आगे भी इसकी मांग बढ़ती रहेगी और काफ़ी अच्छा मूल्य भी किसान भाई बहन मखाना की खेती से कमा सकते हैं। तो मखाना की खेती बिहार में कैसे की जाए और किन किन जिलों में मखाना की खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार। सर, आप हैं आणविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जैसा कि जानते हैं, मखाना अभी पूरे बिहार, पूरे भारत और पूरे विश्व में यह हर दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हम किसान भाइयों के लिए आए हैं इसलिए कि बिहार में मखाना का खेती पूरे विश्व का जो है वो 85% होता है। लेकिन 85% होता है तो क्यों इतना योगदान है, और अगर इतना योगदान है तो हम इसका खेती कैसे और किस विधि से करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और जिसमें हम जो आमदनी दुगुनी की बात करते हैं, इसमें तो 10 गुनी आमदनी होने की संभावना रहती है। सबसे पहले मखाना के बारे में जानने के लिए इसलिए शुरुआत से कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि कई नए किसान भाई बहन होंगे। तो मखाना का वनस्पति नाम जो है वो यूरोलोफिरॉक्स है। ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है चूँकि इसमें काटा जो होता है, इसीलिए इसका नाम यूरोलोफिरॉक्स पड़ा है। और यह जो है एक निम्फेसी फैमिली मतलब परिवार का एक परिवार। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लिली भी इसी तरह का पानी में होता है, तो किस परिवार का ये भी जानना जरूरी है। और मखाना का उत्पादन जो है उसके लिए जो वातावरण चाहिए, उष्ण और उष्णकटिबंध दोनों परिस्थिति में मखाना की खेती बहुत अच्छे से किया जाता है। खास करके यह विश्व में जो है दक्षिण पूर्व तथा पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में भी उपलब्ध है, लेकिन भारत के उत्तरी बिहार में सबसे अधिक इसकी खेती की जाती है तथा नेपाल के सीमा के तराई वाले क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम आएंगे बिहार पर। बिहार में खास करके यह मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा में किया जाता है। क्यों इसे इसकी खेती जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है, क्यों नहीं अन्य जिलों में इसकी खेती होती है? तो खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है ज़मीन का चुनाव, खेतों का चुनाव। खेतों का चुनाव का ये महत्वपूर्ण है कि खेत कैसा होना चाहिए, ये दूसरी है। सबसे उत्तम और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होना चाहिए कि क्या हम मखाना खेती के लिए तैयार हैं, तो हमको कैसा ज़मीन, कैसा ज़मीन मतलब निचली ज़मीन जहां हमें पानी का ठहराव हो, क्योंकि बिना पानी का हम मखाना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप ऐसे ज़मीन को खोजें जो निचली भूमि है, जहाँ पानी रुकता हो। लेकिन कई बार हम लोग जानते हैं कि बाढ़ आने के कारण वो पूरा का पूरा लेके चला जाता, तो उतना भी गड्ढा वाला ज़मीन नहीं देखना। तो इसकी खेती करने के लिए मुख्यतः दो विधि होती है, एक तो तालाब विधि होती है, दूसरा खेत विधि होती है। तालाब विधि में क्या है कि तालाब गड्ढे होते हैं, काफ़ी गड्ढे होते हैं, तो उसमें हम जो है किस तरह का बीज का उपयोग करें, पानी कितना रहना चाहिए, और खेत में अगर करते हैं तो उसमें पानी कितना रहना चाहिए। तो भाइयों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर खेत में पानी लगाना है तो उसमें 1 से 1.5 फीट पानी आपको लगाना पड़ेगा जब तक आप उसका जो है बीज को करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तालाब में तो बहुत पानी होता है, तो क्या उसमें कैसे हम रोपाई करेंगे? तो उसमें जो है रोपाई नहीं, बुआई विधि का हम प्रयोग करेंगे। और बुआई विधि के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा मतलब 80 किलोग्राम बीज जो होता है वो एक हेक्टेयर में पर्याप्त होता है। अब इतना बीज देने का क्या मतलब है, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इनका जर्मिनेशन रेट जो होता है, बीज से जो पौधे निकलने की क्षमता होती है वो 50-60% ही होती है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। लेकिन यही अगर हम खेत में करते हैं तो खेत में इसका जो है, जैसे आप धान के लिए आप बिचरा का प्रयोग करते हैं उसी तरह इसके भी लिए भी बिचरा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक बेड रेज क्या होता है कि आप एक भूमि बनाएं जहां पे जो है आप इसको एक गड्ढा कर करके वहाँ के भूमि को आप जो है पानी से 1-1.5 फीट पानी देके वहाँ पे बीजों को बुआई कर दें और 40-50 दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे जर्मिनेशन आना शुरू हो जाता है और पानी अगर आपका घट रहा है तो उसमें पानी का प्रयोग करें, और इस पानी के प्रयोग करने से क्या होगा कि आपका बीज जो जब 3 पत्ते के लायक हो जाएगा तो आप उसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। प्रत्यारोपण करने के लिए आप जहाँ पे आप जिस खेत में करना चाहते हैं उस खेत का सबसे पहले 2 तरह का आप जो है फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जिसको एक बेसल डोज कहते हैं, एक फोमिगेशन कहते हैं। तो बेसल डोज में आप सबसे पहले जो भी आप एनपीके देते हैं वो दीजिए, और एनपीके के में भी जो नाइट्रोजन है उसका स्प्लिट डोज कीजिए। स्प्लिट डोज क्या होता है कि अगर आप 70 kg नाइट्रोजन का यूज करने वाले हैं तो उसमें 35 kg का यूज पहले करें और 35 kg का जो है स्प्रे करें। तो 35 kg में आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्प्रे बाद में करेंगे जो कि आप पौधा लगाने के बाद। तो पौधा लगाने के लिए जो सबसे आप बीजों का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखे होंगे मखाना में कई तरह के बीज होते हैं, कई तरह के मतलब उसका ग्रेडिंग जो होता है 1 से 19 तरह का होता है, और साइज जो है वो 4 mm से 8 mm 0.4 mm से 8 mm वेरी करता, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 0.8 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर वेरी करता। तो हमको बीजों का जो सिलेक्शन है वो सही करना होगा। तो हम सबसे पहले बीजों का ग्रेडिंग करें और जो बोल्ड सुंदर गोल बीज है उसको छांट लें, उसको हम जर्मिनेशन के लिए लगाएं, और जर्मिनेशन के बाद उसका हम क्या करेंगे, प्रत्यारोपण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे किसान भाइयों, अगर बीज अच्छा है तो ही आपकी अच्छी उपज होने की संभावना रहेगी। तो बीज का सिलेक्शन करना है, ग्रेडिंग का सिलेक्शन करना है, और अच्छे ग्रेड के बीज को हम प्रत्यारोपण के लिए लेके जाएंगे। मखाने की बुआई के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र में 80 किलोग्राम की बीज जो होते हैं वो पर्याप्त होते हैं, और बुआई से पूर्व बीज में बेहतर अंकुरण हेतु 1 सप्ताह तक इसको भिगोकर जूट के बोरे में छायादार स्थान पर रखें, ताकि जो है उसकी जो है वायबिलिटी जिसको कहते हैं जर्मिनेशन करने की क्षमता जो है उसमें बना रहे, और बीच बीच में अगर आपको लगे कि नहीं उसका जो है मॉइस्चर जो नमीपन है वो घट रहा है तो ऐसे परिस्थिति में आप उसमें पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। मखाने के बीज बुआई नए तालाब में पूरी तरह से की जाती है, ऐसा नहीं कि जिस तालाब में अगर कभी मखाने की खेती नहीं हुई है तो क्या हम उसमें नहीं कर सकते, जरूर हो सकती है, लेकिन आपको बीज जो है उसमें दुगुना थोड़ा लगाना पड़ेगा। वो मैंने जैसा पहले बताया कि इसमें 50-60% ही अंकुरण करने की क्षमता होती है। तत्पश्चात जो है पुनः बीज को बोने की आवश्यकता होती है। पुराने तालाब में भी ऐसा नहीं है कि अगर पुराने तालाब में है तो उसमें बीज का फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। पुराने तालाब में चूंकि प्रत्यारोपण करना आसान नहीं होता है, इसलिए आप बीज का छिड़काव यानी बुआई विधि को अपना सकते हैं, और इसमें नई फसल आने से पहले भी उसमें क्या होता है कि सारे का जर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए आप उसको फिर से उसमें डाल सकते हैं बीजों को, और खाली स्थान में जो है उसका प्रत्यारोपण भी बड़े बड़े पौधों का कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम देखें कि फसल की बुआई विधि से ऐसे करते हैं। अब हम दूसरे जो विधि है रोपाई विधि, रोपाई विधि में क्या है, 2 विधियाँ होती है। प्रथम विधि मखाने के थलावे, थलावे कहते हैं, थलावे युक्त पौधा को निकाल कर रोपाई कर सकते हैं। थलावे मतलब क्या होगा, पूरा जड़ से उसको उखाड़ के एक दूसरे जगह प्रत्यारोपण करना होता है। दूसरी विधि क्या है, मखाने के पौधे में जिसे तालाब से निकाल कर जड़ में जो है मिट्टी की, मिट्टी नहीं होती उसकी रोपाई कर सकते हैं, वो 2 से 3 पौधे होने के स्थिति में करते हैं। मखाने की रोपाई का कार्य जो है वो मुख्यतः जो है तालाब में कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी में आप 1 से 2 मीटर की दूरी रख सकते हैं, 1 से 1.5 मीटर की दूरी रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसके पौधे की लंबाई जो है, जो क्या कहते हैं, चौड़ाई जो है वो 1.5 से 2 मीटर तक हो जाती है। इसलिए जो है ये काम जो है आपको करना, और किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि आप जो है कम से कम इसकी जितना भी रुपाई का काम है मार्च के अंदर कर लेते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जहाँ तक इसका निकोनी का बात है तो इसमें जो भी करना है आपको पहले ही करना पड़ेगा, कारण कि अगर पौधा का जो लीफ है, पत्ता जो है वो जब फैल जाता है तो उसमें घुस करके निकालना किसी भी चीज़ को बहुत ही कठिन होता है। धन्यवाद।
0: तो सर आपने जो भी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो जिस तरीके से किसान भाई बहनों सर ने बताया, उन बातों का ध्यान रख के आप मखाना की खेती कर सकते हैं, और खास तौर से अगर आप मखाना की खेती के लिए बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए ये जानकारियां काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमा बना रहे। जुलाई महीने में रोपे रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में। भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है? और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज़ को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप जरूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रो मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना। और मित्रो मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रो नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना, आज के समय में भी आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री के पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक। मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली, और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है। और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में। साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और

0: चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को यानी कि टेढ़ी लकीर को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें, और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अलग ही किया है, आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे, जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे, और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए, और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है, तो ज़रूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, और हाँ हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए, बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 एफएम ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 एफएम ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 एफएम ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं
3: 90.8

0: 8 Green FM. उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
1: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है। और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं, और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में जो बैंगन की चोखा लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है। बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं, और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है, और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं। और बैंगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है, और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है। हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है, और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैंगनी वाले को, भरता के लिए तो बैंगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबोर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैंगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबोर कृष्णकली भी शामिल है।
0: मैम अगर अब हम बुआई की बात करें तो बुआई करने की क्या विधि होती है?
1: बैंगन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है, और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और 2 जो जैसे क्यारी बनती है तो 2 लाइन के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है, और बीज क्योंकि बैंगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है, और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं, और ये जो पौध है उसका रुपाई का समय होता है 1 महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में, और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रोपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो उस फसल को हम लोग लगभग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में इसकी बुआई करते हैं, और एक महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रोपाई करते हैं।
0: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
1: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रोपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट पे लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में
0: जी। और रोपाई की विधि क्या होती है?
1: बैगन की बिजड़ा जब एक महीने के लगभग हो जाता है, उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रोपाई करते हैं। तो रोपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रोपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है। तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं, और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे, और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए, जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में, और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर के दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
0: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
1: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रोपाई के 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
0: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
1: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रेंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, और सारे पौधों में जो है एक हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-DK 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं एक एक हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
0: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
1: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है। अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे। और जब शरतकालीन जो फसल होता है, जब हार्वेस्ट होने लगते हैं, फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है, उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
0: मैम किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
0: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
1: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं, तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे। एक बार बैगन लगाने के बाद में उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए, हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं उसको, तना को छांट देते हैं, तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है, तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना की छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे, तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है, तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है उसके आधे

0: मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसके छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए, उसके बाद में तोड़ाई किया।
1: और मैम रोग भी काफ़ी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: बैंगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का, वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है। तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा। बीज को हम लोग थायरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बेंडाजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं। तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं, इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है। तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है, तो उससे वो खत्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में, ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पर्णीय छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
1: मैम अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले, तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए, और उपज कितना होता है बैंगन का?
0: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए। तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पर करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैंगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
1: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, और आप सभी का हम खास स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे मिर्च के बारे में। वैसे तो मिर्च काफ़ी खासियत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कैल्शियम से लेकर विटामिन सी से लेकर बहुत सारी चीज़ें, तो इसके बारे में विस्तृत तौर पर आज जानकारी देंगी आपको डॉक्टर ममता मैडम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो आज मिर्च की हम खेती के बारे में जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो मिर्च के बारे में थोड़ी जानकारी दें श्रोताओं को।
7: नमस्कार। मिर्च एक ऐसा सब्जी है, सब्जी फसल है, जिसके बिना हम खाना अधूरा, एक आम भारतीय अपना खाना अधूरा समझते हैं
6: जी।
7: एक आपके खाने का एक आवश्यक अंग है मिर्च, और एक ये सोलोनेसी परिवार का एक सदस्य है, मुख्य सदस्य है। और मिर्च को अगर हमारे किसान प्रबंधन करते हैं तो लगभग अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग समय में लगाया जाता है
6: जी।
7: जैसे हम भागलपुर क्षेत्र की बात करें तो भागलपुर के क्षेत्र में मार्च अप्रैल में लगने वाला एक प्रमुख नकदी फसल है
6: जी।
7: और यहाँ लगभग 12,000 हेक्टेयर में मिर्च लगता है। अलग अलग प्रखंडों में बात करें तो यहाँ मिर्च लगाई जाती है, और यहाँ मिर्च लगाने का समय मार्च अप्रैल है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि इसके लिए कोई विकल्प नहीं है यहाँ के कृषकों के लिए कि नगदी फसल में और क्या लगाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य फसलों के अलावा मिर्च की एक अच्छी कीपिंग क्वालिटी होती है। कीपिंग क्वालिटी का मतलब कि तो ये तुड़ाई के बाद भी ये दूर के मार्केट में बाजार में भेजा जा सकता है,
6: मतलब ये बहुत दिनों तक सड़ता नहीं है, गलता नहीं है।
7: हाँ, जी, अगर अच्छे से रखा जाए तो ये बहुत दिनों तक ट्रांसपोर्ट में जा सकता है
6: जी। तो इस वजह से ये दूर तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मैम, मिर्च की उन्नत

0: प्रजातियों के बारे में जानना चाहेंगे।
1: मिर्च की बहुत सारी उन्नत प्रजातियां हैं, अरका लोहित है, पूसा ज्वाला है, स्वर्ण प्रफुल्या है, ये सब इसकी उन्नत प्रजातियां हैं। अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग प्रजातियों का विकास किया गया है। हमारे यहाँ के लिए आरसीआर रांची पलांडू से जो विकसित है वैरायटी प्रजाति स्वर्ण प्रफुल्या भी अनुशंसित है, और अभी हमारे यहाँ भागलपुर के क्षेत्र में ये से बहुत बड़े रकबे में लगाया गया है, लगभग 100 एकड़ में लगाया गया है, और यह अच्छा कर रहा है, इसकी संभावना भागलपुर में अच्छी लग रही है।
0: जी जी मैम, अभी हम जो बिहार क्षेत्र की बात करें तो उसमें एक जो आता है जिसके अचार भी बनाए जाते हैं, शिमला मिर्च, तो क्या वो बिहार क्षेत्र में हम उसे उगा सकते हैं?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शिमला मिर्च भागलपुर में अच्छे खासे रकबे में हो रहा है, और इसको संरक्षित कृषि में कृषकों द्वारा किया जा रहा है, और एक बड़े प्रक्षेत्र में किया जा रहा है,
0: और मुझे लगता है कि डिमांड इसकी बाजार में ज्यादा हो।
1: जी जी बिल्कुल, उन लोगों ने, हमारे कृषकों भाई कृषक बंधुओं ने इसे मार्केट के आधारित खेती किया है, उन्होंने बाजार में इसका जब मूल्य उन्हें ज्यादा मिल रहा है तभी उन्होंने इसे हार्वेस्ट करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा सफलता है हमारे किसानों के लिए कि अब शिमला मिर्च हमारे यहाँ बाहर से आ रहा था लेकिन अब शिमला मिर्च लोकल किसान से ही उपजाया जा रहा है और बिक रहा है।
0: जी, और मैम ये जो कलर जो होते हैं, कोई कोई कोई मिर्च जो शिमला मिर्च की बात करते हैं वो रेड हो जाते हैं, कोई ग्रीन रहते हैं, बहुत सारे कलर के मिलते हैं ये मिर्च, तो इस ये क्यों होता है?
1: शिमला मिर्च में कई तरह का पिगमेंटेशन होता है, एक ऐसी प्रजातियाँ, इसका डेकोरेटिव वैल्यू है, सजावट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और आज आधुनिक कृषि में और आधुनिक खान पान में इसका महत्व बढ़ गया है, लोग खाना को भी आकर्षित बनाना चाहते हैं, तो उस संदर्भ में लाल शिमला मिर्च का अलग महत्व हो जाता है, पीला शिमला मिर्च का अलग महत्व हो जाता है। लेकिन अगर गुणवत्ता की बात करेंगे तो गुणवत्ता की जो बात करेंगे तो जो एक क्रंचीनेस होता है, जो मिर्च को हम काटते हैं तो एक आवाज निकलती है, वो हरा ही शिमला मिर्च में पाया जाता है,
0: और तीखापन भी जो होता है वो हरी में ही होता है। जी मैम, ये तो बातें हो गई उन्नत प्रजातियों की, और बहुत सारी मिर्च के बारे में भी हमने जान लिया। नर्सरी, सबसे अहम बात जो किसान भाइयों के लिए आता है कि मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार किया जाए?
1: किसान सबसे पहला जो सावधानी बरत सकते हैं खेती को सुधारने में, वो सर पहला स्टेप किसान भाइयों के लिए उनका नर्सरी का विकास है
0: जी,
1: या फिर बीज जो जहाँ से संग्रहित कर रहे हैं वो उनके लिए प्रथम स्टेप है, पहला सीढ़ी है जहाँ से वो सावधानी को का एक एक सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। तो जब मिर्च की प्रजातियों की का पहले चयन करें, ऐसी प्रजातियों का चयन करें जो कि बीमारी रोधी हो, उनके प्रदेश में अच्छा करता हो, जिसमें इसका उपज क्षमता भी अच्छी हो, उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप होता है, किसान नर्सरी इसका बहुत सावधानी से डालें, कोशिश करें कि नर्सरी को प्रोट्रे में ही डालें। प्रोट्रे एक प्लास्टिक का यंत्र ही कहें कि कटोरी कटोरी नुमा बना रहता है और उसमें किसान नर्सरी डालते हैं, ऐसे तो आम कृषक बंधु नर्सरी ऐसे ही बीज को डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि बीज बहुत घना हो जाता है, और पौधे को जितनी मोटाई होनी चाहिए, जो जितनी मतलब उसकी लंबाई और मोटाई होनी चाहिए वो होता नहीं है। क्रॉप कंपटीशन में घना होने के कारण मिर्च का बीज पतला पतला हो जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा मिर्च के बीज की बर्बादी भी होती है। बीज लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 1 kg बीज ही अनुशंसित है, लेकिन जब हमारे किसान लगाना शुरू करते हैं तो ये बीज लगभग 2 kg रहता है, 2 kg रहता है, 2.5 kg रहता है, तो इस प्रकार से वो बहुत घना नर्सरी डालते हैं, और घना नर्सरी में महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि पौधा कभी मजबूत नहीं हो पाता है, कमज़ोर पौधा है वो नर्सरी में लगाते हैं, नर्सरी अवस्था में ही पौधा लंबा हो जाता है।
0: जी, जी।
1: जबकि हमारे किसान का मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए कि इसे प्रोट्रे में डालें, या जो नर्सरी की आहारता है कि अगर 1 हेक्टेयर के लिए हम नर्सरी डाल रहे हैं तो उसके 10वें भाग क्षेत्र में हमको नर्सरी, मतलब 10 कट्ठे जमीन में हमको नर्सरी को डालना चाहिए, ये किसान को जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि बिचड़ा मजबूत हो, बिचड़ा को उपचारित करके लगाएं, एक जगह एक बिचड़ा लगाएं। जैसे हमारे भागलपुर के किसान हैं जो एक जगह एक बिचड़ा नहीं लगाते हैं, एक जगह 4, 5, 6 बिचड़ा लगाते हैं, तो ये उनकी खेती को कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है, जो एक गुणवत्ता की बात कर रहे हैं वो गुणवत्ता नहीं आ पा रहा है।
0: जी मैम ये तो बातें हो गई नर्सरी की, आपने बताई हैं बहुत सारी बातें और क्यों गुणवत्ता नहीं मिल पा रहा ये भी जाना हमारे किसान भाइयों ने, लेकिन

0: अब फसल प्रबंधन की बात करते हैं, तो मिर्च की खेती में कैसे करें प्रबंधन किसान भाई?
1: मिर्च एक ऐसा फसल है जिसको किसान चाहे तो बहुत ठंड और बहुत गर्मी वाले समय को छोड़ करके लगभग सालों भर लगा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: आप गौर करती होंगे कि ये मिर्च है जो आपके गमले में सालों भर रह जाता है और सालों भर एक फैमिली को मिर्च देता रहता है।
0: तो अगर ग्रामीण एरिया में जाए तो वहाँ तो हर जगह हर घर के सामने कहीं ना कहीं मिर्च के पौधे मिल ही जाते हैं।
1: इस चीज को आप किसानों को उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले उनको मिर्च में लगाने के पहले मिर्च के बिचड़ा का उपचार करना चाहिए। मिर्च के बिचड़ा उपचार करने के लिए उन्हें 5 ml इमिडा क्लोरोपिड 1 लीटर पानी में डाल दें और 2.5 ग्राम उसमें ये डालें कार्बनडाइजिम डालें और उसमें बिचड़ा को डाल करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि बिचड़ा उस पानी को जहरीला पानी को पिए और बिचड़ा भी जहरीला हो जाए ताकि उसे जब लगाया जाए तो वो उस पर किसी प्रकार का कीट का आक्रमण ना हो। दूसरी सावधानी हमारे किसान ये बरत सकते हैं कि एक जगह एक बिचड़ा को लगाएं। किसान भाई सावधानी ये बरत सकते हैं कि हमेशा मिर्च को ऊंची उठी हुई क्यारी पर लगाएं। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, जैसे अगर कम पानी है तो वो नाला में सिंचाई करेंगे और नाला में सिंचाई करेंगे तो पानी रिस रिस करके पौधा जाएगा, तो इससे पौधा उनका लंबे अंतराल के लिए रहेगा भी। दूसरी उनको फ़ायदा क्या होने जा रहा है कि अगर अचानक से कभी बहुत अधिक बारिश भी हो जाएगी तो पानी है जो नाला से बह करके निकल जाएगा। मतलब पौधा उनका सुरक्षित रहेगा किसी भी अवस्था में, कम पानी में भी और अधिक पानी में भी। दूसरा उनको सावधानी से क्या होगा कि जो खरपतवार है वो ऊंची उठी हुई क्यारी पर नहीं कम आएगा। तो अगर उनके पास सुविधा है तो वो मल्च भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पलवार के लिए जो मल्च है वो हमेशा किसान है जो प्लास्टिक को उपयोग करे, वो बड़े बड़े सागवान के पत्तों से भी ज़मीन को ढक सकते हैं, पुआल से भी ढक सकते हैं। इससे खरपतवार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो जाता है और हमारे फसलों के लिए सबसे बड़ा जो हानिकारक चीज है वो खरपतवार है।
0: जी जी
1: हाँ। खरपतवार है जो आपके फसल से प्रतियोगिता कर रहा है और कहीं ना कहीं खरपतवार ज्यादा मजबूत पड़ता है आपके फसल से।
0: क्योंकि पोषक तत्वों कंज्यूम कर लेता है,
1: पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है। दूसरा किसान सावधानी ये बरते हैं कि बहुत ज्यादा यूरिया तत्व का उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का ना उपयोग करें,
0: केमिकल्स जो
1: केमिकल फर्टिलाइजर में उपयोग कर भी रहे हैं
0: तो वो
1: कम यूरिया को कम करने का प्रयास करें। यूरिया का जो कार्बनिक स्रोत है जैसे कि गोमूत्र है, इन सब चीजों को वो मिला करके यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। और जब फूल जब आपका फूल पे आने लगता है तो उसमें यूरिया को एकदम बंद ही कर दें हमारे किसान, तो किसान के लिए ज़्यादा लाभकारी है। किसान उसकी जगह पर पोटास का प्रयोग को बढ़ा दें। पोटास तत्व है जो उनके फल के गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा, प्लस साथ साथ उनको बीमारी रोधी क्षमता भी पौधों को देगा।
0: जी, तो श्रोताओं और साथ ही हमारे किसान भाइयों, ये आज जो हमारा जो टॉपिक था, विषय था, बहुत ही उपयोगी साबित होगा उनके लिए जो किचन गार्डनिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि किचन गार्डन में मिर्च आप ज़रूर शामिल करते हैं। तो जिस भी तरीकों को मैम ने बताया कि आप नर्सरी कैसे तैयार करेंगे या फिर क्या कुछ आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए अगर आप मिर्च के पौधे लगा रहे हैं, बिचड़े लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखकर हमारे किसान भाई तो खेती करेंगे ही, लेकिन जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं अपने घर में गमले में मिर्च के पौधे लगाना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से आप देख रेख करते हैं तो आप मिर्च अच्छी मात्रा में पा सकते हैं। और हमारे किसान भाई अगर व्यावसायिक तौर पर खेती कर रहे हैं तो अच्छी एक आर्थिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर

कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
0: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
0: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
3: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: जी दादाजी।
5: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
6: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
4: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं। अद्भुत शांति।
5: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
7: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
8: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
7: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
9: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
4: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी।

0: आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो। कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
1: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं। बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा। सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
2: सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
0: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
2: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
0: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
2: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
0: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
2: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
0: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
2: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना। अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
2: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
3: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
4: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
4: अरे अरे अरे, अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। ओहो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
2: जी।
4: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
2: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ। शाबाश।
0: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
2: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
4: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ले जाओ। शाबाश।
0: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
4: कैसी तबीयत है बेटा?
0: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
4: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो। शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो।

0: हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
1: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
0: जी दादाजी।
3: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई, तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा।
0: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
1: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब
8: जी सर।
7: साहब
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
9: '1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की, जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
9: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल

0: आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है सिदो मुर्मू और कानू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कानू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
2: तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी मेरा नाम कोड़ा है।
2: ओके, तो तुम कोड़ा हो
3: जी।
2: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
3: जी ये मेरी जमीन है।
2: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
3: जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
2: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
3: नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
2: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
4: जी सर,
2: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
4: जी सर।
2: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
4: जी सर।
2: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
4: जी सर।
3: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो, साहब ऐसा मत करो।
2: चलो हटो,
3: साहब
2: आओ,
3: साहब
2: आओ। ये ऐसे नहीं मानेगा।
3: साहब मत करो साहब।
2: चल सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब
2: इसको हंटर मारो।
4: साहब जी सर।
0: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
5: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
5: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
5: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
5: क्या कानू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
5: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
5: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
5: हाँ ठीक कहा तुमने।
3: हाँ
5: ऐसा ही करेंगे।
3: जी भैया।
1: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
0: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिद्धो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके 2 भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही 2 बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
1: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
0: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिद्धो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिद्धो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
6: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
7: सही बोले, सही कहे।
6: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
1: हाँ सही कहा।
6: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
7: सिद्धो भैया सही बात कह रहे
8: हैं।
6: बाजार में हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती
8: है। बताओ भैया, हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
6: भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
9: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
6: अब करो या मर जाओ।
9: अब करो या मर जाओ।
6: अबुआ राज, अबुआ तुसुम।
9: अबुआ राज, अबुआ तुसुम।
6: अबुआ राज।
1: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। की विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
0: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कानू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
1: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
0: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
1: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
0: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कानू का शौर्य गाया जाता है।

0: उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
6: मैम, जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
7: हाँ बिल्कुल, जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छिया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल की तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछुआ चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
6: तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है।
7: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों के जो पत्ते के किनारे किनारे से। ठीक है, उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
6: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
7: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको अपने पौधों पर नज़र आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज़्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
6: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
6: और मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
7: हाँ बिल्कुल, तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जा करके देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर लें, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पर जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है। तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी, एक लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर लेकर के आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल, उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद। जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई, इवन हम जो वैज्ञानिक है, वो भी हमें छिड़काव करना रहता है, तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
8: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए।
7: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी, तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा, ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
8: जी मैम। मैम तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
7: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही है किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी, तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया। तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी। फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे, और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है 1-2 जगह पे लगाया खरीफ में, तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है। काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पस से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया, तो काले तिल के अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था। मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
8: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
7: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
8: जी मैम। तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
7: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना, मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आप आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे, उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए। नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया, आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है, तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
8: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: धन्यवाद उमा।
8: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
9: उन्नत कृषि।
10: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
11: कब से?
10: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
11: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बा।
10: खांसी?
11: हाँ।
10: इसको तो एक आध महीना हो गया।
11: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
10: डॉक्टर, खांसी तो है।
11: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
10: टीबी?
11: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
10: ठीक है।
11: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
12: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
13: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
14: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
15: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
14: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
16: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
14: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
17: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
14: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
18: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
14: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
19: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
20: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
19: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
20: आपकी सेहत की बातें,
19: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
20: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
19: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
20: वो कहाँ पर?
19: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
20: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी साथी RJ उमा। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं हमारे अपने गांव-गांव में स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी दिल से धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी के साथ करना चाहती हूँ। ये कहानी है भागलपुर के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ बाबू, मैं भी उस बच्चे को जानता था।
0: गर्मी का मौसम था और गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत हो गए थे, पानी जमा था, इसलिए सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो कोई साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया और शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर समय पर जांच हो जाती, अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू हमारे बीच होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये लापरवाही और जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और हम मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं हर साल 25 अप्रैल को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जब 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे तय किया गया। इस दिन का मकसद सिर्फ एक है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक चुनौती है जिसे हमें मिलकर हराना है।
0: तो भैया, जो हम मलेरिया दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ जागरूकता ही एक वजह है या फिर इसके पीछे और भी कोई उद्देश्य है?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। ये दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सकें। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
0: और भैया, इस साल की थीम क्या है और उसका मतलब क्या है, ये भी आप हमें समझा दीजिए।
1: इस साल की थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो ज्ञान, वो तकनीक और वो संसाधन हैं जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
0: सेहतिया भैया, अगर आसान भाषा में बताएं तो मलेरिया आखिर क्या होता है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब ये शरीर के अंदर फैलता रहता है।
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है, जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयां आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहां तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही हैं उनमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थीं, जो ज्यादा असरदार हैं।
0: तो इसका मतलब दुनिया में मलेरिया कम हुआ होगा?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: कम हुआ है, लेकिन फिर भी मलेरिया अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है?
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयां पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती है मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: अच्छा, एक और सवाल जो मेरे मन में है कि क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होता है?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होता है। जहाँ साफ पानी की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, वहाँ यह बीमारी ज्यादा फैलती है। इसीलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी कोई दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला, जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी। मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, तो आप इसे आसान भाषा में समझाइए कि फंड की कमी कैसे आ रही है।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयां चाहिए, मच्छरदानियां चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए, इन सब के लिए पैसे चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कई जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
0: भैया, आपने एक और बात कही थी जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन का मलेरिया से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे, वहां भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, ये पर्यावरण से जुड़ी समस्या भी बन चुकी है।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें भैया, तो हमारा भारत कहाँ खड़ा है इस सूची में?
1: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौतें दर्ज की गईं। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं।
0: जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं कुछ जगहों पर कम पहुंचती है, और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी समस्या कहाँ है?
1: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
0: तो इतनी समस्याएं हैं, ऐसे में भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को लेकर?
1: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला न हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
0: और सरकार इस पर काम कैसे कर रही है?
1: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांवों में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। पीएचसी और सब सेंटर में मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं। और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें ACT यानी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
0: सिहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना, समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
0: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है, इसके बारे में भी बताइए।
1: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा ना फैले।
0: ये तो बात हो गई योजना की, लेकिन आप ये बताइए भैया कि जमीन पर क्या होता है और क्या हो रहा है।
1: जमीन पर बहुत काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांवों में नियमित रूप से इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं।

0: स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
1: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ये संभव है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया खत्म नहीं हो सकता। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं कराएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
1: तो इसमें आम लोगों की भी भूमिका होगी?
2: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पर जांच कराएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
1: भैया, गांव में ना कई तरह की बातें फैलती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मलेरिया खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: यही सबसे खतरनाक बात है। मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं, बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर न हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बुखार को हल्के में न लें।
1: लेकिन एक और बात है कि लोग अक्सर मलेरिया का इलाज या कोई किसी भी तरीके का इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, और खास तौर से मलेरिया का इलाज भी।
2: यही सबसे बड़ी गलती है। जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने 3 दिन या 7 दिन की दवा दी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: तो आखिर इसका समाधान क्या है?
2: समाधान बहुत स्पष्ट है। समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी, मिलकर काम करना।
1: तो भैया, ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
2: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी तब मलेरिया अपने आप खत्म होने लगेगा।
1: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
2: हाँ, और यही उम्मीद है। बिहार के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वह तुरंत आशा दीदी के पास गई। जांच हुई, मलेरिया निकला। उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
1: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
2: हाँ, एक फैसला, समय पर जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
1: भैया, क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
1: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
2: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
1: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, साधन है, अब बहाना नहीं चलेगा।
2: अब हम कर सकते हैं
1: और अब हमें करना ही होगा।
2: मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे।
1: तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम मिलकर लेंगे सेहत की शपथ।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में, किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर RV वर्मा सर। आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BAU सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
6: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं?
7: देखिए ये परवल जो है, जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाले जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है, और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है। और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन A, B और C पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं, लो एनर्जी के कारण जो है तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं ज्वाइंटिस सब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है, तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज्यादा बढ़ जाता है। और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज्यादा लाभदायक है, इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें, इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
6: जी सर, लाभदायक होती है लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
7: हाँ देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परवल की खेती में। देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो है अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है, डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पर होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा। और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है, यानी 9 पौधे अगर मादा आप ले जाते हैं तो 1 पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए, इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर तक दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आ गई प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और 1 जो है नर, तो इससे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए, इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि उन्हें हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं, तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है, एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, अब तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ये लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है, ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
6: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें?
7: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है, अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं, तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो, जो साल भर पुरानी हो गई हो, ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा, तो हमेशा आपको मेच्योर, जो मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, जब मेच्योर वाइन हो जाती है, जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको वन ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50 टू 60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए। और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का आठ जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, आठ के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, आठ के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं उसको आपस में मोड़ दीजिए, और बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है, बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी, या उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे, तो वो जो है आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको आठ के आकार में बना लिया, और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं, हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है, जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बार का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा, और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा, आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए, ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपेगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते, ये सब पहले बता दिया था। तो इसका प्रोपेगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन वन ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 8, 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है, कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं, तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गए या खत्म हो गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज ये थी कि हमने बताई, एक तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है, अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना, आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन खत्म हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या सितंबर या अगस्त कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए दो तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए, तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए, जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा, उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
6: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
7: हाँ देखिए, इसका जो है जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत जबरदस्त होती है। अगर काट करके बाइन वैसे भी लगा दीजिएगा या उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट हो करके और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है। तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें दो तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2-2 मीटर दूरी पर लगाइएगा, तो 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पे अपनी रूट्स को जमीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है 2 मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5,000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5,000 कटिंग जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं तो लगभग 2,500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लीजिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
6: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की तो।
7: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे, और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि ये चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है, हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस या 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
6: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
7: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी बिहार वेस्ट बंगाल ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें। ये ज्यादा उपजाऊ हैं और ज्यादा आपको उपज देंगी, आपके लिए लाभदायक होंगे।
6: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचे?
7: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल। ये रेड ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है। ये जो जैसे हालांकि इसमें तो कॉटिलीडर नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलीडर निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है। और दूसरी समस्या जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें ये जो है फ्रूट फ्लाई है उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है। तो ये दोनों समस्याएं हैं। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, एक एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है। तो इससे होता क्या, उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है। रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहाँ से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि एक साल लगाते हैं और ऐसी फसल है कि एक साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि एक साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पर जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें, फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2-3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए, और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या नहीं आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं, आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इससे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है, तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
6: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
7: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो, इसके प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए, जो 9 संबंध है 1 के अनुपात में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी, जो आपको 8 महीने तक देती है और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है, तो इससे आप जो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते हैं।
6: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
8: पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
9: कब से?
8: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
9: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
8: खांसी?
9: हाँ।
8: इसको तो एक आध महीना हो गया,
9: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
8: डॉक्टर, खांसी तो है।
9: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
8: टीबी?
9: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
8: ठीक है।
9: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
10: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
11: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

जिसकी शुरुआत भागलपुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमा बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं।
ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं, और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं?
3: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है, और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं, और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं। और ये जो कीट हैं वो ज्वार का तना छेदक, प्ररोह मक्खी, बाली बग, पत्र लपेटक, गुलाबी तना छेदक, लाही एवं बाली मिर्च, ये जो कीट हैं। और ये सारे कीट जो हैं, जितने भी श्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
0: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए, उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम, शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
3: ज्वार का तना छेदक कीट, वो उसका भी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं, और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं, यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं, और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का, मतलब थोड़ा डल कलर का होता है, और मादा में सफ़ेद कलर का होता है, और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है। और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है, और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है, बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ज़मीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से बीज का जो होता है भाग उसको खाते हैं, और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं, और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीज वाली उसको खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं, और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है ठूठ है उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
4: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
3: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल घना बाल पाया जाता है, और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है, और ये भी तना में अंदर जाकर बीज के पार्ट को खाता है, और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है जो ऊपर में जो बीज की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है, और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता, और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरिफॉस 3 ml या इमिडा क्लोप्रिड दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडा क्लोप्रिड लेंगे तो इमिडा क्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए, और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में, या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
4: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
3: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है, और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और ये जो है ज्वार धान पे भी, मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं। और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ, इसको बोलते हैं वयस्क, और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है। और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसकर इसको बर्बाद करते हैं, और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं, और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण, जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 gram प्रति 3 liter पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
4: जी मैम, मैम पत्र लपेटा कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
3: पत्र लपेटक कीट जो है ये भी, इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है, और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफ़ेद जो शरीर इसका सफ़ेद होता है और उस पर भी जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुँचाते हैं। और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं, इस पिल्लू में जो इसका जैसे विकास होता है तो पत्तियों को वो क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं, और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद भी पड़ जाती हैं, और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं, जो पत्र लपेटक पत्र ये लपेटी हुई जो पत्तियां दिखाई देती हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में पिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 liter पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
4: जी मैम, मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
3: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है, और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो हैं पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं, और इस तरह से पत्तियाँ सूख जाती हैं और डेड हार्ट ये भी काज करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जई, गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुंचाता है। और ये जो है जहां से ये प्रवेश करता है वहां पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है, और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है, और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हर्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए, और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए। जो

0: रंग का जूं जैसा, उसको कहते हैं ये पौधों का जूं है, और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं, और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है, बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं, इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं। और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बीटल जो कि नारंगी रंग का होता है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं। यानी ये लेडी बर्ड बीटल जो है वो मित्र कीट है, ये जो एफिड है लाही है जो चूसकर जो खा रहे हैं हानि पहुंचा रहे हैं उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट ये जो लेडी बर्ड बीटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है तो कोई भी नीम आधारित दवा का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, ये कोई डब्बा हो उसको पेंट करके और उसको लकड़ी गाड़ कर खेत में और उसके उस पर उल्टा लगा देना चाहिए, जिससे कि उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है
1: जी। मैम बाली मिर्च ये श्रीयन के फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिज है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है, छोटी मक्खी या मच्छर कहें दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है, और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है। और ये जो मिज है वो फूलों पर अंडे देते हैं और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोष दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं तो उसका जो कोष होता है वो भी दानों के जगह दिखाई देता है, और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए, नीम आधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्साकार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्रीयन में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्री अन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना

0: बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे ज़रूर भेजिएगा, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दे, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबा कर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में अमेज़न फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं है तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है। और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: सिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अनु को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम, जी हाँ, जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो बिल्कुल अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है, सारे फलों से हटकर है। इसे खाने से बहुत सारे पौष्टिक गुण तो हमें मिलते ही हैं और इसकी खेती के बारे में आप जानेंगे तो और भी ज़्यादा आपको रोचक लगेगा इसे सुनने में, इसकी खेती के बारे में सुनने में। तो आज हमारे बीच इस विषय को लेकर डॉक्टर हेमंत हैं, जो कि उद्यान वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ड्रैगन फ्रूट ये क्या होता है?
9: देखिए, ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्रूट कोई अब नया चीज नहीं रह गया है, फिर भी मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ड्रैगन फ्रूट की अगर बात करें तो ये इसकी जो वैज्ञानिक नाम हम लोग सभी फसलों का जैसे जानते हैं, इसका भी वैज्ञानिक नाम होता है जिसको हम लोग हिलोसेरस स्पीसीज के नाम से जानते हैं और ये कैक्टेसी परिवार का होता है। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका के में उत्पत्ति इसकी हुई है, लेकिन इसकी बहुतायत पैमाने पर अगर खेती की बात की जाए तो सबसे ज्यादा थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, और साथ ही 2005 से हमारे भारतवर्ष में भी स्कोर है, खासकर अगर हम बिहार की बात करते हैं, किशनगंज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिहार में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से इसकी खेती शुरू हुई और कहीं ना कहीं जाके आज जो है ये बिहार के सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ क्षेत्रों में इसकी खेती की जा रही है। तो ड्रैगन फ्रूट की फल की बात करें तो ये तीन फलों के रूप में होता है और इसको आगे मैं बताऊंगा भी। और इसकी जो हम जीवन काल की बात करें तो करीब 25 से 30 सालों तक जो है ये सस्टेन कर सकता है, फलों की तरह जैसे आम करता है उस तरह से इसको हम उत्पादन की तकनीक से हम इसको ले सकते हैं।
4: जी डॉक्टर साहब, अगर बिहार क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ संभावनाएं हैं इसकी यहाँ पर?
9: देखिए, संभावनाओं की ये बात करें तो संभावनाएं हर फसलों के लिए अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी उत्पादन तकनीक को अपनाकर हम इसको अच्छे तरीके से इसका लाभ हम उठा सकते हैं। साथ ही औषधीय गुण से भी भरपूर है
4: जी।
9: और हमने जैसे बताया कि 2014 में इसको हम लोगों ने प्रयोग के रूप में लिया था और जाके हमारे किशनगंज जिले में करीब 15-20 एकड़ में इसकी खेती भी हो रही है। साथ ही जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से निरंतर ये जो है प्रसार की गतियों से इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार ने भी जो है इसको अपने माध्यम से किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, हर तरह के मिट्टी में भी इसको उत्पादन कर सकते हैं, अच्छे प्रबंधन को अपनाया जाए तो।
4: जी, अभी आपने मिट्टी की बात की कि हर तरह की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है, तो इसके लिए तो हमारे किसान भाई को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन जलवायु की बात करते हैं तो उपयुक्त जलवायु क्या कुछ होता है इसके लिए, इसके उत्पादन के लिए या फिर इसकी खेती के लिए?
9: देखिए, कैक्टेसी परिवार का हमने जैसे बताया कि ये एक तरह से रेगिस्तानी पौधा है तो इसके कम से कम पौधों की पानी की आवश्यकता होती है
4: जी।
9: तो कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, अब फिर भी देखिए, हम किशनगंज में बिहार का ऐसा ये जिला है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश करीब 2000 से लेके 2500 मिलीमीटर तक औसत वर्षा यहाँ होती है, जहाँ पे हम अच्छे तरह से उत्पादन कर सकते हैं। तो जहाँ पे पानी बहुत कम 500 मिलीमीटर तक भी इसकी औसत वर्षा होती है तो हम इसको वहाँ पे भी जो है उत्पादन कर सकते हैं, बशर्ते जो है इसको ध्यान में ये आपको रखना है कि जब इसकी प्रोग्रेस होती है तो करीब उसमें 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर ये 35-40 डिग्री तक भी चली जाती है इसका तापमान तो उस परिस्थिति में भी इसका बढ़वार होता है। और इसमें एक चीज होगी कि अगर हमारे किशनगंज में इसकी फ्लावरिंग अगर मार्च अप्रैल में हो रही तो गर्म जगह पे ये जाके जो है जून जुलाई में होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उत्पादन आपको ये अवश्य रूप से देगी
4: जी।
9: तो जलवायु कोई विशेष इसके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन जलवायु का आप ये नहीं कर सकते कि, लेकिन उत्तम व्यवस्था करने के लिए आपको इसको सेट के रूप में भी आप लगा सकते हैं चारों तरफ अपने खेत के चारों तरफ। अगर आप बड़े पौधों का आप जो है ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, पौधा रोपण कर देते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सकते हैं
4: जी। मतलब इसके लिए कोई उपयुक्त खास जलवायु नहीं है, ना ही कोई उपयुक्त खास मिट्टी में इसे उगाना है, है यही जी।
9: मिट्टी में अगर बेहतर जीवाश्म और जल निकासी जैसे सभी फसलों के लिए हमको आवश्यक होती है।
4: मिट्टी में मतलब पोषक तत्व रहने चाहिए जो कि फसल
9: जी बेहतर जीवाश्म की आवश्यकता हो, जिसमें ऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग कार्बनिक खाद की बात करते हैं
4: जी,
9: वो प्रचुर मात्रा में हो तो कहीं ना कहीं जो है इससे अच्छा
4: बहुत अच्छा होगा। और अगर किसान भाई खेती करना चाहते हैं डॉक्टर साहब ड्रैगन फ्रूट की, तो कौन से उन्नत प्रभेदों का चयन उन्हें करना चाहिए?
9: देखिए, प्रभेदों की बात करें तो बहुत सारे प्रभेद हैं और इसको कैटेगरी वाइज अगर स्पीसीज से हम ज्यादा समझें तो जाके ज्यादा आसानी होगा हमारे किसान भाइयों को
4: जी।
9: ये तीन तरह के स्पीसीज में इनको बांटा गया है, एक रोजा, ब्लंका और अम्ब्रीला।
4: रोजा, ब्लंका और अम्ब्रीला जी।
9: जी जी, रोजा को हम लोग हिलोसेरस पोलिराइजस के नाम से जानते हैं और अगर हम इसको देखेंगे तो ये लाल रंग का आवरण के साथ साथ तो लाल रंग का गुदा और इसमें काले महीन बीज होते हैं, इसको हम रोजा के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ब्लंका, इसके आवरण जो होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं और सफेद गुदा में काले बीज महीन हुआ करते हैं इसमें, इसको हम ब्लंका के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है पीले रंग का आवरण होता है और साथ में उसमें जो है सफेद गुदा के साथ साथ काले महीन बीज होते हैं। तो तीन प्रकार के जो है सामान्य
4: जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि खास तौर पर जिसका उत्पादन किया जाता है वो रोजा और ब्लंका ही आमतौर पर देखने को मिलते हैं।
9: जी जी, सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो रोजा जो है ज्यादातर उत्पादित भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, लोगों के प्रति इसका जो है झुकाव भी ज्यादा रहता है।
4: जी डॉक्टर साहब, ये तो उन्नत प्रभेदों की बात हुई और लगाने के तरीके और समय के बारे में हमारे किसान भाइयों को, श्रोताओं को बताएं।
9: जी जी देखिए, लगाने का तरीका का अगर बात करें हम तो लगाने के तरीके में इसमें एक तरह से एक देसी पौधा है, और इसमें जो है हम जब पौधा का हम कलम लगाते हैं सामान्यतः इसमें बीज के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अच्छे पौधे और क्वालिटी के हिसाब से देखें तो हम इसमें जो है करीब 30 से 40 दिन क्रांतिक जो भी कटिंग होती है उसके जड़ निकल जाते हैं, तो 20 से 25 सेंटीमीटर की कटिंग को हम पहले जड़ के लिए उसको रखेंगे या नर्सरी से आप ले आके आते हैं तो उसको जो है आपको इसमें एक चीज और आवश्यकता होगी कि जब हम पौधा लगाते हैं तो खेत हमारा समतल हो, अच्छी तरह से जल निकासी वाला हो, साथ ही इसे एक पिलर की आवश्यकता होती है, कंक्रीट का पिलर हो या लकड़ी का पिलर हो या आपका ईंट का पिलर हो, सामान्यतः हम लोग कंक्रीट के पिलर को सुझाव देते हैं। तो कंक्रीट का पिलर इस तरह से होना चाहिए, करीब 6 से 7 फीट लंबा होना चाहिए, जिसमें 1.5 फीट पिलर को हम जमीन के अंदर घुसाते हैं और एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी जो है आप अपने अनुसार रख सकते हैं, सामान्यतः जो है 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है हाई डेंसिटी के माध्यम से भी उत्पादन करने का तरीका ले आया है हम लोग, तो उसको आप 2.5 मीटर से 1.5 से 2.25 मीटर की दूरी पे पिलर को स्थापित करने के साथ साथ आप प्रत्येक पिलर पे आपको 4 पौधों को स्थापित करना है चारों तरफ से। जब हम स्थापित कर लेंगे उसको, स्थापित करने के बाद जब हमारा 6 फीट का पिलर है या 5.5 फीट का पिलर है तो ऊपर हमारे 3 या 4 दाल हम निकाले रहते हैं बाहर की तरफ लोहे के, जो हम उसको फैला के उसमें टायर के स्ट्रक्चर को पहनाते हैं और उस टायर के माध्यम से ही पौधा बाहर की तरफ करीब 7 से 8 महीने बाद जो है वो निकल के आएगा। तो इस तरह से हम लगाने का तरीका क्या है कि हम इसको पिलर के माध्यम से लगाते हैं और 1 एकड़ में करीब सामान्य दूरी की बात करें तो करीब 1600 से 1700 पौधों की आवश्यकता होती है, वहीं अगर हम हाई डेंसिटी की बात करें तो ये जाके करीब 2500 से लेकर 4000 प्रति एकड़ पौधों की आवश्यकता होती है, इस तरह से इसको
4: लगा सकते हैं जी। और समय की बात है डॉक्टर साहब।
9: हाँ, समय की बात करें तो समय देखिए हमने सही सुझाव दिया, समय जैसे हम प्लांटेशन पौधों को लेते हैं जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, लीची है, उसी तरह से इसको भी हम मानसून सत्र में हम जून से लेकर जुलाई अगस्त तक हम इसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और फिर नहीं तो उसके बाद जो है फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक इसको अगर हम लगाते हैं तो अच्छा इसको परिणाम देखने को मिलता है।
4: जी डॉक्टर साहब, एक और खास बात जो कि इसमें होता है पोषक तत्व प्रबंधन और साथ ही उर्वरक प्रबंधन, इसका भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, तो किस प्रकार हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं तो पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं?
9: जी जी देखिए, ड्रैगन फ्रूट की जब खेती करते हैं तो हम लोगों के माध्यम से ज्यादातर सुझाव यही रहता है कि आप इसको ऑर्गेनिक माध्यम से करें, जिससे कि इसके फल में फल की क्वालिटी और इसके जो फल का जो टिकाऊपन होता है वो बेहतर होता है, स्वादिष्ट होता है।
4: अच्छा,
9: तो अगर हम ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहे हैं तो उसको हम लगाते के समय जो है करीब 5 से 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद अगर हम ले लेते हैं तो बेहतर होता है, तो सड़ी गोबर की खाद की जगह अगर आप और अच्छा लेना चाहते हैं तो करीब 5 से 8 kg जो है आपको वर्मी कम्पोस्ट लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके पीलर के चारों तरफ से इसको दबा के रख देना, उसके बाद उसमें प्लांटेशन करना है। दूसरा, जब हम फ्लावरिंग के सीजन आते हैं जिसको हम फरवरी और मार्च कहते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने जुलाई और अगस्त में एक बार हमने दे दिया है इसको, तो आपको उसको जनवरी माह में एक बार, जनवरी से फरवरी माह के बीच में एक बार जो है आपको पुनः जो उतनी क्वांटिटी में जो है आपको जैसा हमने बताया कि 10 से 15 किलो सड़ी गोबर की खाद या 5 से 8 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट को अगर उसमें मिक्स करते हैं तो ये दूसरी बार, तीसरी बार जो है पुनः मानसून आने से पहले, अगर हमारा प्लांटेशन हो चुका है तो मानसून आने से पहले हम यही प्रक्रिया पुनः करते हैं, तो ये हमारी ऑर्गेनिक खाद देने का माध्यम होता है। अगर हम इनऑर्गेनिक में जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को जो है हम केमिकली रूप से देते हैं तो प्रति पिलर में 2 बार करीब करीब जो है आपको 80 से 100 ग्राम जो है यूरिया और जो है 150 से 200 ग्राम के आसपास डीएपी और जो है करीब 200 ग्राम पोटास के माध्यम जो है हम दो बार प्लस उसमें 5 kg सड़ी गोबर की खाद मिलाकर अगर हम देते हैं, एक बार मानसून सत्र में, दूसरी बार जो है फरवरी और मार्च माह में देते हैं, इस प्रकार से हम खाद उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं।
4: जी डॉक्टर साहब, और इसमें एक और खास बात सामने आती है कि क्या इसमें कोई विशेष उद्यानी कृषि कार्य होते हैं? अगर होते हैं तो फिर कैसे होते हैं, उसकी जानकारी भी दे दें।
9: ये काफी रोचक सवाल है और देखिए उद्यानिक फसलों में सामान्यतः कोई ना कोई एक अच्छी तकनीक होती है। इस प्रकार से ड्रैगन फ्रूट में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी पुरानी शाखाएं हैं तो उनको आपको जो है कटिंग के माध्यम से कटिंग करना है, सिकेटियर के माध्यम से। और हम नीचे से पिलर से सटे हुए केवल एक ही स्टेम को तना को लेके ऊपर तक जाते हैं और फिर बाद में आप देखेंगे कि ऊपर से काफी मात्रा में बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं। तो नीचे की तरफ से हम कटिंग करते हैं, ऊपर की तरफ शाखाओं को हम छोड़ देते हैं और फर्दर 2 से 3 साल के बाद हम उसमें जो है कटिंग बराबर हम करते रहते हैं, मानसून के पहले और फ्लावरिंग से पहले। करीब फ्लावरिंग से 1-1.5 महीना पहले, फ्लावरिंग सामान्यतः हमारे यहाँ अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में आता है, तो हम इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में हम एक बार जो है इसको कटिंग करेंगे, वो भी जितने भी पुरानी शाखाएं हैं, जो पुरानी हो गई सख्त हो गई उसको काट देंगे, क्योंकि जो भी नई शाखाएं होती हैं उसी से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। ये एक विशेष ध्यान इसमें देने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग फ्रूटिंग बहुत ही आवश्यक इसमें आवश्यकता होती है करने की।
4: इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जो सबसे अहम सवाल है कि अगर हमारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की, प्रति एकड़ क्या उत्पादन उन्हें मिलेगा, साथ ही क्या लाभ मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल हमारे किसान भाइयों का यही रहता है, तो कृपया आप इसका जवाब जरूर दें।
9: कहीं ना कहीं ये अंतिम सवाल भी हो सकता है और लगाने के जब भी कोई किसान किसी भी चीज की प्रोफेशनल खेती करता है तो अल्टीमेटली उसको यही जानने की आवश्यकता होती है कि उत्पादन कितना होगा और लाभ होगा।
4: जी जी, क्योंकि तो हर एक जो हमारा खेती है वो लाभ से जरूर जुड़ा होता है।
9: जी जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हमने पहले ही बताया कि सामान्य दूरी और जो है एक सघन बागवानी दोनों का अलग अलग आकलन है। मैं सामान्य दूरी की आकलन के बारे में, जब 2.5 से 3 मीटर की दूरी पे आप अगर इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पर पिलर, 1600 से 1700 पौधे इसमें लगाए जाते हैं
4: जी।
9: तो 1 एकड़ में जब हम इसका आकलन करते हैं तो करीब अगर अच्छे तरीके से आप करें तो ये आपका जो है जो खर्चा है वो कम ज्यादा हो सकता है। अनुमानन जो है आप 4 लाख से लेके करीब 5.5 लाख तक आप उस खर्चे को कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हम उत्पादन की बात करें तो ये सामान्यतः हमने बार बार बोला कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो ये इसका फ्लावरिंग होगा और मई के फर्स्ट वीक में इसका जो है आपको फल हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फल जो है आपको 5 से 6 बार में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये निरंतर फूल आते रहते हैं और उसमें आप जो 35 दिनों के बाद ये फूल परिपक्व होके फ्रूट बन जाते हैं, आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। ये करीब अक्टूबर नवंबर तक आप ये प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया से आप सामान्य रूप से करीब 3 साल का अगर बगान आपका हो जाता है, तो परिपक्व बगान है, 3 साल पुराना बगान है आपका और आपका असर है, तो आप उसके करीब से करीब 5.5 से लेकर 7 टन तक जो है आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी भी मार्केट में इसका प्राइस करीब किसानों के खेत से 250 से लेकर 400 रुपये के जी तक होता है। तो आप अगर टन की बात करें तो 6000-7000 के जी अगर आपको होता है तो आप इसे अनुमानतः आप 300 रुपये के जी से भी अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं 12 लाख से लेके आपको जो है 7 टन है तो 7 से 31 लाख तक आप इसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपके उत्पादन तकनीक और विशेषता इसमें कितना ध्यान देते हैं उस पर निर्भर करते हैं। अगर शुद्ध लाभ की करें लाभ की बात करें तो 3 साल पुराने बगान से आप जो कहीं ना कहीं आपको 8 से लेकर 12 लाख रुपए तक का आमदनी हो सकता है। और साथ ही जो है आपके पौधे जो इससे कटिंग करते हैं, ट्रेनिंग प्रोनिंग से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनको भी आप सेल करके जो है आप इससे इनकम कमा सकते हैं। निरंतर हमारे संपर्क में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं माध्यम से जो जुड़ के बिहार कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से जो है अपने आप को इसमें स्वावलंबी बना रहे हैं।
4: तो यहाँ पर पूरी जानकारी किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में जाना, इसके उत्पादन तकनीक के बारे में जाना और बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं आपको, क्या कुछ संभावनाएं हैं इसे लेकर और उन्नत प्रभेद क्या है, आप कैसे पोषक तत्व और उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं, लगाने का तरीका क्या है, तो ये सारी बातें जानकर ज़रूर आप एक सफल किसान बन सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर कुछ परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है 90.8 radio@greenatthegmail.com पर, उस पर अगर आप सवाल भेजते हैं तो हम अपने विशेषज्ञ से ज़रूर जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर हेमंत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे इस विषय को लेकर। आगे और भी मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर आप सभी से दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका, पूसा लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक, उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सामुदायिक की बात BAU के साथ में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक किराना दुकान चलाते हैं। और जब हम किराना दुकान की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर समाज के हर तबके के लोग आते हैं और वहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं। एक किराना दुकान में जब कोई बैठता है तो वहाँ पर कई बार ऐसे 4-5 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और अलग अलग बातों के बारे में वो चर्चा करते हैं, देश विदेश के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके समाज में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या उनकी परंपरा है उसके बारे में भी बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि किराना दुकान जो होता है वहाँ पर हर बात होती है, हर तरह की बात होती है और आप कह लीजिए कि हमारे जो समाज की होती है वो एक तरह से आत्मा है। हर किसी के घर पर राशन तो पहुंचता ही है, साथ ही हर किसी के घर की गपशप और हर किसी के घर की परेशानी भी वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही विस्तारित तरीके से वहाँ पर चर्चा की जाती है। ऐसे ही किराना दुकान एक संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत कुमार। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जितना भी इनसे बन पड़ता है ये अपने आसपास के लोगों की मदद भी करते हैं और अगर इनके पास कोई जानकारी होती है, किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी है या फिर कुछ बदलाव हुए हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, ये बातें भी लोगों तक पहुंचाते हैं। और इनके पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म कह दीजिए है कि किराना दुकान है। इनके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की परेशानी बताते होंगे और इनसे जहाँ तक हो सके उनकी परेशानी का समाधान करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रंजीत कुमार का। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैम।
0: तो रंजीत जी, आप बताइए कि किराना दुकान आप कब से चला रहे हैं?
1: ये पारिवारिक है, बहुत पुराना है, करीब 10-20 साल हो गया।
0: 10-20 साल हो गया। तो जब किराना दुकान में आप बैठते हैं तो बहुत तरह तरह के लोग आते होंगे, बहुत तरह तरह की परेशानी बताते होंगे।
1: जी जी।
0: तो रंजीत जी, आपके किराना दुकान में तरह तरह के लोग आते होंगे, उनके तरह तरह की परेशानियां वो आपको बताते होंगे।
1: जी जरूर बताते हैं।
0: तो जब आप उनकी परेशानी सुनते हैं तो आप अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनकी मदद हो सके?
1: जी जरूर करते हैं।
0: तो किस तरह की मदद आप करते हैं?
1: पहले तो आर्थिक रूप से जरूर मदद कर देते हैं और क्या कहता है, न्यूज के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है, पेपर के द्वारा होती है, फेसबुक के द्वारा होती है, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो इस तरह से भी होता है। अब ऐसा नहीं कि बोल उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, वेरीफाई करके मतलब जो सही जानकारी होती है वही सिर्फ देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो मतलब आप जानकारी पहुंचाते हैं लोगों तक और
1: जी,
0: सही
1: जी।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जानकारी, न केवल जानकारी पहुंचाते बल्कि उसको वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं
1: जी।
0: जो सही बात है वही लोगों तक पहुंचे, ये बहुत ही अच्छी बात है। जानकारी पहुंचानी दूसरी बात होती है और सही जानकारी पहुंचानी सबसे ज़रूरी है। तो आप सामाजिक कार्य करते हैं तो मतलब कब आपने ऐसा काम करना शुरू किया और लोगों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, तो ये कब से आपने शुरू किया?
1: ये मैम करीब 2004 या 2005 से ये रेगुलर चल रहा है।
0: पहली बार आपने किसी की किस तरह की मदद की थी और क्यों की थी?
1: पहली बार मैम ये क्या कहता है, एक आदमी बीमार पड़ा था तो उनको हमने मायागंज ले गए थे, वहाँ डॉक्टर से जितना देर भी टाइम लगा सब चीज़ वो प्रोवाइड करवाएं, इलाज करवाएं, फिर वापस आ गए। फिर इस टाइप से मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता, ऐसा नहीं कि ये फैमिली को सिर्फ देखते हैं, समाज में जो भी आता सारे को देख करते हैं, कोशिश करते हैं।
0: तो जिनकी आप पहली बार आपने मदद की थी वो क्या बुजुर्ग आदमी थे?
1: जी मैम।
0: कई बार हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आसपास बच्चे नहीं हैं।
1: जी जी।
0: परेशान हो जाते हैं वो।
1: जी।
0: तो ऐसे और भी आसपास अभी मतलब अभी भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं?
1: जी।
0: जिस तरह की भी मदद हो। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पहली बार किसी बुजुर्ग को आप हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो इसके साथ आप और आर्थिक सहायता भी करते हैं, तो आपने कभी किसी की आर्थिक सहायता की हो तो किस तरह की वो आर्थिक सहायता थी?
1: आर्थिक सहायता में यूँ क्या कहता है, उनको दवाई जब दिला रहे थे तो उनके पास पेमेंट का इशू था, तो हमने पेमेंट इशू क्लियर कर दिया और वो ये नहीं सोचे कि वो कब देंगे।
0: हाँ।
1: ये जब दिए तो दिक्कत
0: बस आपने यही सोचा कि दवाई के लिए पैसे दे रहे हैं तो ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो और जब आप आर्थिक सहायता करते हैं रंजीत जी, तो क्या आप को कभी ऐसा लगता होगा कि जितनी उन्हें ज़रूरत है सामने वाले को उतनी जो रकम है हमारे पास नहीं है, तो फिर आप किसी और की भी मदद लेते हैं या फिर आपसे जितना बन पड़ता है वही आप करते हैं?
1: कोशिश करते हैं मैम कि दूसरे से भी हेल्प लें, लेकिन सब आदमी नहीं समझता है, तो जहाँ तक मेरा अपना होता है उतना ही करके छोड़ देते हैं मैम, और उनको रास्ता बतला देते हैं कि इस रास्ते से आप जाइए तो अगला आप और ज़्यादा आपका सहायता हो जाएगा मैम।
0: तो आपकी किराने दुकान पे कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जिन्हें कोई राशन नहीं लेना या कोई और चीज नहीं
1: खरीदनी? जी जी
0: जी, वो केवल पूछने आते होंगे कि भैया कोई परेशानी है तो उसके बारे में बता दीजिए, योजना के बारे में जानने आते होंगे। तो कई सारे कार्ड बनते रहते हैं, कई सारे और भी चीजें होती है, तो उसमें भी आप लोगों को मदद करते हैं?
1: ये आयुष्मान योजना जो निकला था उसमें भी बहुत सारे आदमियों को बताते रहते थे हमेशा, और ये स्वच्छ भारत अभियान का जो पैलेट वाला सिस्टम निकला था तो उसमें भी बहुत सारे को बतलाए थे, बहुत सारे को बतलाते रहते थे, अभी भी बतला देते, अभी भी छूटा हुआ है कि बहुत जगह अभी भी टॉयलेट नहीं बना है, तो उस बारे में भी बतलाते हैं कि इस रास्ता जाइए आपका टॉयलेट बन जाएगा, से करते रहते हैं।
0: तो रंजीत जी, आप लोगों को टीका के बारे में भी जागरूक करते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग टीका से डरते हैं।
1: जी जी जी मैम।
0: तो जब आप उन्हें टीका के बारे में बताते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें बताते हैं?
1: बतलाते कि नहीं, ये सरकार का जो टीका है ये वेरीफाई किया हुआ है, सब चीज़ सही है, आपको अपंग जो होता है वो नहीं होगा, बौंझपन नहीं होगा, इसी तरह से समाज में फैला हुआ ये सुई लेने से मतलब हो जाता है, लेकिन उसको बोलते कि नहीं ये कुछ नहीं होगा, हम भी लिए हैं और बहुत कुछ दिलाए में कहीं कोई इस तरह का शिकायत नहीं आई है अभी तक।
0: तो रंजीत जी, आपके जब किराना दुकान के इन सब के बारे में बातें तो होती हैं, लोग अपनी परेशानी लेकर भी आते होंगे, लोग अपने घर की परेशानी घर की बात भी लेकर आते होंगे, और कई बार जैसे अभी त्यौहार आने वाला है तो त्यौहारों के बारे में भी बात करते हैं, तो क्या आप कभी उन्हें कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं? जैसे अभी विश्वहरी पूजा आने वाली है तो क्या इसके बारे में भी आप उन्हें बताते हैं?
1: हाँ हाँ, जरूर बताते हैं।
0: तो क्या कहानी जो है विश्वहरी पूजा के पीछे की, वो कहानी आप हमें हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
1: जरूर मैम, जरूर सुनाना चाहेंगे, क्यों, और अगर हम कहीं बाहर किसी राज्य में जाते हैं खासकर बंगाल तो जरूर जाते हैं, तो वहाँ इस सब का जो कहानी है ये बेला बसरी वाला, तो उसको और वहाँ चाव से सुनते हैं, वहाँ बंगाल में उतना नहीं है इसकी जानकारी, तो जब हम लोग जाते हैं यहाँ का गाना वीडियो जो भी चीज़ होता है तो ये सब को बतलाते हैं, तो और वो लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, कभी कभी आते भी हैं वो लोग देखने के लिए यहाँ।
0: आप हमारे श्रोताओं को कहानी सुनाइए रंजीत जी।
1: जरूर मैं जरूर सुनाइए। ये कहानी है बिहला और विसरी के लिए, अभी जो अभी जल्दी इधर आने वाले हैं। ये कहानी है ऐसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये नाथ नगर चंपा नगर से शुरुआत होती है, इस कहानी में एक चांद सौदागर रहते थे, चांद सौदागर था, वो शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी के जो परम भक्त थे, तो शिव जी की पुत्री कथित पुत्री है क्या कहते हैं मनसा देवी, वो एक बार चांद सौदागर से मिली और बोली कि आप जब मेरे पिताजी की या मेरे देव के पूजा करते हैं तो आप मेरी भी पूजा कीजिए, मैं भी तो उस लायक हूँ ना, तो लेकिन चांद सौदागर बोले कि नहीं नहीं देवी, मैं सिर्फ आप भगवान शिव के ही पूजा करूँगा, आपकी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हृदय को स्वीकार नहीं होगा। तो बेला ए मनसा देवी तो क्रोधित हो गई उस पर, तो क्रोधित हो गई तो का डराया गया, धमकाया गया कि आप अगर पूजा नहीं कीजिएगा तो मैं आपके सारे पुत्रों को मार दूंगी, आपका जहाज डुबा दूंगी, आपका बिजनेस बर्बाद कर दूंगी, हमने आपको किसी तरह से जीने लायक नहीं रहने दूंगी, सारे नुकसान पहुंचाऊंगी। फिर भी चौन सौगद अगर बोले कि नहीं देवी आप कुछ भी कीजिए मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, ये अटल मतलब ये निर्णय लिया हुआ है फाइनल। तो फिर भी उनको उनका जहाज जो था वो डुबा दिए, बिजनेस खराब कर दिए, छह पुत्र जो थे सबको मार दिए, फिर भी वो नहीं माने। तो फिर जब छह पुत्र सारे को मार दिए तो भगवान शिव का पूजा करते करते चांद सौदागर के घर में फिर एक दो वर्ष के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम लखिंदर था। तो जब लखिंदर बड़े हुए वो भी उसी टाइप से भी सब चीज़ करने लगे। लखिंदर जब बड़े हुए तो उनका भी साथ चांद सौदागर शादी करवा दिए देवी बिहला से, देवी बिहला से शादी करवा दिए। तो देवी बिहला को ज्योतिष जी ने बतलाया कि आपका ये जो शादी हो रहा है तो ये क्या कहते हैं आपके ज़्यादा शादी नहीं ज़्यादा दिन टिकने वाली है क्योंकि आपका आपके पति को अकाल मृत्यु आने वाली है आज ही रात में। फिर भी वो नहीं माने कि नहीं ये मेरे रहते नहीं ऐसा हो सकता है। तो उसके पहले ये हुआ था कि चांद सौदागर एक महल बनवाए थे, तो वो लोहे का महल बनाया गया था, एकदम बारीक एक भी छिद्र नहीं हुआ, उनका जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन जो बनाने वाले वो थे विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जी, उनको देवी क्या नाम है बिला हाँ नहीं मनसा देवी सॉरी मनसा देवी को बोला गया कि आप जो है मेरे कहने पे एक छोटा सा क्षेत्र दीजिए जो कि पता नहीं चले, चेक भी हो जांच भी हो फिर भी पता नहीं चले कि ये छिद्र है। तो सब चीज़ चेक हुआ, सब चीज़ सही हो गया, उसी महल में दोनों को रखा गया था, लखिंदर को और देवी बिहला को। तो जब प्रथम रात्रि थी तो उसी दिन रात में मतलब तो वो देवी मनसा देवी जी जिसके एक सांप को भेजा गया एकदम महीन छिद्र में, एकदम चींटी की मतलब हवा टाइप का एकदम, तो वो उसमें गया

0: लखिंदर को डस लिया गया, तो राजकुमार था, राजा था, तो सुबह कोहराम मचने लगा, पूरा राज्य में हाहाकार मच गया, मेरे राज्य का क्या होगा, सब मतलब परेशान हो गया। सब कहा कि इसको तो जलाया नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, तो अब इसको क्या किया जाएगा। देव देवी भी ला बोली कि नहीं, मैं अपने पति को जीवित करके दिखाऊंगा, चाहे इसके मुझे संसार में कहीं भी जाना पड़े। तो एक केले का थम होता है, उसको मंजूसा बोला जाता है, उस पर वो नाव टाइप का बना दिए और उसी पे चल नदी के द्वारा चलते गए। 2-3 साल 4 साल 5 साल इस टाइप से जाते जाते यात्रा करते करते बहुत दूर पहुँचे। बीच में बहुत सारा तूफान आया, आंधी आया, बहुत कोई डराया कि नहीं आप नहीं जा पाइएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी परेशानी हुई, लेकिन देवी बीला जो है नहीं डरी, देवी बीला नहीं डरी। तो वो यात्रा करते करते देवों का जो घाट होता है वहाँ धोबीन घाट कहा जाता है, तो उस घाट पे वो पहुँचे। तो धोबीन घाट पे जो वहाँ का जो कपड़ा धोने वाली थी देवलोक का धोबीन घाट में जो कपड़ा धोने वाले थे, तो क्या नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उनको बोलेगी देवी, बोला बोले कि देवी आप, मैं इतने पृथ्वी लोक से आई हूँ, मैं इतना कष्ट की हूँ, आप प्लीज़ मुझे देवों मैं भगवान शिव से एक बार मुझे मिला दीजिए और देवी मनसा से भी मिला दीजिए ताकि मैं अपने पति को जीवित कर सकूँ। बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रयास किए, तब उनको दया आ गया, धोबिन जो थी तो उनको दया आ गई कि हाँ मिला देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मिला दिए। तब उनसे रिक्वेस्ट की देवी भी, भगवान से, भगवान शंकर से भी बोले, तो बोला कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, ये जो किया है वो मेरी पुत्री है, उनसे ही बात कीजिए, वही कर सकती है इसके बारे में कुछ भी। तो देवी मनसा को बोले, तो बोले मनसा बोले ठीक है, मैं आपके सब चीज़ वापस कर दूंगा, आपके पुछे पुत्र को मरा है उनको वापस कर दूंगा, कचरा हाई डूबा उनको वापस कर दूंगा, आपका व्यापार बिजनेस तबाह हो गया उनको ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी पूजा करनी होगी, ये शर्त तो आपको मानना ही होगा। तो जो राजा थे चांद सौदागर, तो वो बोले कि भगवान शिव का मैं पूजा करता हूँ, आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ। तब देवी मनसा बोली कि ठीक है आप उनका भी पूजा कीजिए, लेकिन एक हाथ से उनका पूजा कीजिए, एक हाथ से मेरा भी पूजा कीजिए, नहीं मेरा बाएं हाथ से आपको कर कीजिए, और उनका जो जैसे ही करते हैं आप दाएं हाथ से वो कर सकते हैं। तो कहा ठीक है, आप मान लीजिए, भगवान शिव उनको बोले तो मान लीजिए ठीक है, तो कहा ठीक है आज से हम पूजा कर देंगे। तो उनको जैसे ये बोले तैसे उसी समय से उनका सब चीज़ सही हो गया, 6 पुत्र जिंदा हो गया, 7 पुत्र जिंदा हो गया, व्यापार बिजनेस सही हो गया, जहाज़ फिर वापस अपने जगह पर आ गया, सब सारे जो चीज़ समाप्त हुआ था सब चीज़ वापस आ गया। तब से लेकर आज तक वो देवी बिलागुसरी का जो पूजा होता है वो हमारे समाज में ये चल रहा है, परंपरा के रूप में चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज इसका उद्भव स्थल चंपानगर नाथ लगर, ऐसे तो पूरा देश में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ का एक विशेष महत्व है
1: चंपानगर में जो उनका स्थान है, वहाँ पे 1 महीने पहले से ही तैयार
0: जी जी जी जी,
1: और जो विवाह वाली रात्रि होती है पूरी परंपरा पूरी रीति रिवाज के साथ
0: जी जी बहुत होती है,
1: शादी भी कराई जाती है, और उसके बाद जो चीजें होती है मतलब जिस तरीके से बेटी को विदा किया जाता
0: जी,
1: है की वैसे ही पूरी शादी
0: जी। और उन्हीं की याद में जो मंजूसा पेंटिंग जो हम लोग हमारे समाज में दिख रहा है, सारे जगह दिख रहा है, सरकारी संस्थानों में या जहाँ भी दिख रहा है, उन्हीं के एक उन्हीं से वहाँ प्रेरणा लेके चल रहा है।
1: तो रंजीत जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से बिहुला बिशरी की जो कहानी आपने बताई, और साथ ही आप जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं आप करते रहिए, और हमारे समाज में ऐसे अगर कुछ और भी लोग हो जाए तो बहुत हमारा समाज बेहतर बन सकता है। तो रंजीत जी आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको जिस भी रूप में

0: सामाजिक स्तर पे मदद करने का अवसर मिले, वो नहीं चुके कि मेरा क्या भला हो रहा है, आपका भला बाद में होगा, पहले आप दूसरे का भला कीजिए। और ये भी नहीं देखिए उसके बदला में मुझे क्या मिलेगा, अगर आपके पास समय है और आर्थिक रूप से है करने का है तो ज़रूर कीजिए। अब पैसा नहीं है आर्थिक रूप से कम समय जरूर दीजिए, समय भी नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए उसको बतला दीजिए, ये प्रोसेस कीजिए, ये रास्ता पे जाइए, आपको ये हो जाएगा, इनसे मिलिए ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कीजिए कि उनका वो कुछ नहीं कर सकता था, मतलब वो नहीं कुछ बोला तो हम नहीं बोलेंगे करेंगे, नहीं, आपका ये भलाई का है, ये बाद में आपका इसको फल मिलेगा, तुरंत नहीं मिलता है। आदमी आज के ज़माने में कि तुरंत क्विक चाहता है, नहीं, हर चीज़ का थोड़ा सा समय लेना चाहिए, ये चीज़ मेरा मानना है।
1: बिल्कुल रंजीत जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि आप अपनी भलाई को बाद में सोचिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, वो बाद में सोचिए। सामने अगर कोई ऐसे परेशानी में व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी पहले मदद कीजिए, और उसका अगर जो फल मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। कह के गए हमारे कृष्ण जी, गीता में गए, उन्होंने कहा है कि पहले कर्म कीजिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
0: जी जी
1: जी। और अगर आपकी एक किसी की मदद करने से किसी एक का भी अगर भला हो जाता है तो समझिए आपने बहुत अच्छा काम किया है।
0: और एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, आप जिस दिन मदद कीजिएगा जिस भी रूप में, चाहे एक सेकंड ही समय क्यों नहीं दें, तो आप घर आइएगा, खाना खाइएगा, आराम कीजिएगा ना, तो आपको उस दिन लगेगा कि हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिए हैं। आपके पास एक बहुत पैसा है, लेकिन अगर क्या कहता है शांति नहीं है मन में, तो वो खुशी नींद नहीं आएंगे, ये चीज।
1: किसी की मदद करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, हाँ, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप हमारे साथ आए, आपने जो बातें हमें, जो कहानी आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप काम करते रहिए। उम्मीद है कि आपकी कहानी से जो आप कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, उसे हमारे श्रोताओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने स्तर पर अपने आसपास के लोगों की जिस तरह से हो सके मदद कर सके।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। इसी कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त।

कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे ज़रूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: दिलों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है पदार्थ है उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है, और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज़ 5000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही, इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी की टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर जरूरत आपको लगे तो। दोस्तों महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जाँच कर ली जाए और जाँच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और फिलहाल आज जो विषय लेकर आए हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बाढ़ की स्थिति की बात करें तो इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन हम एक आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने आप के बचाव के लिए ऊँचे स्थान पर जाते हैं, अपने खान पान का पहले से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं, लेकिन जो पशु हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो तो पशुपालक भाइयों पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में पशुपालक भाई बाढ़ की स्थिति में अपने पशुओं के आहार का, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे, इन सारी जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले।
12: धन्यवाद
7: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जैसा कि हमारा विषय है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में पशुओं की रख रखाव, तो ऐसे स्थिति में पशुपालक भाई क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पशुओं के लिए उनके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
12: जी, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के में जल जमा के जल नदियों के पानी में जब काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है। तो जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है वहां के पशुपालक अपने पशुओं पशुपालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अचानक बाढ़ आ जाती है वहाँ पशुओं को के रख रखाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य तो छत पर जाके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा, कई ऐसे स्थान हैं जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में चिन्हित स्थान होते हैं, जहां से पूर्व से ही वो स्थान निर्धारित है जहां आप अपने पशुओं को बाढ़ के अचानक स्थिति में अगर पानी आ गया तो वहाँ से आप अपने पशुओं को निकाल कर ले जा सकते हैं और वहाँ रख सकते हैं। वहाँ वैसे जगहों पर उनके पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रति व्यस्त पशु 3 से 5 किलो सूखा चारा और सूखा भूसा और कुछ दाना की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वैसे जगहों पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो वहां के पशुपालक अपने पशुओं के चारे के लिए ऊंचे स्थान पर चारा पहले से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वैसे स्थानों पर जहां अचानक बाढ़ आती है तो पूरी तरह से चारा भींग जाता है, भूसा भींग जाता है, हरा चारा डूब जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पशुपालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके पशुओं के चारे बंधन में। तो वैसे जगहों पर आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या जो ऊंची सड़कें हैं वहां अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लेकर जाते हैं या ऊंची स्थान पर लेकर जाते हैं, लेकिन पशु को ले तो जाते हैं लेकिन उनके सारा जो चारा है वो डूब जाता है। और भींगा हुआ चारा आप अगर अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप पहले से इसका निर्धारण करें, अगर बाढ़ आती है तो सूखे स्थान पर चारा का व्यवस्था करके रखें, अन्यथा ऊंचे स्थान पर जो सरकार के द्वारा चिन्हित है, पशुपालन विभाग के द्वारा, राज्य जिला प्रशासन के द्वारा, वैसे जगहों पर पूर्व से ही बाढ़ के समय जब आने की संभावना हो पूर्व से ही अपने पशुओं को ले जाकर रखें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लें।
7: जी, तो ये बात हो गई कि कैसे रख रखाव करना है। अब देखा जाता है डॉक्टर साहब की जब बाढ़ आता है तो चारे का काफ़ी अभाव हो जाता है, जो कि मुख्य यूँ कहें कि आहार है हमारे पशुओं का। तो ऐसे में पशुपालक भाई कैसे खाने का प्रबंधन करें?
12: जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब चारा एकाएक बाढ़ आने के बाद जब चारा पूरी तरह से घर से नहीं निकाल पाते हैं लोग, भूसा अपना या पुआल, तो वैसी स्थिति में जो वैकल्पिक चारा का स्रोत है, पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, या जो मकई का या सूखा डंठल है, या जो अन्य अवशेष है, फसल अवशेष हैं, अगर उसकी उपलब्धता होती है तो ठीक है, अन्यथा पेड़ की टहनियां, पेड़ के पत्ते को खिलाकर आप अपने पशुओं को वैकल्पिक रूप से खिलाकर जिंदा रख सकते हैं। लेकिन उनकी पोषक तत्वों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हरेक कॉम्फेड के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से या पशु चिकित्सा विद्यालयों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से हरेक जगह पर फीड ब्लॉक के संधारण की व्यवस्था की गई है, और खास करके अभी कंप्लीट फीड ब्लॉक जो एक ईंटे के शक्ल में कंप्रेस करके चारा को बनाकर जिसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, और जब बाढ़ की अवस्था होती है या जब चारे का अभाव होता है तो वैसे जगहों के पशुओं के लिए इस फीड ब्लॉक को आसानी से हम पहुंचा सकते हैं और वहां पर फीड ब्लॉक खिलाकर अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
7: जी, अब बात करते हैं जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो कई जगहों पर जो है गंदगी जमा हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी कई बीमारियां होने की जो खतरा है वो बना रहता है। तो ऐसे में इसका जो बचाव है वो कैसे करेंगे पशुपालक भाई?
12: जी, जल जमाव के बाद जब जब पानी जब उतरता है तो उसके बाद एक कई जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़ के बावजूद भी नई घास का बहुत तेजी से वहाँ पर पनपती है, और खास करके वैसे जगहों पर जहाँ बाढ़ का पानी जमता है या उन जगहों पर जहाँ पानी उतरता है, वहाँ के पशुपालक अगर अपने पशुओं को नया चारा जो निकला उसको अगर खिलाते हैं तो पशुओं में छेरा नामक बीमारी जो लीवर फ्लूक के चलते होता है, जिसमें कि काफ़ी पतला दस्त होता है और उसके जबड़ा के नीचे सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हर जगह नमी की अधिकता रहती है, ऐसे समय में कई प्रकार की परजीवी जनित रोग या जो ब्लड प्रोटोजोआ है उनके द्वारा होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, जैसे बेबीसिया, थैलेरिया और ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा नामक बीमारी का भी काफ़ी प्रकोप होता है। खास करके जल जमाव अधिक होने के चलते मच्छर, मक्खी और जो चमोकन की भी अधिकता होती है, उसके चलते भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इन जैसे आपने अभी हमने बताया कि वहाँ पर ब्लड पैरासाइट या ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं उससे बचाव के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में अगर आपके पशुओं में रेड वाटर या किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उसके हिसाब से चिकित्सा करवा सकते हैं। लेकिन खास करके छेरा से बचने के लिए आप अपने पशुओं के बाढ़ग्रस्त इलाके में खास करके ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल ग्रुप की दवा का प्रकोप करें, जो कृमिनाशक है और आपके पशुओं में छेरा से बचाव में काम आ सकता है। खास की जब जल की निकासी हो जाए और नया घास आए तो ऐसे जगहों पर अगर आप देखें घोंघे की अधिकता है तो घोंघा एक प्रकार से वेक्टर का काम करता है, तो उनको जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक का सॉल्यूशन से घोल बनाकर देकर घोंघे को नष्ट करें। अगर घोंघे नष्ट हो जाएंगे तो ये जो छेरा नामक रोग है इसके जो वेक्टर में बीच में ब्रेक होगा और ये जो छेरा बीमारी है इससे आप बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने पशुओं को जो पेरिनियल जो प्रत्येक वर्ष टीका लगाया जाता है पशुपालन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसका भी आप ले सकते हैं। HSBQ का टीका पड़ता है, फुट एंड माउथ डिजीज का टीका पड़ता है, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका पड़ता है, बकरियों में PPR का टीका पड़ता है। इन बीमारियों का टीका जो है खास करके मई जून के महीने में HSBQ का टीका, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी में जब FMD का टीका पड़ता है, तो रोग से बचाव के से टीका से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अर्थात रोग से अच्छा है कि रोग से बचाव हम कर लें टीका के माध्यम से। तो अपने पशुओं को टीका लगवाएं, समय समय पर कृमिनाशक दवा का प्रयोग करें, और अगर बाढ़ ग्रस्त इलाके में आपके का चारा डूब गया है और उसके बाद जल्द ही पानी निकला है तो अगर आप उस चारे का प्रयोग करें भी तो उसको पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा जो एफ्लाटॉक्सिन या इस प्रकार के कई फंगस लग जाते हैं जिससे भी कि पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही करेंगे।
7: जी जी, तो इस अच्छी सी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से बातें होंगी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजेश कुमार सर से, और बहुत ही उपयोगी वो विषय होगा। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और नमस्कार। उन्नत कृषि।
13: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
16: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
15: टीको ये मौसम है टीकाकरण।
1: टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
0: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
16: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
17: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
18: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
17: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
18: आपकी सेहत की बातें,
17: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
18: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
17: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
18: वो कहाँ पर?
17: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
18: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: उन्नत कृषि।
17: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
19: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
17: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
19: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
17: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
19: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है, तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं, वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
17: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी, उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
19: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं, तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
7: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
19: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भुट्टे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भुट्टा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
7: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
19: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
7: और बुआई की विधि क्या?
19: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिमा, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
7: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
19: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पे डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM 1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
7: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
19: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
7: सर, बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
19: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में भूटे में, आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
7: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
19: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
7: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
19: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
7: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
19: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में

0: दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है पौधा है उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इसे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें, कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं, 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन

0: रासायनिक खादों से मुक्त।
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं।
ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और

0: चार्ली।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
4: नमस्कार श्रोताओ, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
3: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
3: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
4: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
4: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
4: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
3: जी
4: श्रोताओ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
3: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
4: जी हाँ श्रोताओ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
3: जी,
4: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
3: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना।
4: जी,
3: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
4: श्रोताओ, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
3: जी,
4: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
3: जी,
4: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात।
3: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
4: जी,
3: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है। अजीत जी, एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
4: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
3: जी,
4: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
3: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
4: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
3: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
4: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
3: जी,
4: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
3: जी,
4: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
3: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही

0: देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
1: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
0: जी
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
0: जी
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दे।
0: इसका संबंध खान पान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है
1: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: अश्रोता, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
1: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958। स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
2: सरिया खेलत है किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे
0: अवर। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
3: प्रणाम पिताजी।
4: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
3: लेकिन क्या पिताजी?
4: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
3: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
4: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
3: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
4: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
3: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
4: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
3: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
5: पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
6: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर साहब जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था, तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
5: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
6: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटी होगी खाऊँगा, पर मैं रियाज करूँगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँगा घर की विद्या है। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अब अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दे दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है।

0: मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
0: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथे ही ताते ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथे ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं। तो
2: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
3: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
8: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: भगत सिंह
9: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे

0: बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
1: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
2: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
3: कौन है?
4: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
3: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
4: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
3: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
4: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
3: ये इस शीशी में क्या है?
4: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
3: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
4: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
3: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
4: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
0: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
4: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
5: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
4: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
2: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
6: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
7: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
10: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
9: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
11: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
12: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
11: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
13: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी। तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर, आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: सर, आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियाँ या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माना में तो और भी ज़्यादा है।
0: तो सर, बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसे है?
1: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में, जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहां पे भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
0: सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती। हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
1: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख पहुँच गया है। तो अगर 5 लाख किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
0: सर, जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
1: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको एफपीओ भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छी अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
0: सर, आप लगातार एफपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, ये एफपीओ क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
1: हाँ, तो एफपीओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का।

0: FPO जो है आप देखेंगे कि हर ज़िले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं। सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है। FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है FPO बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं FPO, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी नाबार्ड जो है वो मदद भी करती है FPO खोलने के लिए, क्योंकि FPO एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन नाबार्ड उसके उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका FPO का जो मालिक होते हैं, जिसको CEO बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि FPO के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान। क्योंकि जानते होंगे आप कि FPO के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का FPO बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है। एक समय नहीं था ऐसा सुविधा है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है। एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए FPO का बहुत सारा संभावनाएं हैं और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
1: सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि FPO के लोग होते हैं, उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
0: हाँ FPO के लोगों को नहीं, जो FPO के CEO होते हैं, मतलब जो FPO के मालिक होते हैं, CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस नबार्ड की तरफ से कवर कर लिया जाता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी नबार्ड ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई FPO खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं FPO खोलने का।
1: तो सर, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
0: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं। अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं, तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें कि सरकार 50 से लेके 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है, तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की, जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएं हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर शुरू करेंगे तो उनको एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
1: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
0: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है, या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है, तो वो छोड़ देते हैं बीच में। और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाएँ। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा, तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में। तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
1: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें, तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था, जो नोकिया का जो पैड वाला, कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सब

0: हाँ, एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी एफपीओ से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप नई उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है, आप पारिवारिक खेती करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे, तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला, बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं, जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
1: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
0: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे, जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल यूज रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं, और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाज़ार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जानते होंगे कितना, अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए, जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी, और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा, और जो जिसको भी बेच रहा है वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
1: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं, और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए, और खास तौर से आप के घर पे अगर युवा है तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
0: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं।

0: है जिन्हें ज़ीरोडोज़ बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंगारू केयर डे के बारे में। अलग है, सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रहा है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत भी रखता है। और इस विषय को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हमारे शो में।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत में ही इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाले कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रही हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी ज़िंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और ख़त्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चे की देखभाल कितनी ज़रूरी है।
0: ये तो सच में बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की ज़रूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गाँवों और दूर दराज इलाकों में। और जहाँ उपलब्ध भी होती है, वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? यह बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधा लगा कर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगा कर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: ओह, तो इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफ़ी है?
1: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफ़ी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगा कर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इसमें बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीके सच में इतने असरदार हैं?
1: बिल्कुल असरदार है। कई शोध में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज़्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर मन भर आता है।
1: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: वाह, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चे घर लौट आते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
1: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदा क्या क्या हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन सामान्य से तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उसके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहता है या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी शामिल होते हैं तो बच्चे को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती है। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूर बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चों पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
0: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय तय होता है?
1: कम से कम 1 घंटे तक तो लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ी झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए।
1: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे को बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी न खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं है बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज एक शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जाँच और टीकाकरण और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कहीं।
0: मैं आपकी दोस्त आरजे रुचि आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। खासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
3: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो है, हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40-30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इससे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत आप देखिए, अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है। तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है। उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैटो इसमें पॉइंटेड गार्ड में परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूजर है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो कोविड 19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जी और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
2: जी।
3: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
2: परवल में,
3: हाँ परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
2: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, खास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्वों की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में, तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
3: देखिए परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भरा रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीना में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे अब लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पर तैयार करिए या 2x1 मीटर पर तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, और मिट्टी ले करके आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूराडॉन डालिए, 2 ग्राम एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के आठ के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहे तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोहत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
2: जी।
3: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी से ढक दीजिए और हल्का सा उसमें फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है। और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको, तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, बर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा। और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोट्स है उसमें 7-8 नोट, आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए। जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए
2: जी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो हैं इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
3: देखिए, परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियां तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियां हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्राप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है, तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले आते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियाँ जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है, तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं। नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है, तो ये सब प्रजातियाँ हैं जिसको आप जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
2: जी।
3: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
2: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, किस प्रकार की खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
3: देखिए अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट से देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
2: जी।
3: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो है 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
2: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
3: देखिए किसान भाई बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है और वह क्यों होती है, किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पे आता है और मादा फूल अलग पौधे पे आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है और मादा फूल पौधा जो होता है जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा, वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है। मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
2: जी,
3: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप जो है 1 एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फिरामोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है तो वो, और मेल अट्रैक्टेंट होता है वो, तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
2: अच्छा।
3: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है।
2: जी।
3: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें, और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
2: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
7: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत

है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

90.8 ग्रीन एफएम पर। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ही चाव से खाते हैं, किसान भाई बहन बहुत ही चाव से उगाते हैं और उससे अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो अपनी फसलों को रोगों से बचा सके। अगर रोग लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। और आज हम परवल के प्रमुख रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो सब्जी है परवल। परवल के कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाटिल। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं रोग विज्ञान विभाग से BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे परवल में आने वाला रोग, इससे कैसे पहचानने और इसका कैसे प्रबंधन करना है। अभी हम परवल हम सोचते परवल ऐसे एक सब्जी है, इसमें रोग लगता ही नहीं। हम सोचते पहला इसमें रोग और कीट का प्रभावित नहीं होता था। आजकल जलवायु परिवर्तन से वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं परवल एक ऐसे हुए सब्जी है, इसमें भी रोग, बीमारी और कीड़ा लगने के लिए स्टार्ट शुरू हुआ है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से। ये रोग और कीट से क्या हो रहा है, इसका उत्पादन भी घट रहे और इसका गुणवत्ता भी प्रभावित भी हो सकता है।
0: जी सर। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले रोग देखने को के लिए कम मिलते थे, तो अगर अभी रोग दिख रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो परवल में लगते हैं?
3: परवल में होता है अभी तीन चार तरफ का होता है। पत्ता में दिखने वाला रोग होता है, मृदु जनित रोग होता है, और नंजन और विष वायरस का रोग होता है, और आजकल जंतु हम बोल देते हैं नेमेटोड का भी तरफ से फैलने वाला रोग भी हम लोग को दिख रहे हैं आजकल।
0: जी सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि पत्तों में भी लगते हैं, फिर विषाणु जनित भी रोग होते हैं और भी कई तरह के रोग होते हैं। हम शुरुआत करते हैं परवल के पत्तों के रोग के बारे में। तो परवल के पत्तों में कौन कौन से रोग आते हैं?
3: परवल के पत्तों में दिखता है झुलस रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ को होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृद्रोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
0: जी सर। सबसे पहले आप हमें, हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि झुलस रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है?
3: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल में झुलस रोग के बारे में। झुलस रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है, सारा पत्ता को हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल जब वो अनुकूल मौसम होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग के ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते है, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तभी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकता है। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे बोरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे, वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा जुलास रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते है, पत्ता पूरा सूख जाता है। इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाता है, वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
2: जी सर, बचाव के लिए क्या करेंगे?
3: बच्चा के लिए हम लोग को क्या, पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है। रोगग्रस्त पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है। खेत में जलभराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देता है, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा, पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो जलस रोग का प्रॉब्लम से दिख जाता है। इसी के आवश्यकता से जो भी आवश्यकता है, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो फंग नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा। आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंद नाशक, उसी का ही किसी का कृषि विज्ञानी का संपर्क करें, उसी के करें। जो आपको लिए आपको जानकारी होना है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसे फफूंद नाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।
2: जी, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही छिड़काव
3: करना चाहिए,
2: उतना ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, मतलब जुलास रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना
3: है। जो खाद और पानी कम देना, जितना चाहिए उतना। जी, जब हम पानी ज़्यादा देते खाद ज़्यादा देते पत्ता ज़्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंद है, वो जुलास रोग करने वाला फफूंद है, वो पत्ता में आराम से

0: से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं, तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उसकी पहचान क्या है?
1: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है, चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृद रोग में असीता होता है। हम लोग ये बोल देते हैं मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो देखते थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं, जो भी पत्तिया आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है, उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है। जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा। बाद में इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते हैं ना वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी, इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असीता मृदरोमित असीता, अभी हम बोल रहे थे वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ ऊपर दिखते थे, अभी मृदरोमित में क्या होते हैं उसमें उल्टा हो जाते, उसमें ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग का श्रेणिया के जैसा आपको ऊपर दिखता है, नीचे नीचे आपका नीचे पत्ते के नीचे साइड में क्या होता है आपका फफुंग दिख सकते हैं, वो बैंगनी रंग का फफुंग दिख सकते हैं, इसी की वजह से क्या हो जाते है आपको ज़्यादा उत्पादन घट जाते हैं। ये दोनों रोग, एक रोग आता है जून जुलाई में, एक रोग आता है जब गर्मी ज़्यादा, वो

0: अभी अभी जो आजकल हम देखते हैं ना वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से उम्र ज़्यादा, जब उम्र ज़्यादा होता है मृदुरोमित का डाउनी मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा।
1: जी सर, इनसे बचाव के लिए क्या करें?
0: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए। जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता वजह से पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और और खेती में क्या होते हैं ना, जो भी पत्ता दिखते हैं आप अभी आप चूर्ण जनिक दिखा है और मृदु जनिक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले के, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाता है और पानी से फैल जाते हैं, जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा और बालों में पूर्णित दूरी से, जब भी जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का प्लान एक पौधे से दूसरा पौधे को थोड़ा डिस्टेंस अच्छा से करें, जैसे होना चाहिए सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए। जो फफूंग होता है, ये फफूंग दोनों का फफूंग हो जाता है, जो कचरा हाँ पत्ता का कचरा हो नीचे गिरता है ना उसी से फैलता है, इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
1: जी सर, तो मतलब अगर कोई ऐसे पत्ते दिख जाएं जिनके ऊपर ये रोग लगे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें।
0: नष्ट करें पहला
1: जी, और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
0: जब भी ये रोग ज्यादा हो जाते हैं ना तब भी हम लोग को फफूंग नाशक का चढ़ाई छिड़काव करना है। जब भी इसमें फफूंग नाशक के चूड़ियाँ असिता में हम लोग फफूंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफूंग नाशक है 1 ml पर लीटर छिड़काव कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत वो चीफ एंड बेस्ट है उसी का भी कर सकते हैं, और मृदुरोमित के लिए हम लोग मेटालैक्सिल MZ है उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा।
1: जी, यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
0: वही बोल रहा हूँ अभी, ये जैसा परवल इतना क्रॉप है इसमें ज़्यादा फफूंग नाशक के लिए हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना, उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं।
1: जी सर, सर अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए?
0: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफूंग का फफूंग वजह से होने वाले दो रोग जो जुलास के उसी के बारे में, और वैसे ही पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है ना इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना, इसी में क्या होता है पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है, इसी को सब लोग को जानते हैं। जब पत्ता इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है एक जगह पीला हो जाता है, ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरे वजह से, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और दूसरे वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं मोज़ेक होना चाहिए, जैसा एक एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक दोनों मिक्सचर हो सकता है, इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके, और पीलापन भी हो जाते है पूरा पत्ता दूर से भी हम लोग को दिख सकते हैं पीलापन हो जाता है, और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना फूल और फल आने वाला पूरा अचानक वो घट सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पत्ता पूरा पौधों को नुकसान करेगा। वो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से, क्योंकि ये वायरस से कीड़ा से फैलता है, जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं, ये फिर देखते हैं थ्रिप्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है।
1: जी सर, तो इन अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन कैसे करें?
0: हमेशा हमको क्या करना है, पहला

0: स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है। और रोगग्रस्त पौधा, जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है, ये पहला हम लोग करें। क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठता है, उसी से पूरा फैल जाता है। एक भी नहीं रुकना है, रखना है जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है, नष्ट हटा के नष्ट करना है। और खेत में जो भी खाद हम देते हैं जो भी जितना भी कम देना पड़ेगा। अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक, क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना, इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने। अभी इसमें फॉर्मल में हम लोग वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है। जो भी होता है नीम ऑयल, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो इसी का स्प्रे कर सकते हैं, हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये सफ़ेद मक्खी दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी कर रख सकते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफ़ेद मक्खी देखते हैं तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से। इसी से हम लोग ये कीड़ा को कीड़ा के संघ की घटना से क्या होता है ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा।
1: जी सर, तो अब हम मृदा जनित रोगों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
0: इसमें जड़ एव थना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते थे उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होता है ना पौधा अचानक क्या होते हैं

0: दो साल के बाद आप रखे तो जो जंतु फफूंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान जाते, क्योंकि अभी ये मृदुजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा, पौधा सूखने से क्या होता है, पूरा आपका उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
1: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं। हाँ,
0: ये क्योंकि मृदजनित फफूंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफूंग नाशक नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी फफूंग नाशक होगा इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफूंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं, और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर, वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जिसी में होता है, एक संक्रमित रोग हम देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो केस से बाहर हटाना है, ये देखना है, ये ध्यान में रखना है, केस से बाहर हटाना है। और जो भी जैविक फफूंग नाशक होता है, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, वो जब जैविक फफूंग नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफूंग निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
1: जी सर, अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: किसानों के लिए पांच महत्वपूर्ण बात, किसान भाइयों परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है, हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री को प्रयोग करें, जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और दूसरी बात है, खेत में जल भराव ना देना है, जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है, रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है, खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है, हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते है, रासायनिक दवाई जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की, केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक शिलिंद्र है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद, कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब ज़रूरत हो, है ना सर? जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें?
0: ये जो हम बात किए थे इसी के बारे में ध्यान में रखना है, वही पांच रोग हम डिस्कस किए ना, उसी अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज़्यादा होने वाला रोग है।
1: तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत

0: गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
2: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
0: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
2: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें। आज की पहेली है छोटी सी नन्ही सी है।
1: पूछते हैं पहेली भी पूछते हैं।
2: मौसी, पहेली सुलझाने में बहुत मजा आता है।
1: सच्ची?
3: जितनी मुश्किल पहेली उतना ज्यादा मजा।
1: तो ठीक है, आज मैं सबसे ज्यादा मुश्किल पहेली

0: लिए पूछूंगी।
1: सबसे मुश्किल
0: कौन सी पूछूं। हाँ याद आ गई।
2: कौन सी?
0: सुनो, छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े बड़े। ये मजदूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े, ये बड़े चढ़े। इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम। सीख सको तो इससे सीखो, मिलजुल कैसे करते काम। अच्छा मैं दोहराऊं?
3: हाँ,
0: छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े बड़े। सोचो, ये मजदूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े, ये बड़े चढ़े। बताओ
2: जी क्या है?
0: इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम। सीख सको तो इससे सीखो, मिलजुल कैसे करते काम। बहुत उछल रहे थे ना। मासी पहेली, लो आ गई पहेली। सोचो, तुम्हारे आसपास भी हो सकती है, क्या पता अभी भी हो।
2: ये क्या है? मजदूर सैनिक।
4: हाँ, मजदूर सैनिक।
5: रानी भी है, छोटी सी भी है, ये कैसी बात है?
6: अरे हाँ, ये तो चींटी है। चींटी।
3: हाँ, चींटी चींटी चींटी।
6: हाँ, ये मिलजुल कर काम करती है।
0: शाबाश, बिल्कुल ठीक। छोटी सी नन्ही सी चींटी काम है करती बड़े बड़े। ये मजदूर ये सैनिक होती मुश्किल में भी बड़े चढ़े। चींटी ने रानी बनकर भी ना सीखा करना आराम। चींटी से हम सीख सकते मिलजुल कैसे करते काम।
7: आओ क्विज करें। अभी आप सुन रहे थे चींटी पर आधारित ये पहेली। कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे। ध्वनिंकन बटी लैंगलिंडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
8: मैम, जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
9: हाँ बिल्कुल, जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुरछिया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछुआ चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
8: तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
9: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों के जो पत्ते के किनारे किनारे से, ठीक है। उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा, तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
8: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
9: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है, तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको अपने पौधों पर नज़र आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज़्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
8: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
8: और मैम अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं।
9: हाँ बिल्कुल, तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तीला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तीला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जा करके देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तीले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तीला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर ले करके आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तीले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है, एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद। जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई इवन हम जो वैज्ञानिक है वो भी हमें छिड़काव करना रहता है तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
8: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए।
9: बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है, तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है
8: जी। मैम तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
9: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी, जहां तक कि हम बात करेंगे अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही है किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया, तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी, फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है 1-2 जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है, काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था, इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल की अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था। मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
10: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
9: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
10: जी मैम, तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
9: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना, मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिले का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
10: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: धन्यवाद उमा।
10: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को

0: बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज

चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई कई के आज नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी। और वैसे तो पिछले कई सारे एपिसोड्स में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, वेक्टर बोरोन डिजीज की भी, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, तो कभी मलेरिया की। पर आज हम बात करने वाले हैं एक अहम वेक्टर जनित रोग की, यानी कि एक्यूट एनफ्लाइटिस सिंड्रोम की, जिसे कि हम जापानी दिमाग के बुखार के नाम से भी जानते हैं। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी आरजे उमा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्स जिनसे पूरा इलाका सलाह लेता है, सेहत के बारे में पूछता है। हमारे साथ सेहत के साथी हैं सेहतिया सिंह जी। सेहतिया सिंह का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे पास के ही गांव में 6 साल की बिटिया चिंगी की बात करेंगे हम आज। बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया था और चिंगी वहीं खेल रही थी, और शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक उसे दौरा भी पड़ने लगा था।
1: हाँ आरजे उमा, यह मामला AES या JE का ही था। परिवार को लगा कि बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं कराती।
0: और देखिए, दुख की सबसे बात यही है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं होती है, ऐसी घटनाएं बरसात के मौसम में कई बच्चों को होती है और कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग इस बीमारी को सही समय पर पहचानें।
1: अरे भाई, आज फिर कुछ काम की बात करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत ज़रूरी है कि JE AES क्या है, कैसे फैलता है और गांव समाज मिलकर कैसे इसे रोक सकते हैं, ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल गांव, बाजार, खेत खलियान, हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और JE। लोग इन शब्दों से डरे हुए भी हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर AES या फिर जिसे JE भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है।
1: देखो आरजे उमा, AES का पूरा नाम है एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और JE यानी जैपनीज इन्फ्लाइटिस यानी जापानी दिमाग की बुखार, AES का ही एक गंभीर रूप है।
0: यानी AES एक बड़ा नाम है और JE इसका मुख्य कारण है।
1: बिल्कुल सही, जैसे बरसात में कई तरह के

0: बाढ़ आते हैं, पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है। उसी तरह से AES में कई वजहें होती हैं, पर JEE उनमें भारी बीमारी है।
1: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है, कोई कहता है मच्छर से फैलता है, लेकिन सच्चाई क्या है?
0: आरजे उमा, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी JEE का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक एम्प्लीफाइंग होस्ट जैसे सुअर और कुछ पक्षी जैसे बगुला, सारस वगैरह वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्स मच्छर जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इसी वजह से JEE ज़्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज़्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी यह बीमारी न पूरे देश में फैलती है न हर मौसम में, यह खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है।
1: थोड़ा आसान भाषा में समझाइए नसीहतिया भैया।
0: अरे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि JEE एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, सुअरों के पास तथा जंगल के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं।
1: अच्छा, इसका मतलब मच्छर ही इसके मुख्य कारण है।
0: हाँ, बात यही नहीं खत्म होती। ये वायरस पशुओं खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।
1: और AES की किन वजहों से होता है?
0: AES कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी अगर बच्चा भूखा हो, लेकिन JEE इसका सबसे खतरनाक रूप है।
1: अब तक हम जान गए कि कैसे फैलता है, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि कौन से लक्षण दिखे जो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए, ना कि किसी और तरीके का सहारा लेना चाहिए।
0: बहुत जरूरी सवाल। AES या JEE में लक्षण अचानक आते हैं। इसमें जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, जिसे मुख्य लक्षण है तेज और अचानक बुखार, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना, या उल्टा हो सकता है कि नींद बिल्कुल आना ही नहीं, लगातार रोना, दौरा पड़ना जिसको मिर्गी या फीट बोलते हैं, बच्चा होश में न रहना, गर्दन अकड़ना या चलने फिरने में दिक्कत होना।
1: मतलब ये सारे लक्षण बहुत तेजी से खराब होते चले जाते हैं, इतनी तेजी से कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है।
0: अरे हाँ, AES समय बर्बाद नहीं कराता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें ऐसी स्थिति में?
0: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय बिल्कुल न गवाएं, घरेलू इलाज जैसे झाड़ फूंक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। रास्ते में मरीज की सुरक्षित रखने के लिए कुछ आपको हम टिप्स दे देते हैं। वो है कि बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में न दें, न पानी न दवा। बुखार ज़्यादा हो तो गुनगुने पानी की पट्टी लगाएं। फिट्स आए यानी कि बेहोशी छाए तो बच्चे के दोनों ओर करवट दिलाकर रखें। रास्ते में गिरने से बचने के लिए सिर को सपोर्ट दें। अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें। किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई उपचार बीच में न रोकें।
1: अच्छा भैया, बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की इस बीमारी को रोकने में भूमिका क्या है? हम AES या JEE को रोकने में क्या क्या कर सकते हैं?
0: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे उमा। AES या JEE के खिलाफ असली लड़ाई गांव में ही जीता जा सकता है। JEE वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को यह टीका जरूर लगे। यह टीका मुफ्त उपलब्ध है और प्रभावशाली भी है। दूसरा है कि मच्छरों को पनपने से रोकें, घर आंगन में पानी न जमने दें, सुअरों के बाड़े को घर से दूर रखें, नालियों की सफाई, पानी की टंकी को ढककर रखना और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग। इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखें, खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाएं, शरीर खुला न रखें और सुबह शाम बच्चे बाहर न जाएं। पानी और खाना हमेशा साफ रखें। स्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दें, बासी खाना न खिलाएं और लीची खाली पेट न दें। लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं, समय पर इलाज मतलब कि जीवन बचाना।
1: मतलब समय पर अस्पताल जाना जरूरी है। अच्छा भैया, हमारे एक श्रोता हैं रामवरन, पिछले साल उनके पड़ोसी का एक बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले कि 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाए, पर जब अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी।
0: हाँ आरजे उमा, AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं। लोग समझते देर कर देते हैं और बीमारी अपना काम शुरू कर देती है। भाइयों बहनों, AES JEE कोई आम बुखार नहीं, यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय नहीं देती। हम जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी जान बचेगी।
1: अच्छा सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि AES या JEE कितनी गंभीर बीमारी है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?
0: बिल्कुल आरजे उमा, एक घटना आपको सुनाता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। यह कहानी है हमारे ही पास के एक गांव की, जहाँ सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और औरतें नए ओवरहेडेड टैंक से पानी भर रही थी और गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारे इलाके की आशा बहन ममता देवी अपने दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक उनका फोन बजा, दीदी मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार में है। मैंने 108 पर फोन कर दिया। एक घबराई हुई माँ की आवाज थी। ममता ने तुरंत कहा, बहुत सही किया बहन, बस मैं अभी जा रही हूँ, हिम्मत रखिए। वह अपना स्वास्थ्य बैग उठाकर तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा था, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गांव को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब पहुँचना। जब ममता ने दरवाज़ा खटखटाया तो दस्तक सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वह परिवार के लिए उम्मीद थी, भरोसा था, जीवन रक्षक कदम था। देखिए आरजे उमा, कुछ साल पहले इसी इलाके में AES और JEE ने बच्चों की जान ले ली थी। लोग डरते थे, समझ नहीं पाते थे कि यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है या कोई श्राप है, अभिशाप है, कोई जादू टोना है। बहुत से माता पिता झाड़ फूक में विश्वास करते थे और जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। ममता जैसी आशा बहनों सरकारी प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सिखाया गया कैसे शुरुआती लक्षण पहचाने, कैसे परिवारों को समझाएं और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस को ट्रैक करें।
1: ई कवच ये कैसे मदद करता है भैया?
0: बहुत जबरदस्त टूल है ई कवच पोर्टल। CHO और आशा को यह सुविधा देता है कि कौन बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किस परिवार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हों, पोषण NCD से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। यह ऐप उन्हें कदम कदम पर मार्गदर्शन देता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे।
1: वाह, ये तो अच्छी बात है। और ममता बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया?
0: अरे आरजी उमा, ममता तो इस काम में मिसाल बन गई। वो रोज घर जाती, उनके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहता। शुरुआत में परिवार टीके से डरते थे, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ऐसा उनका डर था, पर ममता ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने ही बच्चों का टीकाकरण गांव वालों के सामने करवाया और बोली, देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप भी डरिए मत। और धीरे धीरे लोगों का डर भरोसे में बदल गया।
1: अच्छा सेहतिया भैया, आपने बताया कि JEE बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है, क्या इसका भी कोई टीका है?
0: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, JEE से बचाव का सबसे अच्छा और मजबूत तरीका टीकाकरण ही है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चों को JEE के 2 टीके जरूर लगाते हैं।
1: 2 टीके कब कब?
0: पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चों को खसरा का टीका लगता है। दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच, जब बच्चे को DPT बूस्टर लगता है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिले में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है।
1: अच्छा भैया, बच्चों के लिए तो टीका है और बड़े लोगों के लिए भी टीका होता है क्या?
0: हाँ, जिन राज्यों में बड़ों में भी JEE के केस देखे गए हैं वहां एडल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। 3 राज्यों जिनमें असम के 9 जिले

0: उत्तर प्रदेश के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 26 जिले में 15 साल से ऊपर के लोगों को जेई का टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक खास वैक्सीन इस्तेमाल होती है, जेनवैक, जो कि वयस्कों के लिए बनाई गई है।
1: मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर अगर टीका लग जाए तो जेई से बचाव काफी हद तक संभव है।
0: बिल्कुल आरजे उमा, आपने सही कहा। इसलिए हम आशा, ANM और CHO लगातार यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क जेई का टीका लगवाए।
1: अच्छा भैया, आपको क्या लगता है हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती है?
0: बहुत बड़ा फर्क। जब रेडियो से सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचती है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़ता है, मच्छर रोकथाम पर जोर बढ़ता है, अस्पताल आने में हिचक खत्म होती है। इस तरह सेहत सही और लाभ कई जैसे कार्यक्रम व्यवहार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: तो दोस्तों, आज हमें AES या JE का पूरा ज्ञान मिला, यानी कि इस बारे में हमने पूरी जानकारी ली, इससे कैसे बचना है, इसे कैसे पहचानना है, क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
0: हम लगातार यही कह रहे हैं, आदत बदलें, सेहत सुधरेगी, साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं और जागरूक रहें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों ध्यान रखें, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेहत से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: कि तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
3: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है। और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है। और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए। बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
0: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा। और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम की सघन बागवानी एवं छतरक प्रबंधन के बारे में। सघन बागवानी क्या होती है और अगर सघन बागवानी करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छतरक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे आम के पौधों के लिए, पेड़ के लिए फायदेमंद होता है, इस बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमारी करुणा से। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सघन बागवानी क्या है।
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सघन बागवानी जो है एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम दूरी पर और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित जमीन और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फलों या सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम सघन बागवानी की बात करते हैं तो क्या सघन बागवानी करने से कुछ फायदे होते हैं?
1: हाँ, कम जमीन में कई गुना अधिक पैदावार मिलती है इसको सघन बागवानी करने से, और फलों का आकार एवं गुणवत्ता भी अच्छा हो जाता है। तुराई हो, सिंचाई हो एवं देखरेख करना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पौधे के साइज को मेंटेन किया जाता है, छोटा रखा जाता है, तो जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही साथ किसानों की आय पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सघन बागवानी की विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों करना चाहिए?
1: सघन बागवानी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो इस पद्धति में मजदूर भी कम लगता है क्योंकि पौधा को छोटा रखा जाता है जिससे पौधे पर किया जाने वाला कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरे जमीन का सही सही उपयोग हो जाता है। सघन बागवानी में जैसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी इत्यादि का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है, जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस बागवानी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होती है और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक फलों की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ खेती एवं बाग लगाने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके चलते कि जमीन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अगर हम इस पद्धति से बागवानी करेंगे तो जो मेरी बढ़ती जनसंख्या का डिमांड है फल और सब्जी का वो मिल पाएगा।

0: जी मैम, मैम अगर हम सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई बहन, तो क्या उसमें कुछ विशेष किस्म होते हैं जिनका चयन करना चाहिए?
1: सघन बागवानी के लिए ये होता है कि सभी का स्ट्रक्चर, पौधा हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, थोड़ा अलग अलग होता है। कोई अधिक ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है। तो इसमें भी, पौधा में भी, आम में भी कुछ बौना किस्म होते हैं, तो उसको प्रीफर करते हैं सघन बागवानी के लिए। इसमें वैरायटी की बात करें तो है आम्रपाली, जैसे इसको किचन गार्डन के लिए भी सूटेबल माना गया है, क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होता है, कम स्पेस लेता है। तो आम्रपाली लगा सकते हैं सघन बागवानी में। मल्लिका का भी थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा ही है। पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है। ये सब का जो ढांचा होता है पौधा का, वो थोड़ा छोटा होता है। इसको प्रीफर कर सकते हैं सघन बागवानी के लिए।
0: जी मैम, मैम क्या सघन बागवानी करने के लिए भूमि की कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है, और पौध रोपण कैसे करते हैं?
1: भूमि की तैयारी के लिए कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो परंपरागत बागवानी के लिए जो तैयारी होती है पौधा लगाने का, वही तैयारी इसमें भी की जाती है। सिर्फ पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी जब हम रेखांकन करते हैं, तो उसमें ध्यान देते हैं कि पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितना रखें।
0: जी।
1: तो एक आम के लिए अगर सघन बागवानी करनी है, तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है, वो 5 मीटर बाय 5 मीटर है। और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढा बनाएंगे, तो उसमें 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा मई के महीने में खोदकर उसको, फिर मानसून आने से पहले 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भर देना चाहिए। पौध रोपण के लिए, आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी, और ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा जो होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसे किसी विश्वसनीय पौधशाला या शोध संस्थान से ही लेना चाहिए। फिर उन्हें जुलाई के मध्य तक सावधानीपूर्वक तैयार गड्ढों में विधिवत रोप देते हैं, और रोपने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
0: जी मैम, अब आप हमें सिंचाई के बारे में विस्तार से बताइए कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए।
1: हाँ, अगर हम सिंचाई प्रथम 2 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। जब लगे कि हाँ पौधे को आप जरूरत है पानी का, तो उसको 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि 2 साल के पौधे बहुत छोटे होते हैं, 2 साल तक, तो उसका बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, कब उसे पानी की आवश्यकता है किसान भाई को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब बड़े पौधे हो जाते हैं, तो उसको परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करें, तो ठंडा में यानी जाड़े में 15 दिन के अंतराल पर, और गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम पानी अगर देते हैं, तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी पौधा को देना चाहिए। उससे पानी का बचत भी होता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: जी मैम, मैम अब हम छत्रक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: सघन बागवानी में प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौध रोपण के 1 वर्ष बाद मुख्य तने को भूमि के सतह से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर से दिसंबर जनवरी में काटते हैं। तनों की कटी सतह पर फफूंद नाशक दवा का पानी में या अंडी के तेल में घोल बनाकर अच्छी तरह लगाना चाहिए। कटाई के बाद तनों पर अप्रैल से बहुतायत में कल्ले निकलते हैं, जिनमें से केवल 4 कल्लों को चारों दिशाओं में बढ़ने देते हैं। शेष कल्लों को यथाशीघ्र काट देना चाहिए। फिर इन्हीं कल्लों को पुनः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काटते हैं। इन 4 कल्लों को, 4 कल्लों से पुनः 2 से 3 कल्लों का सृजन होने देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधे का वांछित छतरीनुमा आकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेड़ में जुलाई में निकले लगभग 80% शाखाओं में मंजर आ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष बाद पौधे से लगभग 10 से 12% टहनियाँ, जैसे सूखी टहनियाँ हो या रोगग्रस्त टहनियाँ हो, तो प्रतिवर्ष

0: निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिले और स्वस्थ कलों का सृजन हो सके। इस प्रकार पौधों का सामयिक प्रबंधन करके 20 से 25 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण भरपूर फलन ली जा सकती है।
1: जी मैम, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो 20 से 25 वर्ष तक अच्छे फल मिल सकते हैं हमें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से आम की सघन बागवानी करें और सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाई बहन जो बागवानी करते हैं, आप मैम की बातें जो मैम ने बताई है उन बातों का ध्यान रखिए, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे फल आएंगे, गुणवत्ता युक्त फल आएंगे और अधिक फल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है आपका अपना पसंदीदा FM ग्रीन, और मैं हूँ RJ अनु। उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जलवायु अनुकूल खेती पर आजकल ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड आज एक विषय हम लेकर आए हैं, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन। और इस विषय पर खास चर्चा के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर घनश्याम, और मैं आपको बता दूं, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले सर, हम बात करते हैं जलवायु अनुकूल खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, तो इसके मुख्य आयाम क्या क्या हैं?
6: किसान भाइयों, जलवायु अनुकूल खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन हेतु प्रमुख रूप से चार बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नंबर एक, जलवायु। नंबर दो, मृदा का प्रकार एवं प्राकृतिक परिस्थितियां। और नंबर तीन, फसल पद्धति एवं प्रजातियां। और अंत में चौथा बिंदु है समग्र पोषक तत्व प्रबंधन।
4: तो सर, बिहार की जलवायु के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
6: हमारा जो प्रदेश बिहार है, बिहार का संपूर्ण भाग उपोष्ण कटवन क्षेत्र में स्थित है, जो एक मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु यानी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर विशेष रूप से तीन ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है, वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, और तीसरी शीत एवं शरद ऋतु जो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक चलती है।
4: जी, और साथ ही अगर मिट्टी के बारे में बता दें, खासतौर पर बिहार के बारे में, तो थोड़ी जानकारी हमारी और बढ़ जाएगी सर।
6: अगर समग्र रूप से देखा जाए तो बिहार की मिट्टियों में गंगा का उत्तरी मैदान, तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ, पुरानी जड़ोर मिट्टी या बांगर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, खादर या दियारा क्षेत्र की मिट्टी, गंगा का दक्षिणी मैदान, टाल की मिट्टी, अभ्रमक मिट्टी, कृषि उत्पादन, उपजाऊ मिट्टी एवं उपयुक्त जलवायु को ध्यान में रखकर बिहार को तीन भागों में बांटा गया है। क्षेत्र एक जिसमें 13 जिले हैं, क्षेत्र दो जिसमें 8 जिले हैं और क्षेत्र तीन इसमें 17 जिले हैं। इस क्षेत्र को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है, क्षेत्र 3A जिसमें 6 जिले हैं और क्षेत्र 3B इसमें 11 जिले शामिल हैं।
4: जी सर, अगर फसल और उनकी प्रजातियों के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन हम करते हैं तो कैसे करें, इसकी जानकारी दें।
6: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। फसल और फसल की प्रजातियां पोषण तत्व प्रबंधन में विशेष महत्व रखती हैं। यदि हम अपने फसल चक्र में केवल सस्य फसलों यानी सीरियल क्रॉप्स को ही शामिल करते हैं तो इस दशा में हमको अधिक पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि हम अपने फसल चक्र में सस्य फसल के साथ साथ दलहनी फसल भी लेते हैं तो इससे हमको कम पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दलहनी फसलें स्वतः ही वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में स्थापित करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देती हैं और साथ ही ये गहरी जड़ वाली फसलें होती हैं जो कि नीचे के पोषक तत्व जो ज़मीन में पड़े हुए हैं उनका उपयोग करके कम पोषक तत्व लेने में ही अच्छा उत्पादन देने में सफल रहती हैं।
4: जी सर, पौधे के लिए कौन कौन से पोषक तत्व ज़रूरी हैं जिनका प्रबंधन करना चाहिए?
6: वैज्ञानिक आधार पर ये पाया गया है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 17 है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ये सारे तत्व पौधे तीन तरह से प्राप्त करते हैं, कुछ तत्व जल से, कुछ थल यानी पृथ्वी से और कुछ वायु से, और इसके अलावा जो चौथा स्रोत जो होता है आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का वो जैविक पदार्थ एवं उर्वरक होते हैं जिनको हम मिट्टी जांच के आधार पर सिफारिश की हुई मात्रा उस मिट्टी में और उस फसल और प्रजाति के अनुसार देते हैं। यदि हम लंबी अवधि की फसल की प्रजाति लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमको अधिक पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर अधिक उपज लेने वाली अगर प्रजाति हम लगा रहे हैं तो उसके लिए अधिक पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है, बशर्ते कम अवधि की फसल प्रजाति के लिए। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि कम पोषक तत्व पर भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। साथ ही जलवायु परिस्थिति को देखते हुए कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो सूखे के मौसम में भी अच्छा करती हैं, जैसे धान की अर्जल

0: हमारे पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं। दूसरा, इनके प्रयोग से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक बना रहता है और हमको लाभदायक टिकाऊ उत्पादन मिट्टी से मिलता रहता है। हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। इसके लिए हमको जैविक खादों के साथ साथ उर्वरक और पौधों के अवशेषों और जीवाणु खाद का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ पर हम किसी तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करने में अक्षम हैं, वहाँ पर बरसात के समय में हरी खाद का उपयोग करके हम उस मिट्टी में जैव पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारी परिस्थिति सिंचित है तो उसमें हम पोषक तत्वों को पूर्ण रूप से अच्छी मात्रा में दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार की मात्रा उसमें स्प्लिट डोजेस दी जा सकती हैं, जबकि असिंचित अवस्था के लिए फसल के लिए हमको एक ही बार पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर सूखे की परिस्थिति है और पानी कम है तो ऐसे में हमको उर्वरक का पर्णीय छिड़काव करने में ज़्यादा फायदा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैविक खाद, उर्वरक, जीवाणु खाद और पौधों के अवशेषों का समुचित और यथासंभव प्रयोग मिट्टी में करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आज के इस वार्ता को सुनकर। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और इसमें किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आपने जाना। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा, 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों

के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति है तो यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यों कहें, यह मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, ये भी हम कह सकते हैं।
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है और जिसे हम बड़ी आसानी से, इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में एक कोई झोपड़ी बनाकर इसकी खेती बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और इसलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का, इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व तो पाया जाता है। इसलिए इसका यदि हमारे हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण से मुक्त रहेंगे।
0: तो ये तो आपने बताया मैम कि कुपोषित अगर बच्चे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जो उनके कुपोषण को दूर करेगा, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हुए, जो जवान लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कुपोषित नहीं हैं, तो उनके लिए क्या उपयोगिता है इसकी?
1: मशरूम की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ कुपोषण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, कल कारखाने चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है। घटती हुई कृषि योग्य भूमि से हमें बढ़ती हुई आबादी के लिए उम्दा किस्म का खाद्य पदार्थ चाहिए। तो इसके लिए मशरूम काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि मशरूम ऐसी खेती है जो कि खेती बिना खेत की होती है। इसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी बंजर भूमि पर भी यदि हम एक झोपड़ी बना देते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर जगह होता है, मतलब छत और ज़मीन के बीच का जो जगह होता है, उस जगह का उपयोग करके इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम यदि भूमि नहीं भी है तो भी हम इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ रोजगार का अवसर घट रहा है, तो ऐसे ऐसे मशरूम एक स्वरोजगार का उत्तम साधन हो सकता है। उसके इसके अलावा जिसे हम देखते हैं कि हमारे युवाओं का कृषि के प्रति रुझान घटता जा रहा है, क्योंकि वो कृषि का मतलब समझते हैं कि जेठ के धूप में कृषि में काम करना, सावन के मूसलाधार बारिश में खेती में काम करना और पूस की ठंड में खेती में काम करना। लेकिन इस सारी तथ्यों को मशरूम खेती में हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति में एक्सपोज होकर खेती नहीं करना है, बल्कि किसी कमरे के अंदर मौसम की मार से बचते हुए खेती करना है। तो ये इसलिए हमारे युवाओं का रुझान भी मशरूम की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इसमें आपका जो खेती में हम पैसा लगाते हैं, तो यह कोई ज़रूरी नहीं जितना हम पैसा लगाए हैं उतना पैसा हमें मिलेगा, और वो मिलता भी है तो एक फसल का जो क्रॉप सीजन होता है वो ख़त्म होने के बाद ही मिलता है। लेकिन मशरूम ऐसा फसल है जिसमें आज हम पूंजी लगाते हैं तो एक महीना से डेढ़ महीना के अंदर हम यदि हम 100 रुपया लगाए हैं तो वो कम से कम 200 से 250 रुपया हमको एक से डेढ़ महीने के अंदर मिल जाता है। तो इसमें हम कहते हैं आमदनी हमारा एक से डेढ़ महीने के अंदर आ जाता है। तो यह इसलिए भी हमारे युवाओं का रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो पारंपरिक फसल का उत्पादन होता है उसमें खर्च काफ़ी लगता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में मशरूम के उत्पादन में खर्च काफ़ी कम लगता है, इसलिए यह एक लाभकारी फसल है। इसके अलावा यह छोटे किसान और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसकी खेती के लिए काफ़ी कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो हमारा दूसरे फसल से जो उत्पादन के बाद जो कृषि अवशेष बचता है उस कृषि अवशेष का उपयोग करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। और इस खेती को चूंकि हम कमरे के अंदर करते हैं, इसे पाला आंधी तूफान पशुओं आदि से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके यदि हम इसको बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो इसको निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण जरिया ये हो सकता है, क्योंकि घर घर की महिला खेत नहीं जा सकती है, लेकिन यदि घर के पिछवाड़े में ही या घर के किसी कमरा में खेती करना हो तो वो हर की घर की महिला कर सकती है। इसलिए हम महिलाओं के खाली समय का सदुपयोग करके उनको सशक्त कर सकते हैं। इस तरह से मशरूम न केवल हमारा एक पोषक आहार है, एक कुपोषण का जरिया है, बल्कि यह कई मायने में हमारे लिए उपयोगी है।
0: जी, तो ये आपने जाना कि इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, कैसे ये हमारे लिए खास है, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर धूप में और जो आंधियों में नहीं रहना पड़ता, यानी हमें भूमि पर नहीं जाना पड़ता है, बस अपने आप कमरे में ही इसे उगा सकते हैं, छोटे से कमरे में छांव में ही आप इसे उगा सकते हैं। और मैम, इसके औषधीय गुण के बारे में हम जानना चाहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग जो है हर चीज़ के औषधीय गुण को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और इसमें इससे बचाव के लिए क्या हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलेंगी, पौष्टिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी, तो इसके पौष्टिक एवं औषधीय गुण के बारे में बताएं।
1: मशरूम जो है वह सभी उम्र के लोगों के लिए स्वादिष्ट व उत्तम पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें का प्रोटीन ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन अमीनो अम्ल के कारण उच्च श्रेणी का माना जाता है, और इसे हम आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए इसके प्रोटीन को सुपाच्य प्रोटीन कहा जाता है। उत्तम प्रोटीन के कारण कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का भी उचित अवशोषण होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण दांतों की समस्याओं से दूर करता है। बी कम्प्लेक्स ग्रुप में इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है, जो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसमें लौह तत्व की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध होने की अवस्था में होती है, इसलिए यह जो एनीमिया है उस एनीमिया के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। इसमें भस्म और रेशे उपलब्ध होने कारण पेट का जो अम्लीयपन होता है या कब्ज होता है उसकी समस्या को यह दूर करता है। नियासिन और पेंटोथेनिक अम्ल जो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह चर्म रोग तथा हाथ व पैरों के जलन को समाप्त करने में सहायक होता है। मशरूम में पाया जाने वाला इंगेस्टेरॉल पाचन क्रिया के दौरान विटामिन डी में बदल जाता है, अतः यह हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा भोजन है और हड्डी के हमारे मजबूती के लिए भी अच्छा है। इसमें कम कैलोरी, कम वसा, कम स्टार्च, कम कोलेस्ट्रॉल तथा अधिक पोटेशियम सोडियम अनुपात के कारण यह उन व्यक्तियों के लिए वरदान है जो मोटापे, अधिक तनाव, हृदय रोग एवं मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। अतः यह मशरूम ना केवल स्वादिष्ट है, ना केवल पौष्टिक है, बल्कि औषधीय उपयोगिता और गुणों से भरपूर है।
2: जी,
1: इसे FAO ने एक मशरूम को संपूरक आहार का दर्जा भी दिया है।
2: संपूरक आहार यानी कि इसमें हर वो चीज़ मिलेंगी आपको जो आपके शरीर को जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आप जानते हैं कि बिहार का जो जलवायु है आप भी इससे अवगत हैं, तो क्या इसमें हम ये जान सकते हैं कि मशरूम के कौन कौन से प्रजाति हमारे इस बिहार की जलवायु में लगा सकते हैं हम, और ये अच्छा जो फल है वो हमें मिलेगा इसका?
1: मशरूम कैसे बिहार में हम लोग चार तरह की प्रजातियां जो कि लगा सकते हैं, एक बटन मशरूम, दूसरा ऑयस्टर मशरूम, तीसरा मिल्की मशरूम और चौथा पुआल मशरूम। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है वह बटन मशरूम का होता है, लेकिन बटन मशरूम की तकनीक थोड़ी जटिल है। उसमें हम लोग को कंपोस्ट बनाना होता है और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सितंबर लास्ट अक्टूबर में हम लोग करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट बनाने में छोटी विधि से यदि हम कंपोस्ट बनाए तो लगभग 15 दिन लगता है और लंबी विधि से बनाए तो 1 महीने लगता है। और लेकिन इसमें हमारे किसान भाई ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि कंपोस्ट बनाने की जो खुले में प्रक्रिया होती है तो उसमें काफ़ी जो इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है और कंपोस्ट उम्दा क्वालिटी का नहीं बनता है। और लेकिन हमारे किसान भाई बना रहे हैं, भागलपुर में भी कई किसान भाई बना रहे हैं। तो आप यदि बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के लास्ट में आप इसके लिए कंपोस्ट बना सकते हैं और कंपोस्ट बना करके फिर कंपोस्ट को निर्जीवीकृत करके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद उसको निर्जीवीकृत अखबार से ढक देते हैं। फिर जब उसमें माइसेलियम रन कर जाता है तो फिर उसमें हम लोग केसिंग करते हैं, फिर केसिंग के बाद उसमें फलन आता है। इसके इसी और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो खेती होती है हमारे यहाँ वह है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की तकनीक काफ़ी सुगम है, काफ़ी आसान है और इसे बहुत कम कीमत पर आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। लेकिन है कि इसका मार्केट में बहुत डिमांड नहीं है, इस कारण से क्या कि इसको हम लोग लाइफ बहुत कम है, इसको हम कोई प्रोसेस करके इसको ताज़ा हम नहीं रख सकते। जैसे कि बटन मशरूम को हम हार्वेस्ट के बाद भी 1 सप्ताह तक रख सकते हैं, उसको हम लोग उसके कुछ रसायन है सोडियम पोटासियम मेटाबोसल्फाइट, उस रसायन के साथ उसको यदि ट्रीट कर दें तो इसको हम लोग 1 सप्ताह तक रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर मशरूम को हम किसी रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे वो पानी के संपर्क में आता है वह गलने लगता है। अच्छा। इसका मार्केट नहीं है, लेकिन यदि इसको हम ताज़ा इसका यदि मार्केट उपलब्ध हो, यदि ताज़े रूप में इसका सेवन करें तो यह काफ़ी उपयोगी मशरूम है, काफ़ी पौष्टिक है और इसकी खेती बहुत आसान है। तो हम लोग जो भागलपुर में मुख्यतः इसकी खेती होती है ऑयस्टर मशरूम की होती है और इसका भागलपुर में इसका लोकल में बाज़ार उपलब्ध है। जो भी किसान करते हैं उनको यदि पहले सीजन में जो किसान करते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग की समस्या होती है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे लोग जान जाते हैं उनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आती है। प्लस दूसरा कि इसका उत्पाद बना के रख के ऑफ सीजन में इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं और इसकी भी तकनीक काफ़ी आसान है। इसके लिए गेहूँ का भूसा या पुआल की कुट्टी को हम लोग मौसम में भंडारित कर लेते हैं, जिस मौसम में उपलब्ध हो सस्ते में, उसके बाद इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकृत करने की अलग अलग प्रक्रिया है, भाप द्वारा, ताप या फिर रसायन द्वारा निर्जीवीकृत करके इसके नमी की जांच करते हैं। पर्याप्त मात्रा में नमी होने के बाद इसमें हम लोग मशरूम का बीज या स्पॉन्ज से बिजाई करते हैं और इसको पीपी बैग में, पन्नी में उसको पैक करके किसी कमरे में, झोपड़ी में, निर्जीवीकृत झोपड़ी में इसको रख देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माइसेलियम पूरी तरह से रन हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर पहला फसल निकलता है और फिर पहला फसल तोड़ने के बाद हम उसमें लगातार नमी देते रहते हैं। फिर दूसरा फसल आता है, दूसरी फसल तोड़ने के बाद भी हम लगातार नमी देते हैं, फिर तीसरी फसल भी आती है। उसके बाद 3 फसल लेने के बाद भी उसमें फसल आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 3 फसल के बाद उसे या तो पशुओं को खिला देना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट पीट में उपयोग कर लेना चाहिए या जमीन के अंदर डाल दें कि वो कंपोस्ट में बदल जाए।
2: जी,
1: और इसकी तकनीक काफ़ी आसान होती है। इसकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने सबौर में है, भागलपुर में स्थित है, वहाँ संपर्क करके आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कई प्रशिक्षित किसान भाई भी हैं जो कि केवीके से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गाँव में भी प्रशिक्षण देते हैं, तो उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके आप इसकी खेती कर सकते हैं।
2: अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो इस मौसम में ऑयस्टर मशरूम जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं मैम, तो इसकी विधि के बारे में जैसा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे इसके उत्पादन की विधि होगी और कैसे वो इसे लगा सकते हैं।
1: ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आप गेहूं का भूसा ले लें। यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो गेहूं का भूसा ही लें। गेहूं के भूसा को आप रात भर फुलो भिगो दें पानी में। सुबह में जैसे आप धान को उबालते हैं धान से चावल बनाने के लिए, इसी तरह से उसको किसी बर्तन में लेकर के उसको उबाल लें। जब पूरी तरह से भाप आने लगेगा तो उसको उस बर्तन को उतार के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी टोकरी में, साफ सुथरा टोकरी में पलट दें, उसका पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे किसी प्लास्टिक सीट पर, साफ सुथरा निर्जीवीकृत प्लास्टिक सीट पर उसे फैला दें छांव में जहां हवा लगता रहे। फिर जब उसमें नमी लगभग 70-75% नमी बचे तब उसमें आप 10 kg जैसे आपका भूसा है तो 1 kg मशरूम का स्पॉन्ज चाहिए, स्पॉन्ज को उसमें मिला दें और पीपी बैग ले लें। पीपी बैग में आप मशरूम और स्पॉन्ज को पैक कर दें, फिर उसमें रबर को बंद करके लगभग 15-20 छेद कर दें, 2-3 छेद ऊपर, 2-3 छेद पेंदा और बाकी 10-12 छेद बीच में आप कर दें। उसके बाद किसी कमरे में या तो मचान बना दें या फिर शीका बना दें या फिर ज़मीन पर आधा टुकड़ी ईटा को रख के उसको रख दें, कमरे को फिर बंद कर दें और लगभग आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे उसमें पूरा माइसेलियम रन कर गया है। तब फिर आप उसमें उसका देखेंगे कि पिन हेड निकलता है, पिन हेड निकलने के बाद 3 दिन के अंदर वो मशरूम का रूप ले लेता है। फिर आप उसको तोड़ लें और फिर नमी देते रहेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फसल ले सकते हैं। आपसे हमने बात किया बटन और ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा बिहार में मैंने बताया था 4 प्रजाति का मशरूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम है और आपका मिल्की या दुधिया मशरूम है और है पेडिस्ट्रा मशरूम। मिल्की या दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं आपका अप्रैल मई में उसकी खेती करते हैं और जो इसकी खेती के लिए भी आपको ऑयस्टर और बटन दोनों के बीच का तरीका अपनाते हैं। दोनों कुछ भाग ये ऑयस्टर का लेता है, कुछ भाग मिल्की का, ये बटन का लेता है। इसके अलावा चाइनीज या पॉल मशरूम है, उसका भी खेती हम लोग मई जून में करते हैं।
2: तो ये तो आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की विधि क्या हो सकती है और इसके अलावा भी मैम ने बताया आपको कि उपयोगिता इसकी क्या है, औषधीय गुण क्या है, मशरूम के पौष्टिक गुण क्या है। और मैम अंत में ये हम जानना चाहेंगे कि मशरूम से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि हम उत्पादन तो कर लिए लेकिन अब बारी आती है व्यंजन बनाने की, तो कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं।
1: मशरूम के लिए व्यंजन बनाने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों बहनों को कि बहुत लोग मशरूम खरीद के ले जाते हैं फिर कहते हैं कि उनको बनाने का प्रक्रिया सही ढंग से नहीं आता, कहते हैं कि बहुत बेकार लगा। एक्चुअली ये मशरूम में एक प्रकार का गंध होता है, यदि आप प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वह गंध रह जाएगा तो वो खाने में आपको फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि जब मशरूम तोड़ के आप हार्वेस्ट करके ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं तो उसे गुनगुना पानी कर लें, गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए मशरूम को डूबो के छोड़ दें, फिर उसे जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले का रस निचोड़ते हैं उसी तरह से उसको निचोड़ करके उस पानी को फेंक दें। फिर आप उसको धो करके मनचाहा तेल मसाला देकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप जैसे आप मटन बनाते हैं उस तरह से तेल मसाला देकर मटन जैसा इसकी सब्जी बना सकते हैं, आप इसका भुजिया बना सकते हैं, आप इसका खीर बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका भरवा पराठा बना सकते हैं, इसका आप मशरूम कचौड़ी बना सकते हैं, मशरूम का आप कोफ्ता बना सकते हैं और मशरूम का अचार बना सकते हैं, मशरूम का बड़ी बना सकते हैं, मशरूम का खोता बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। तो इसलिए मशरूम का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है, आप जो सोच सकते हैं, बस यही एक लाइन में आप समझें, मशरूम का जो आप सोच सकते हैं, जो भी डिश सोच सकते हैं वो सारा डिश आप मशरूम का बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप मशरूम मंचूरियन की ही बात करें, जैसे मंचूरियन आप बनाते हैं तो मंचूरियन में जो आपका इन्ग्रीडियंट है वो सारा एसेसरी इन्ग्रीडियंट, मतलब जो उसको मशरूम मंचूरियन बनाने में सहायक सामग्री, वो सारा सामग्री सेम रहेगा, मुख्य इंग्रेडिएंट की जगह पे आप मशरूम को ले लें तो आप मशरूम मंचूरियन बना सकती हैं। जैसे मशरूम पकौड़े की बात करें, फूलगोभी के पकौड़ा आप जैसे बनाती हैं वैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना सकती हैं। तो फूलगोभी की के जगह पे आपको मशरूम लेना है, बाकी जो बेसन मसाला लेना था वो वैसा ही लेना है। तो मशरूम का आप जो सोच सकती हैं हर डिश मशरूम का बन सकता है, लेकिन हर ये ध्यान रखें कि उसको हम लोग थोड़ा पानी के साथ प्रोसेसिंग करके उस पानी को फेंक देंगे ताकि उसका जो एक गंध है वो गंध दूर हो जाएगा।
2: तो यहाँ पर हमने जाना कि मशरूम के कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं, और साथ ही आज का हमारा विषय भी था कि कुपोषण निवारण में मशरूम की क्या उपयोगिता है। तो मैम ने बखूबी बताया आपको कि इसके गुण क्या हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पौष्टिक गुण हमें मिलते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या क्या इसमें विटामिन्स मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, जो वसा फैट और इसके अलावा प्रोटीन सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं मैम ने बताया जैसे कि ये पूरक एक सब्जी है, पूरक आहार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर मशरूम मिल जाएगा तो सोचिए कि बच्चों के इस शारीरिक विकास के लिए कितना फ़ायदा होगा ये। तो इसीलिए अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत अब बच्चों को मशरूम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरक आहार में शामिल हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसकी उपयोगिता के बारे में बताई है, ख़ासतौर पर कुपोषण निवारण के लिए। तो आगे भी आप सभी से मुलाकातें होंगी, हम एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें 90

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार
11: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम समुदाय की बात BAU के साथ में। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक किराना दुकान चलाते हैं। और जब हम किराना दुकान की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर समाज के हर तबके के लोग आते हैं और वहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं। एक किराना दुकान में जब कोई बैठता है तो वहाँ पर कई बार ऐसे 4-5 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और अलग अलग बातों के बारे में वो चर्चा करते हैं, देश विदेश के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके समाज में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या उनकी परंपरा है उसके बारे में भी बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि किराना दुकान जो होता है वहाँ पर हर बात होती है, हर तरह की बात होती है और आप कह लीजिए कि हमारे जो समाज की होती है वो एक तरह से आत्मा है। हर किसी के घर पे राशन तो पहुंचता ही है, साथ ही हर किसी के घर की गपशप और हर किसी के घर की परेशानी भी वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही विस्तारित तरीके से वहाँ पर चर्चा की जाती है। ऐसे ही किराना दुकान एक संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत कुमार। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जितना भी इनसे बन पड़ता है ये अपने आसपास के लोगों की मदद भी करते हैं और अगर इनके पास कोई जानकारी होती है, किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी है या फिर कुछ बदलाव हुए हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, ये बातें भी लोगों तक पहुँचाते हैं। और इनके पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म कह दीजिए है कि किराना दुकान है। इनके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की परेशानी बताते होंगे और इनसे जहां तक हो सके उनकी परेशानी का समाधान करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रंजीत कुमार का। रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: नमस्कार मैम।
11: तो रंजीत जी आप बताइए कि किराना दुकान आप कब से चला रहे हैं?
12: ये पारिवारिक है, बहुत पुराना है, करीब 10-20 साल हो गया।
11: 10-20 साल हो गया। तो जब किराना दुकान में आप बैठते हैं तो बहुत तरह तरह के लोग आते होंगे, बहुत तरह तरह की परेशानी बताते होंगे।
12: जी जी।
11: तो रंजीत जी आपके किराना दुकान में तरह तरह के लोग आते होंगे, उनके तरह तरह की परेशानियां वो आपको बताते होंगे।
12: जी जरूर बताते हैं।
11: तो जब आप उनकी परेशानी सुनते हैं तो आप अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनकी मदद हो सके?
12: जी जरूर करते हैं।
11: तो किस तरह की मदद आप करते हैं?
12: पहले तो आर्थिक रूप से जरूर मदद कर देते हैं और क्या कहता है, न्यूज के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है, पेपर के द्वारा होती है, फेसबुक के द्वारा होती है, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिस तरह से भी होता है। अब ऐसा नहीं कि बोल उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, वेरीफाई करके मतलब जो सही जानकारी होती है वही सिर्फ देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा।
11: तो मतलब आप जानकारी पहुंचाते हैं लोगों तक और सही?
12: जी।
11: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जानकारी, न केवल जानकारी पहुंचाते बल्कि उसको वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं।
12: जी।
11: जो सही बात है वही लोगों तक पहुंचे, ये बहुत ही अच्छी बात है। जानकारी पहुंचानी दूसरी बात होती है और सही जानकारी पहुंचानी सबसे ज़रूरी है। तो आप सामाजिक कार्य करते हैं तो मतलब कब आपने ऐसा काम करना शुरू किया और लोगों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, तो ये कब से आपने शुरू किया?
12: ये मैम करीब 2004 या 2005 से ये रेगुलर चल रहा है।
11: पहली बार आपने किसी की किस तरह की मदद की थी और क्यों की थी?
12: पहली बार मैम ये क्या कहता है, एक आदमी बीमार पड़ा था तो उनको हमने मायागंज ले गए थे, वहाँ डॉक्टर से जितना देर भी टाइम लगा सब चीज़ वो प्रोवाइड करवाएं, इलाज करवाएं, फिर वापस आ गए। फिर इस टाइप से मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये फैमिली को सिर्फ देखते हैं, समाज में जो भी आता है सारे को देख करते हैं, कोशिश करते हैं।
11: तो जिनकी आप पहली बार आपने मदद की थी वो क्या बुजुर्ग आदमी थे?
12: जी मैम।
11: कई बार हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आसपास बच्चे नहीं हैं।
12: जी जी।
11: परेशान हो जाते हैं वो।
12: जी।
11: तो ऐसे और भी आसपास अभी मतलब अभी भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं?
12: जी।
11: जिस तरह की भी मदद हो।
12: जी।
11: जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पहली बार किसी बुजुर्ग को आप हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो इसके साथ आप और आर्थिक सहायता भी करते हैं, तो आपने कभी किसी की आर्थिक सहायता की हो तो किस तरह की वो आर्थिक सहायता थी?
12: आर्थिक सहायता में यूँ क्या कहता है, उनको दवाई जब दिला रहे थे तो उनके पास पेमेंट का इशू था, तो हमने पेमेंट इशू क्लियर कर दिया। और वो ये नहीं पूछे कि वो कब देंगे, ये जब दिए तो दिक्कत।
11: बस आपने यही सोचा कि दवाई के लिए पैसे दे रहे हैं तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है। तो और जब आप आर्थिक सहायता करते हैं रंजीत जी, तो क्या आप को कभी ऐसा लगता होगा कि जितनी उन्हें ज़रूरत है सामने वाले को, उतनी जो रकम है हमारे पास नहीं है, तो फिर आप किसी और की भी मदद लेते हैं, या फिर आपसे जितना बन पड़ता है वही आप करते हैं?
12: कोशिश करते हैं मैम कि दूसरे से भी हेल्प लें, लेकिन सब आदमी नहीं समझता है, तो जहाँ तक मेरा अपना होता है उतना ही करके छोड़ देते हैं मैम। और उनको रास्ता बतला देते हैं कि इस रास्ते से आप जाइए तो अगला आप और ज़्यादा आपका सहायता हो जाएगा मैम।
11: तो आपके किराने दुकान पे कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जिन्हें कोई राशन नहीं लेना या कोई और चीज नहीं खरीदनी?
12: जी जी जी,
11: वो केवल पूछने आते होंगे कि भैया कोई परेशानी है तो उसके बारे में बता दीजिए, योजना के बारे में जानने आते होंगे। तो कई सारे कार्ड बनते रहते हैं, कई सारे और भी चीजें होती है, तो उसमें भी आप लोगों को मदद करते हैं?
12: ये आयुष्मान योजना जो निकला था उसमें भी बहुत सारे आदमियों को बताते रहते थे हमेशा। और ये स्वच्छ भारत अभियान का जो टॉयलेट वाला सिस्टम निकला था तो उसमें भी बहुत सारे को बतलाए थे, बहुत सारे को बतलाते रहते थे, अभी भी बतलाते थे। अभी भी छूटा हुआ है कि बहुत जगह अभी भी टॉयलेट नहीं बना है, तो उस बारे में भी बतलाते हैं कि इस रास्ता जाइए आपका टॉयलेट बन जाएगा, करते रहते हैं।
11: तो रंजीत जी, आप लोगों को टीका के बारे में भी जागरूक करते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग टीका से डरते हैं।
12: जी जी जी मैम।
11: तो जब आप उन्हें टीका के बारे में बताते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें बताते हैं?
12: बतलाते कि नहीं, ये सरकार का जो टीका है ये वेरीफाई किया हुआ है, सब चीज सही है, आपको अपंग जो होता है वो नहीं होगा, बौंझपन नहीं होगा, इसी तरह से समाज में फैला हुआ ये सुई लेने से मतलब हो जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं नहीं ये कुछ नहीं होगा, हम भी लिए हैं और वो बहुत कुछ दिलाए में कहीं कोई तरह का शिकायत नहीं आई है अभी तक।
11: तो रंजीत जी, आपके जब किराना दुकान के इन सब के बारे में बातें तो होती हैं, लोग अपनी परेशानी लेकर भी आते होंगे, लोग अपने घर की परेशानी घर की बात भी लेकर आते होंगे, और कई बार जैसे अभी त्यौहार आने वाला है तो त्यौहारों के बारे में भी बात करते हैं, तो क्या आप कभी उन्हें कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं? जैसे अभी विश्वहरी पूजा आने वाली है, तो क्या इसके बारे में भी आप उन्हें बताते हैं?
12: हाँ हाँ जरूर बताते हैं।
11: तो क्या कहानी जो है विश्वहरी पूजा के पीछे की, वो कहानी आप हमें हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
12: जरूर मैम, जरूर सुनाना चाहेंगे, क्यों? और अगर हम कहीं बाहर किसी राज्य में जाते हैं, खासकर बंगाल तो जरूर जाते हैं, तो वहाँ इस सब का जो कहानी है ये बेला बसरी वाला, तो उसको और वहाँ चाव से सुनते हैं। वहाँ बंगाल में उतना नहीं है इसकी जानकारी, तो जब हम लोग जाते हैं यहाँ का गाना वीडियो जो भी चीज़ होता है तो ये सब उन लोग को बतलाते हैं, तो और वो लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, कभी कभी आते भी हैं वो लोग देखने के लिए यहाँ।
11: आप हमारे श्रोताओं को कहानी सुनाइए रंजीत जी।
12: जरूर मैम, जरूर सुनाइए। ये कहानी है बिहला और बिसरी के लिए, अभी जो अभी जल्दी इधर आने वाले हैं। ये कहानी है ऐसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये नाथ नगर चंपा नगर से शुरुआत होती है। इस कहानी में एक चांद सौदागर रहते थे, चांद सौदागर था, वो शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी के जो परम भक्त थे, तो शिव जी की पुत्री कथित पुत्री है, क्या कहते हैं मनसा देवी, वो एक बार चांद सौदागर से मिली और बोली कि आप जब मेरे पिताजी की या मेरे देव के पूजा करते हैं तो आप मेरी भी पूजा कीजिए, मैं भी तो उस लायक हूँ ना। तो लेकिन चांद सौदागर बोले कि नहीं नहीं देवी, मैं सिर्फ आप भगवान शिव के ही पूजा करूँगा, आपकी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हृदय को स्वीकार नहीं होगा। तो बेला मनसा देवी क्रोधित हो गई उस पर, तो क्रोधित हो गई तो का को डराया गया, धमकाया गया कि आप अगर पूजा नहीं कीजिएगा तो मैं आपके सारे पुत्रों को मार दूंगी, आपका जहाज डुबा दूंगी, आपका बिजनेस बर्बाद कर दूंगी, हमने आपको किसी तरह से जीने लायक नहीं रहने दूंगी, सारे नुकसान पहुंचाऊंगी। फिर भी चांस वगैरह अगर बोले कि नहीं देवी आप कुछ भी कीजिए मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, ये अटल मतलब ये निर्णय लिया हुआ है फाइनल, तो फिर भी उनको उनका जहाज जो था वो डुबा दिए, बिजनेस खराब कर दिए, छह पुत्र जो थे सबको मार दिए, फिर भी वो नहीं माने। तो फिर जब छह पुत्र सारे को मार दिए तो भगवान शिव का पूजा करते करते चांद सौदागर के घर में फिर एक दो वर्ष के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम लखिंदर था। तो जब लखिंदर बड़े हुए वो भी उसी टाइप से भी सब चीज़ करने लगे। लखिंदर जब बड़े हुए तो उनका भी साथ ये चांद सौदागर शादी करवा दिए देवी बिहला से, देवी बिहला से शादी करवा दिए। तो देवी बिहला को ज्योतिष जी ने बतलाया कि आपका ये जो शादी हो रहा है तो ये क्या कहते हैं आपके ज़्यादा शादी नहीं ज़्यादा दिन टिकने वाली है, क्योंकि आपका आपके पति को मृत्यु अकाल मृत्यु आने वाली है आज ही रात में। फिर भी वो नहीं माने कि नहीं ये मेरे रहते नहीं ऐसा हो सकता है। तो उसके पहले ये हुआ था कि चांद सौदागर एक महल बनवाए थे, तो वो लोहे का महल बनाया गया था, एकदम बारीक एक भी छिद्र नहीं हुआ, उनका जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन जो बनाने वाले वो थे विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जी, उनको देवी क्या नाम है बिला नहीं मनसा देवी सॉरी मनसा देवी को बोला गया कि आप जो है मेरे कहने पे एक छोटा सा क्षेत्र दीजिए जो कि पता नहीं चले, चेक भी हो जांच भी हो फिर भी पता नहीं चले कि ये छिद्र है। तो सब चीज चेक हुआ, सब चीज़ सही हो गया, उसी महल में दोनों को रखा गया था, लखिंदर को और देवी बिहला को। तो जब प्रथम रात्रि थी तो उसी दिन रात में मतलब तो वो देवी मनसा देवी जी एक सांप को भेजा गया एकदम महीन छिद्र में, एकदम चीटी की मतलब हवा टाइप का एकदम, तो वो उसमें गया और जब गया तो देवी बिहला जो है जब पता चल गया कि इस मेरे में आ गया है, मेरे महल में आ गया है, तो देवी महल में आ गया तो उनको बोला कि आप मेरे पति को नहीं मार गए, आपको जो बोलिएगा हम करेंगे। रात भर उनका सांप का सेवा हुआ, दूध लावा जो भी चीज़ होता है खाने पीने का सब चीज़ रात भर दिया गया। लेकिन एक दोपहर एक टाइम आया 2 से 3 बजे के रात में, दोपहर लास्ट पहरे में, तो उनका नींद आ गया, उनको तो नींद आ गया, बस वो उसको डस लिया तो लखिंदर को डस लिया गया। तो सुबह राजकुमार था राजा था, तो सुबह कोहराम मचने लगा पूरा राज्य में, हाहाकार मच गया, मेरे राज्य का क्या होगा, सब मतलब परेशान हो गया, सब कहा कि इसको तो जलाया नहीं जा सकता है तो अब इसको क्या किया जाएगा। तब देवी बिहला बोली कि नहीं मैं अपने पति को जीवित करके दिखाऊंगा, चाहे इसके मुझे संसार में कहीं भी जाना पड़े। तो एक केले का थम होता है तो उसको मंजूसा बोला जाता है, उस पर वो नाव टाइप का बना दिए और उसी पे चल नदी के द्वारा चलते गए 2-3 साल 4 साल 5 साल, इस टाइप से जाते यात्रा करते करते बहुत दूर पहुँचे। बीच में बहुत सारा तूफान आया, आंधी आया, बहुत कोई डराया कि नहीं आप नहीं जा पाइएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी परेशानी हुई, लेकिन देवी बिहला जो है नहीं डरी। तो वो यात्रा करते करते देवों का जो घाट होता है वहाँ धोबीन घाट कहा जाता है, तो उस घाट पे वो पहुँची। तो धोबीन घाट पे जो वहाँ का जो कपड़ा धोने वाली थी देवलोक का धोबिन गार्ड ने जो कपड़ा धोने वाले थे तो या ना याद नहीं आ रहा अभी तो उनको बोलेगी देवी बोला बोले कि देवी आप मैं इतने पृथ्वी लोक से आई हूँ मैं इतना कष्ट की हूँ आप प्लीज़ मुझे देवों मैं भगवान शिव से एक बार मुझे मिला दीजिए और देवी मनसा से भी मिला दीजिए ताकि मैं अपने पति को जीवित कर सकूँ। बहुत प्रार्थना की बहुत प्रयास किए तब उनको दया आ गया धोबिन जो थी तो उनको दया आ गई कि हाँ मिला देते हैं जो होगा देखा जाएगा मिला दिए। तब उनसे रिक्वेस्ट की देवी भी भगवान शंकर से भी बोले तो बोला कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती ये जो किया है वो मेरी पुत्री है उनसे ही बात कीजिए वही कर सकती है इसके बारे में कुछ भी। तो देवी मनसा को बोले तो बोले मनसा बोले ठीक है मैं आपके सब चीज़ वापस कर दूंगा आपके पुछे पुत्र को जो मरा है उनको वापस कर दूंगा कच्चे जहाज डूबा उनको वापस कर दूंगा आपका व्यापार बिजनेस तबाह हो गया उनको ठीक कर दूंगा लेकिन आपको मेरी पूजा करनी होगी ये शर्त तो आपको मानना ही होगा। तो जो राजा थे चांद सौदागर तो वो बोले कि भगवान शिव का मैं पूजा करता हूँ आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ। तब देवी मनसा बोली कि ठीक है आप में उनका भी पूजा कीजिए लेकिन एक हाथ से उनका पूजा कीजिए एक हाथ से मेरा भी पूजा कीजिए नहीं मेरा बाएं हाथ से आपको कर कीजिए और उनका जो जैसे करते हैं आप दाएँ हाथ से वो कर सकते हैं। तो कहा ठीक है दे आप मान लीजिए भगवान शिव उनको बोले तो मान लीजिए ठीक है तो कहा ठीक है से हम पूजा कर देंगे। तो उनको जैसे ये बोले तैसे उसी समय से उनका सब चीज़ सही हो गया छह पुत्र जिंदा हो गया सातों पुत्र जिंदा हो गया व्यापार बिजनेस सही हो गया जहाज फिर वापस अपने जगह पर आ गया सब सारे जो चीज़ समाप्त हुआ था सब चीज़ वापस आ गया। तब से लेकर आज तक वो देवी बिलाबुसरी का जो पूजा होता है वो हमारे समाज में ये चल रहा है परंपरा के रूप में चल रहा है आज भी चल रहा है। इसका उद्भव स्थल चंपानगर नाथनगर ऐसे तो पूरा देश में भी मनाया जाता है लेकिन यहाँ का एक विशेष महत्व है
13: चंपानगर में जो उनका स्थान है वहाँ पे एक महीने पहले से ही तैयार
12: जी जी जी जी
13: और जो विवाह वाली रात्रि होती है पूरी परंपरा पूरी रीति रिवाज के साथ
12: जी जी बहुत होती है
13: शादी भी कराई जाती है और उसके बाद जो चीजें होती है मतलब जिस तरीके से बेटी को विदा किया जाता है दूल्हा की वैसे ही पूरी शादी होती
12: जी। और उन्हीं की याद में जो मंजूषा पेंटिंग जो हम लोग हमारे समाज में दिख रहा है या सारे जगह दिख रहा है सरकारी संस्थानों में या जहाँ भी दिख रहा है उन्हीं के एक उन्हीं से वहाँ प्रेरणा लेके चल रहा है।
13: तो रंजीत जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से बिहुला बिशरी की जो कहानी आपने बताई और साथ ही आप जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं आप करते रहिए और हमारे समाज में ऐसे अगर कुछ और भी लोग हो जाए तो बहुत हमारा समाज बेहतर बन सकता है। तो रंजीत जी आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
12: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको जिस भी रूप में सामाजिक स्तर पे मदद करने का अवसर मिले वो नहीं चुकी कि मेरा क्या भला हो रहा है आपका भला बाद में होगा पहले आप दूसरे का भला कीजिए और ये भी नहीं देखिए उसके बदला में मुझे क्या मिलेगा। अगर आपके पास समय है और आर्थिक रूप से है करने का है तो ज़रूर कीजिए। अब पैसा नहीं है आर्थिक रूप से कम समय जरूर दीजिए समय भी नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लिए उसको बतला दीजिए ये प्रोसेस कीजिए ये रास्ता पे जाइए आपको ये हो जाएगा इनसे मिलिए ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कीजिए कि उनका वो कुछ नहीं कर सकता था हम मतलब वो नहीं कुछ बोला तो हम नहीं बोलेंगे करेंगे नहीं आपका ये भलाई का है ये बाद में आपका इसको फल मिलेगा तुरंत नहीं मिलता है। आदमी आज के ज़माने में कि तुरंत क्विक चाहता है नहीं हर चीज़ का थोड़ा सा समय लेना चाहिए ये चीज़ मेरा मानना है।
13: बिल्कुल रंजीत जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि आप अपनी भलाई को बाद में सोचिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा वो बाद में सोचिए सामने अगर कोई ऐसे परेशानी में व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी पहले मदद कीजिए और उसका अगर जो फल मिलना होगा वो मिल ही जाएगा कह के गए हमारे कृष्ण जी गीता में गए उन्होंने कहा है कि पहले कर्म कीजिए फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
12: जी जी मैम जी
13: और अगर आपकी एक किसी की मदद करने से किसी एक का भी अगर भला हो जाता है तो समझिए आपने बहुत अच्छा काम किया है।
12: और एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, आप जिस दिन मदद कीजिएगा जिस भी रूप में, चाहे एक सेकंड ही समय क्यों नहीं दे, तो आप घर आइएगा, खाना खाइएगा, आराम कीजिएगा ना, तो आपको उस दिन लगेगा कि हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिए हैं। आपके पास एक बहुत पैसा है लेकिन अगर क्या कहता है शांति नहीं है मन में, तो वो खुशी नींद नहीं आएगी। ये चीज
13: किसी की मदद करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ आए, आपने जो बातें हमें, जो कहानी आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप काम करते रहिए। उम्मीद है कि आपकी कहानी से जो आप कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, उसे हमारे श्रोताओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने स्तर पर अपने आसपास के लोगों की जिस तरह से हो सके मदद कर सके।
12: धन्यवाद,
13: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। इसी कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए।

पुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: लोगों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है पदार्थ है उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती है और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है, और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5,000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही। इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब तो बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और फिलहाल आज जो विषय लेकर आए हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बाढ़ की स्थिति की बात करें तो इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन हम एक आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने आप के बचाव के लिए ऊँचे स्थान पर जाते हैं, अपने खान पान का पहले से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं, लेकिन जो पशु हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो तो पशुपालक भाइयों पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में पशुपालक भाई बाढ़ की स्थिति में अपने पशुओं के आहार का, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे, इन सारी जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले।
11: धन्यवाद
6: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जैसा कि हमारा विषय है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में पशुओं की रख रखाव, तो ऐसे स्थिति में पशुपालक भाई क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पशुओं के लिए उनके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
11: जी, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के में जल जमा के जल नदियों के पानी में जब काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है। तो जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है, वहां के पशुपालक अपने पशुओं पशुपालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अचानक बाढ़ आ जाती है, वहां पशुओं को के रख रखाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य तो छत पर जाके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा, कई ऐसे स्थान हैं जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में चिन्हित स्थान होते हैं, जहां से पूर्व से ही वो स्थान निर्धारित है जहां आप अपने पशुओं को बाढ़ के अचानक स्थिति में अगर पानी आ गया तो वहाँ से आप अपने पशुओं को निकाल कर ले जा सकते हैं और वहाँ रख सकते हैं। वहाँ वैसे जगहों पर उनके पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रति व्यस्क पशु 3 से 5 किलो सूखा चारा और सूखा भूसा और कुछ दाना की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वैसे जगहों पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, तो वहां के पशुपालक अपने पशुओं के चारे के लिए ऊंचे स्थान पर चारा पहले से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वैसे स्थानों पर जहां अचानक बाढ़ आती है तो पूरी तरह से चारा भींग जाता है, भूसा भींग जाता है, हरा चारा डूब जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पशुपालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके पशुओं के चारे बंधन में। तो वैसे जगहों पर आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या जो ऊंची सड़कें हैं, वहां अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लेकर जाते हैं या ऊंची स्थान पर लेकर जाते हैं, लेकिन पशु को ले तो जाते हैं लेकिन उनके सारा जो चारा है वो डूब जाता है। और भींगा हुआ चारा आप अगर अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप पहले से इसका निर्धारण करें, अगर बाढ़ आती है तो सूखे स्थान पर चारा का व्यवस्था करके रखें, अन्यथा ऊंचे स्थान पर जो सरकार के द्वारा चिन्हित है, पशुपालन विभाग के द्वारा, राज्य जिला प्रशासन के द्वारा, वैसे जगहों पर पूर्व से ही बाढ़ के समय जब आने की संभावना हो पूर्व से ही अपने पशुओं को ले जाकर रखें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लें।
6: जी, तो ये बात हो गई कि कैसे रख रखाव करना है। अब देखा जाता है डॉक्टर साहब कि जब बाढ़ आता है तो चारे का काफ़ी अभाव हो जाता है, जो कि मुख्य यूँ कहें कि आहार है हमारे पशुओं का। तो ऐसे में पशुपालक भाई कैसे खाने का प्रबंधन करें?
11: जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब चारा एकाएक बाढ़ आने के बाद जब चारा पूरी तरह से घर से नहीं निकाल पाते हैं लोग, भूसा अपना या पुआल, तो वैसी स्थिति में जो वैकल्पिक चारा का स्रोत है, पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, या जो मकई का या सूखा डंठल है, या जो अन्य अवशेष है, फसल अवशेष हैं, अगर उसकी उपलब्धता होती है तो ठीक है, अन्यथा पेड़ की टहनियां, पेड़ के पत्ते को खिलाकर आप अपने पशुओं को वैकल्पिक रूप से खिलाकर जिंदा रख सकते हैं। लेकिन उनकी पोषक तत्वों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हरेक कॉम्फेड के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से या पशु चिकित्सा विद्यालयों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से हरेक जगह पर फीड ब्लॉक के संधारण की व्यवस्था की गई है, और खास करके अभी कंप्लीट फीड ब्लॉक जो एक ईंटे के शक्ल में कंप्रेस करके चारा को बनाकर जिसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, और जब बाढ़ की अवस्था होती है या जब चारे का अभाव होता है तो वैसे जगहों के पशुओं के लिए इस फीड ब्लॉक को आसानी से हम पहुंचा सकते हैं और वहां पर फीड ब्लॉक खिलाकर अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
6: जी, अब बात करते हैं जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो कई जगहों पर जो है गंदगी जमा हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी कई बीमारियां होने की जो खतरा है वो बना रहता है। तो ऐसे में इसका जो बचाव है वो कैसे करेंगे पशुपालक भाई?
11: जी, जल जमाव के बाद जब जब पानी जब उतरता है तो उसके बाद एक कई जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़ के बावजूद भी नई घास का बहुत तेजी से वहाँ पर पनपती है, और खास करके वैसे जगहों पर जहाँ बाढ़ का पानी जमता है या उन जगहों पर जहाँ पानी उतरता है, वहाँ के पशुपालक अगर अपने पशुओं को नया चारा जो निकला उसको अगर खिलाते हैं तो पशुओं में छेरा नामक बीमारी जो लीवर फ्लूक के चलते होता है, जिसमें कि काफ़ी पतला दस्त होता है और उसके जबड़ा के नीचे सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हर जगह नमी की अधिकता रहती है, ऐसे समय में कई प्रकार की परजीवी जनित रोग या जो ब्लड प्रोटोजोआ है उनके द्वारा होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, जैसे बेबीसिया, थैलेरिया और ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा नामक बीमारी का भी काफ़ी प्रकोप होता है। खास करके जल जमाव अधिक होने के चलते मच्छर, मक्खी और जो चमोकन की भी अधिकता होती है उसके चलते भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इन जैसे आपने अभी हमने बताया कि वहाँ पर ब्लड पैरासाइट या ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं उससे बचाव के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में अगर आपके पशुओं में रेड वाटर या किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उसके हिसाब से चिकित्सा करवा सकते हैं। लेकिन खास करके छेरा से बचने के लिए आप अपने पशुओं के बाढ़ग्रस्त इलाके में खास करके ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल ग्रुप की दवा का प्रकोप करें जो कृमिनाशक है और आपके पशुओं में छेरा से बचाव में काम आ सकता है। खास ही जब जल की निकासी हो जाए और नया घास आए तो वैसे जगहों पर अगर आप देखें घोंघे की अधिकता है तो घोंघा एक प्रकार से वेक्टर का काम करता है, तो उनको जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक का सॉल्यूशन से घोल बनाकर देकर घोंघे को नष्ट करें। अगर घोंघे नष्ट हो जाएंगे तो ये जो छेरा नामक रोग है इसके जो वेक्टर में बीच में ब्रेक होगा और ये जो छेरा बीमारी है इससे आप बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने पशुओं को जो पेरिनियल जो प्रत्येक वर्ष टीका लगाया जाता है पशुपालन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसका भी आप ले सकते हैं। HSBQ का टीका पड़ता है, फुट एंड माउथ डिजीज का टीका पड़ता है, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका पड़ता है, बकरियों में PPR का टीका पड़ता है। इन बीमारियों का टीका जो है खास करके मई जून के महीने में HSBQ का टीका, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी में जब FMD का टीका पड़ता है, तो रोग से बचाव के से टीका से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अर्थात रोग होने से अच्छा है कि रोग से बचाव हम कर लें टीका के माध्यम से। तो अपने पशुओं को टीका लगवाएं, समय समय पर कृमिनाशक दवा का प्रयोग करें, और अगर बाढ़ ग्रस्त इलाके में आपके का चारा डूब गया है और उसके बाद जल्द ही पानी निकला है तो अगर आप उस चारे का प्रयोग करें भी तो उसको पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा जो एफ्लाटॉक्सिको टॉक्सिन या इस प्रकार के कई फंगस लग जाते हैं जिससे भी कि पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही करेंगे।
6: जी जी, तो इस अच्छी सी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से बातें होंगी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजेश कुमार सर से, और बहुत ही उपयोगी वो विषय होगा। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और नमस्कार। उन्नत कृषि।
12: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
13: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
12: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
15: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
14: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाना।
1: करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
0: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
15: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
16: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
17: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
16: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
17: आपकी सेहत की बातें,
16: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
17: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
16: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
17: वो कहाँ पर?
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
17: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: उन्नत कृषि,
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
18: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
16: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
18: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं, और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
16: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
18: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है, तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं, वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
16: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी, उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
18: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं, तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
6: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
18: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भुट्टे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भुट्टा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
6: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
18: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
6: और बुआई की विधि क्या?
18: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
6: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
18: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पे डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM 1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है, ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
6: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
18: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
6: सर, बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
18: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भूटे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
6: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
18: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
6: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
18: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
6: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
18: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेड़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है पौधा है उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इसे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
6: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
18: धन्यवाद, धन्यवाद।
6: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।
12: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
13: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
12: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब

शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना।
3: जी,
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी,
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी,
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात।
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी,
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
3: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी,
3: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
3: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
2: जी,
3: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
3: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
2: जी,
3: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
2: इसका संबंध खान पान से है।
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
3: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: अशोता, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
3: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958। स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था।
2: क्या बात,
3: क्या बात, पांवों में बिजली है।
2: वाह,
3: आओ भंगी माता की
2: पांवों में ऐसी प्रतिभा,
3: कितनी प्रभावशाली।
2: वाह, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, ये कभी नहीं देखा।
0: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
4: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
5: दादे, बेटा, दादे, दादे, दादे,
6: दा। प्रणाम पिताजी।
7: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
6: लेकिन क्या पिताजी?
7: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
6: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
7: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
6: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
7: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
6: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
7: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
6: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
8: पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
9: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
8: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
9: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा, पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अब अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो, अम्मा कह लगे मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दे दिया, ही नहीं दिया ही। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
8: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
9: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथेही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते, पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते, तो
10: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
8: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
1: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
0: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
11: पंडित बिरजू महाराज। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान। कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया। नाट्य आलेख अजीत होरो। संपादन जगबंधु जाना। निर्माण विमलेश चौधरी। विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
12: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
13: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
12: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
11: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
14: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
11: भगत सिंह।
15: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
16: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
15: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
17: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
18: कौन है?
19: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
18: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
19: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
18: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
19: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
18: ये इस शीशी में क्या है?
19: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
18: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
19: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
18: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
19: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
15: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
17: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
19: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
20: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
19: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
15: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
17: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
11: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
14: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
11: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
21: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
22: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
21: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
23: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
24: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
23: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
25: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
26: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे ज़रूर भेजिएगा। और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके तो वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी। तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर, आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: सर, आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियाँ या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माना में तो और भी ज़्यादा है।
0: तो सर, बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसी है?
1: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में, जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहां पे भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
0: सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती। हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
1: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5 लाख 8 लाख 6 लाख पहुँच गया है। तो अगर 5 लाख किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
0: सर, जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
1: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको एफपीओ भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छी अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
0: सर, आप लगातार एफपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, ये एफपीओ क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
1: हाँ, तो एफपीओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो एफपीओ जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल एफपीओ आ गए हैं। सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 एफपीओ खुल जाए और वो हो भी गया है। तो एफपीओ का कोई भी आदमी एफपीओ बना सकता है। एफपीओ एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है एफपीओ बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं एफपीओ, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी नाबार्ड जो है वो मदद भी करती है एफपीओ खोलने के लिए, क्योंकि एफपीओ एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन नाबार्ड उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका एफपीओ का जो मालिक होते हैं जिसको सीईओ बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि एफपीओ के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान। क्योंकि जानते होंगे आप कि एफपीओ के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का एफपीओ बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए एफपीओ का बहुत सारा संभावनाएं हैं और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
0: सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि एफपीओ के लोग होते हैं उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
1: हाँ एफपीओ के लोगों को नहीं, जो एफपीओ के सीईओ होते हैं, मतलब जो एफपीओ के मालिक होते हैं, सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस नाबार्ड की तरफ से कवर कर लिया जाता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी नाबार्ड ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई एफपीओ खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं एफपीओ खोलने का।
0: तो सर, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
1: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं। अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50 से लेके 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर वो शुरू करेंगे तो उनको लगे एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
0: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
1: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में, और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाए। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में। तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
0: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक एक एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें जरूर मुनाफा होगा।
0: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
1: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएँ होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप नई उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
0: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
1: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाज़ार पर निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जानते होंगे कितना, अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए, जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी, इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन, पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
0: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए और खास तौर से आप के घर पे अगर युवा हैं तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
1: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंगारू केयर डे के बारे में। अलग है, सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रहा है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत भी रखता है। और इस विषय को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हमारे शो में।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत में ही इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाले कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रही हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगा कर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और ख़त्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चे की देखभाल कितनी ज़रूरी है।
0: ये तो सच में बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की ज़रूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गाँवों और दूरदराज इलाकों में। और जहाँ उपलब्ध भी होती है, वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधा लगा कर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगा कर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: ओ, तो इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफ़ी है?
1: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफ़ी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगा कर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इसमें बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीके सच में इतने असरदार हैं?
1: बिल्कुल असरदार है। कई शोधे में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज़्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर मन भर आता है।
1: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: वाह, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चे घर लौट आते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
1: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदा क्या क्या हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन सामान्य से तेज़ी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उसके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहता है या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी शामिल होते हैं तो बच्चे को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती है। क्या कंगारू मदद केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूर बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चों पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
0: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए, क्या इसका कोई समय तय होता है?
1: कम से कम 1 घंटे तक तो लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ी झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए।
1: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे को बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं है बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज एक शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जाँच और टीकाकरण और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कहीं।
0: मैं आपकी दोस्त आरजे रुचि आपसे

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खास तौर पर उनकी जानकारी दें।
6: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40 रुपये 30 रुपये से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इससे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
5: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
6: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
5: अच्छा,
6: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत आप देखिए, ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है। तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैटो इसमें पॉइंटेड गार्ड में, परवल में भी देखिए 0.3% फैट, फैट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूज़र है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर, फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जी और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
5: जी।
6: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से, कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
5: परवल में,
6: हाँ परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
5: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्वों की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में। तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है, और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
6: परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीने में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए, और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे अब लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पर तैयार करिए, या 2x1 मीटर पर तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है, आप जो है वहाँ 1x1x1 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, और मिट्टी लेकर के आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूराडॉन डालिए, 2 ग्राम, एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए, और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए, और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहें तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए, इतना उसके साथ कोई मरोहत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
5: जी।
6: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी चीज़ से ढक दीजिए, और हल्का सा उस पर फवारे से इरिगेशन कर दीजिए, और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कल्ले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है, और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको, तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा, और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोट्स है उसमें 7-8 नोट आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए, और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए
5: जी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो है इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
6: देखिए परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियां तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियां हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्रॉप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है, तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले जाते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियां जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है, तो इस तरह की प्रजातियाँ हैं। नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है। तो ये सब प्रजातियां हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियां हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के, 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
5: जी।
6: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
5: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियाँ आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब, की किस प्रकार के खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
6: देखिए, अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट से देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
5: जी।
6: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो है 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है, और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है, फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं, तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं, तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
5: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं, और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
6: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है, और वह क्यों होती है किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है, वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
5: जी,
6: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खियां जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी का मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका, नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप जो है एक एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए, वो फिरामोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है, वो तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
5: अच्छा।
6: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता, वहीं वो मर जाता। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है।
5: जी।
6: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें, और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
5: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की

717 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा

0: जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ही चाव से खाते हैं, किसान भाई बहन बहुत ही चाव से उगाते हैं और उससे अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो अपनी फसलों को रोगों से बचा सके। अगर रोग लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है और आज हम परवल के प्रमुख रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो सब्जी है परवल। परवल के कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाटिल। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं रोग विज्ञान विभाग से BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे परवल में आने वाला रोग, इससे कैसे पहचानने और इसका कैसे प्रबंधन करना है। अभी हम परवल हम सोचते परवल ऐसे एक सब्जी है, इसमें रोग लगता ही नहीं। हम सोचते पहला इसमें रोग और कीट का प्रभावित नहीं होता था। आजकल जलवायु परिवर्तन से वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं परवल एक ऐसे हुए सब्जी है, इसमें भी रोग, बीमारी और कीड़ा लगने के लिए स्टार्ट शुरू हुआ है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से। ये रोग और कीट से क्या हो रहा है, इसका उत्पादन भी घट रहे और इसका गुणवत्ता भी प्रभावित भी हो सकता है।
0: जी सर, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले रोग देखने को के लिए कम मिलते थे, तो अगर अभी रोग दिख रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो परवल में लगते हैं?
3: परवल में होता है अभी तीन चार तरफ का होता है। पत्ता में दिखने वाला रोग होता है, मृदु जनित रोग होता है, और नंजन और विष वायरस का रोग होता है, और आजकल जंतु हम बोल देते हैं नेमेटोड का भी तरफ से ये फैलने वाला रोग भी हम लोग को दिख रहे हैं आजकल।
0: जी सर, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पत्तों में भी लगते हैं, फिर विषाणु जनित भी रोग होते हैं और भी कई तरह के रोग होते हैं। हम शुरुआत करते हैं परवल के पत्तों के रोग के बारे में, तो परवल के पत्तों में कौन कौन से रोग आते हैं?
3: परवल के पत्तों में दिखता है झुलस रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ को होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृद्रोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
0: जी सर, सबसे पहले आप हमें हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि झुलस रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है?
3: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल में झुलस रोग के बारे में। झुलस रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है, सारा पत्ता को हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल जब वो अनुकूल मौसम होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग के ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते है, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तभी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकते है। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे बोरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे, वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा जुलास रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते है, पत्ता पूरा सूख जाता है। इसी वजह से प्रकाश संशोषण संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाता है, वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
0: जी सर, बचाव के लिए क्या करेंगे?
3: बच्चा के लिए हम लोग को क्या, पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है। रोगग्रस्त पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है। खेत में जलभराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देता है, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा। पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो जलस रोग का प्रॉब्लम से दिख जाता है। इसी के आवश्यकता से जो भी आवश्यकता है, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो फफूंद नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा। आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंद नाशक, उसी का ही किसी का कृषि विज्ञानी का संपर्क करें, उसी के करें। जो आपको लिए आपको जानकारी होना है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसे फफूंद नाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी, यानी कि जितनी जरूरत हो उतना ही छिड़काव
3: करना चाहिए,
0: उतनी ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, मतलब जुलास रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है।
3: जो खाद और पानी कम देने, जितना चाहिए उतना। जी, जब हम पानी ज्यादा देते खाद ज्यादा देते पत्ता ज्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंग है, वो जुलास रोग करने वाला फफूंग है, वो पत्ता में आराम से दिख जाएगा। इसी वजह से हम लोग का गुणवत्ता और उत्पादन भी घट जाएगी।
0: जी, तो हमारे किसान भाई बहनों, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर, अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं। तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उसकी पहचान क्या है?
3: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है। चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृदु रोमित असीता होता है। हम लोग ये बोल देते हैं मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो देखते थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं। जो भी पत्तियाँ आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है, उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है। जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा। बाद में इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते हैं ना वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी, इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असीता मृदु रोमित असीता, अभी हम बोल रहे थे वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ ऊपर दिखते थे, अभी मृदु रोमित में क्या होते है उसमें उल्टा हो जाते, उसमें ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग श्रेणियां के जैसा आपको ऊपर दिखता है, नीचे आपका नीचे पत्ते के नीचे साइड में क्या होता है आपको फफूंग दिख सकता है, वो बैंगनी रंग का फफूंग दिख सकता है। इसी की वजह से क्या हो जाता है आपको ज़्यादा उत्पादन घट जाता है। ये दोनों रोग, एक रोग आता है जून जुलाई में एक रोग आता है जब गर्मी ज्यादा, वो चूर्णित असत्य रोग आते हैं जब गर्मी ज्यादा होती है ना, उसी टाइम में ये रोग दिख सकता है। जब उम्र ज्यादा होता है, मृद असत्य होते हैं ना, वो डाउनी मिल्डो बोलते हैं हम लोग, जब उम्र ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग शाम में हम लोग दिख सकते हैं, वो बारिश आते रहते हैं। अभी जो आजकल हम देखते हैं ना, वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से उम्र ज़्यादा, जब उम्र ज़्यादा होता है मृदरोमित का डाउनी मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा।
0: जी सर, इनसे बचाव के लिए क्या करें?
3: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए। जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और और खेती में क्या होते हैं ना, जो भी पत्ता दिखते हैं, आप चूर्ण जनिक दिखाए और मृद जनिक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाता है और पानी से फैल जाते हैं, जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा, और बालों में पूर्णित दूरी से, जब भी जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का प्लान, एक पौधे से दूसरा पौधे को थोड़ा डिस्टेंस अच्छा से करें, जैसे होना चाहिए सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए। जो फफूंग होता है, ये फफूंग दोनों का फफूंग हो जाता है, जो कचरा पत्ता का कचरा हो नीचे गिरता है ना उसी से फैलता है, इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
0: जी सर, तो मतलब अगर कोई ऐसे पत्ते दिख जाएं जिनके ऊपर ये रोग लगे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें
3: पहला
0: जी, और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
3: जब भी ये रोग ज्यादा हो जाते हैं ना, तब भी हम लोग को फफूंग नाशक का चढ़ाई छिड़काव करना है। जब भी इसमें फफूंग नाशक के चूड़ियाँ असिता में हम लोग फफूंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफूंग नाशक है 1 ml पर लीटर छिड़काव कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत चीफ एंड बेस्ट है उसी का भी कर सकते हैं, और मृदरोमित के लिए हम लोग मेटालाक्सिल MZ है उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा।
0: जी, यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
3: वही बोल रहा हूँ, अभी ये जैसा परवल इतना क्रॉप है, इसमें ज़्यादा फफूंग नाशक के लिए हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना, उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं।
0: जी सर, अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए?
3: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफूंग का, फफूंग वजह से होने वाले दो रोग जो जुलास के उसी के बारे में, और वैसे ही पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है ना, इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना, इसी में क्या होता है पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है, इसी को सब लोग को जानते हैं। जब पत्ता, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है एक जगह पीला हो जाता है, ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरी वजह से, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और दूसरा वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मोज़ेक होना चाहिए, जैसा एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक दोनों मिक्सचर हो सकता है, इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके, और पीलापन भी हो जाता है पूरा पत्ता, दूर से भी हम लोग को दिख सकते हैं पीलापन हो जाता है, और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना फूल और फल आने वाला पूरा अचानक वो घट सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पत्ता पूरा पौधों को नुकसान करेगा। वो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से, क्योंकि ये ये वायरस से कीड़ा से फैलता है, जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं, ये फिर देखते हैं थ्रिप्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना, यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है।
4: जी सर, तो इन अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन कैसे करें?
3: हमेशा हमको क्या करना है, पहला स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है। और रोगग्रस्त पौधा, जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना, इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है, ये पहला हम लोग करें। क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठता है, उसी से पूरा फैल जाता है, एक भी नहीं रुकना है रखना है। जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है, नष्ट हटा के नष्ट करना है। और खेत में जो भी खाद हम देते हैं, जो भी जितना ही कम देना पड़ेगा। अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना, इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने। अभी इसमें फॉर्मल में हम लोग वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है। जो भी होता है नीम ऑयल, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो उसी का स्प्रे कर सकते हैं, हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये सफ़ेद मक्खी दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी कर रख सकते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफ़ेद मक्खी देखते हैं, तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से। इसी से हम लोग ये कीड़ा को कीड़ा के संघ की घटना से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा।
4: जी सर, तो अब हम मृदा जनित रोगों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
3: इसमें जड़ एव थना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते हैं उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होता है ना, पौधा अचानक क्या होते है, सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से उसे एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तरफ ठीक लगता है, एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। जड़ और थाने में निचल हिमसड़न हो जाता है, इसी से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये मृदा जनक होता है। फफुंग और जंतु जो हम बोल देते हैं नेमेटोड, आजकल जो भी पुराना खेती होती है ना, जब भी आप परवल डालने के बाद दो साल हो गया, अभी तीन साल चार साल दो साल के बाद आप रखे, तो ये जो जंतु फफुंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होता। क्योंकि अभी ये मृदुजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा, पौधा सूखने से क्या होता है, पूरा आपको उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
4: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं। हाँ,
3: ये क्योंकि मृदा जनित फफुंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफुंग नाशक नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी फफुंग नाशक होगा इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफुंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं। और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर, वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जिसी में होता है, एक संक्रमित रोग हम देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो केस से बाहर हटाना है, ये देखना है, ये ध्यान में रखना है, केस से बाहर हटाना है। और जो भी जैविक फफुंग नाशक होता है, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, वही जब जैविक फफुंग नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफुंग का फफुंग निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
4: जी सर। सर अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
3: किसान उनके लिए हमें क्या बोलते हैं, पांच हम वही बोलते पांच महत्वपूर्ण बात किसान भाई, परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है, हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री को प्रयोग करें। जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और दूसरी बात है, खेत में जल भराव ना देना है। जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है, रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है, खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है। हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते है, रासायनिक दवाई जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए। नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक सिलेंडर है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
4: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब जरूरत हो, है ना सर? जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें?
3: ये जो हम बात किए थे इसी का बारे में ध्यान में रखना है, वही पांच रोग हम डिस्कस किए ना, उसी अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज्यादा होने वाला रोग है।
4: तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
3: धन्यवाद
4: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, हाय कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया हो।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें। आज की पहेली है छोटी सी नन्ही सी है।
1: रुको भाई, पूछते हैं पहेली भी पूछते हैं।
2: मौसी, पहेली सुलझाने में बहुत मजा आता है।
1: सच्ची?
3: जितनी मुश्किल पहेली उतना ज्यादा मजा।
1: तो ठीक है, आज मैं सबसे ज्यादा मुश्किल पहेली पूछूंगी।
4: सबसे मुश्किल
1: कौन सी पूछूं? हाँ, याद आ गई।
2: कौन सी?
1: सुनो, छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े बड़े। ये मजदूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े, ये बड़े चढ़े। इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम। सीख सको तो इससे सीखो, मिलजुल कैसे करते काम। अच्छा, मैं दोहराऊं?
5: हाँ।
1: छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े बड़े। सोचो, ये मजदूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े, ये बड़े चढ़े। बताओ
2: जी क्या है?
1: इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम। सीख सको तो इससे सीखो, मिलजुल कैसे करते काम। बहुत उछल रहे थे ना। मासी, पहेली लो, आ गई पहेली। सोचो, तुम्हारे आसपास भी हो सकती है, क्या पता अभी भी हो।
2: ये क्या है? मजदूर सैनिक।
6: हाँ, मजदूर सैनिक।
3: रानी भी है, छोटी सी भी है, ये कैसी बात है? अरे हाँ, ये तो चींटी है। चींटी।
5: हाँ, चींटी चींटी चींटी।
7: हाँ, ये तो मिलजुल कर काम करती है।
1: शाबाश, बिल्कुल ठीक। छोटी सी नन्ही सी चींटी काम है करती बड़े बड़े। ये मजदूर ये सैनिक होती मुश्किल में भी बड़े चढ़े। चींटी ने रानी बनकर भी ना सीखा करना आराम। चींटी से हम सीख सकते मिलजुल कैसे करते काम।
0: आओ क्विज करें। अभी आप सुन रहे थे चींटी पर आधारित ये पहेली। कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे। ध्वनिंकन बटी लैंगलिंडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा मैम। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
8: मैम, जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
9: हाँ बिल्कुल, जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छिया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछुआ चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
8: तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
9: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई, उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद, अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों के जो पत्ते के किनारे किनारे से, ठीक है। उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
8: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
9: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो, गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के एक डेढ़ महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपको अपने पौधों पे नजर आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
8: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
8: और मैम अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
9: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है, जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जाकर के देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा, तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर लेकर के आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल, उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद, जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई, इवन हम जो वैज्ञानिक है वो भी, हमें छिड़काव करना रहता है तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
8: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए?
9: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है, तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
8: जी मैम तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
9: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही है किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी, तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया, तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी, फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे, और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है। और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे खरी गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है एक दो जगह पे लगाया खरीफ में, तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया। और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है, काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल के अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था। मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
10: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
9: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
10: जी मैम, तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहे हमारे किसान भाई बहनों को।
9: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप

0: कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
1: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8 FM green@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8 FM green@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई कई के आज नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी। और वैसे तो पिछले कई सारे एपिसोड्स में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, वेक्टर बोरोन डिजीज़ की भी, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, तो कभी मलेरिया की। पर आज हम बात करने वाले हैं एक अहम वेक्टर जनित रोग की, यानी कि एक्यूट एनफ्लाइटिस सिंड्रोम की, जिसे कि हम जापानी दिमाग के बुखार के नाम से भी जानते हैं। और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी आरजे उमा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्स जिनसे पूरा इलाका सलाह लेता है, सेहत के बारे में पूछता है। हमारे साथ सेहत के साथी हैं सेहतिया सिंह जी। सेहतिया सिंह का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे पास के ही गाँव में 6 साल की बिटिया चिंगी की बात करेंगे हम आज। बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया था और चिंगी वहीं खेल रही थी, और शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक उसे दौरा भी पड़ने लगा था।
1: हाँ आरजे उमा, यह मामला AES या JE का ही था। परिवार को लगा कि बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं कराती।
0: और देखिए, दुख की सबसे बात यही है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं होती है, ऐसी घटनाएं बरसात के मौसम में कई बच्चों को होती है और कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग इस बीमारी को सही समय पर पहचानें।
1: अरे भाई, आज फिर कुछ काम की बात करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत ज़रूरी है कि JE AES क्या है, कैसे फैलता है और गाँव समाज मिलकर कैसे इसे रोक सकते हैं, ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल गांव, बाजार, खेत खलियान, हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और JE। लोग इन शब्दों से डरे हुए भी हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर AES या फिर जिसे JE भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है।
1: देखो आरजे उमा, AES का पूरा नाम है एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और JE यानी जैपनीज इन्फ्लाइटिस यानी जापानी दिमाग की बुखार, AES का ही एक गंभीर रूप है।
0: यानी AES एक बड़ा नाम है और JE इसका मुख्य कारण है।
1: बिल्कुल सही। जैसे बरसात में कई तरह के बाढ़ आते हैं, पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह से AES में कई वजहें होती हैं, पर JE उनमें भारी बीमारी है।
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है, कोई कहता है मच्छर से फैलता है, लेकिन सच्चाई क्या है?
1: आरजे उमा, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी JE का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक एम्प्लीफाइंग होस्ट्स जैसे सुअर और कुछ पक्षी जैसे बगुला, सारस वगैरह वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्स मच्छर जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इसी वजह से JE ज़्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज़्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी यह बीमारी न पूरे देश में फैलती है, न हर मौसम में, यह खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है।
0: थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना सेहतिया भैया।
1: अरे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि JE एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, सुअरों के पास तथा जंगल के इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं।
0: अच्छा, इसका मतलब मच्छर ही इसके मुख्य कारण है।
1: हाँ, बात यही नहीं खत्म होती, ये वायरस पशुओं खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।
0: और AES की किन वजहों से होता है?
1: AES कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी अगर बच्चा भूखा हो, लेकिन JEE इसका सबसे खतरनाक रूप है।
0: अब तक हम जान गए कि कैसे फैलता है, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि कौन से लक्षण दिखे जो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए, ना कि किसी और तरीके का सहारा लेना चाहिए।
1: बहुत जरूरी सवाल। AES या JEE में लक्षण अचानक आते हैं। इसमें जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, जिसे मुख्य लक्षण है तेज और अचानक बुखार, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना, या उल्टा हो सकता है कि नींद बिल्कुल आना ही नहीं, लगातार रोना, दौरा पड़ना जिसको मिर्गी या फीट बोलते हैं, बच्चा होश में न रहना, गर्दन अकड़ना या चलने फिरने में दिक्कत होना।
0: मतलब ये सारे लक्षण बहुत तेजी से खराब होते चले जाते हैं, इतनी तेजी से कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है।
1: अरे हाँ, AES समय बर्बाद नहीं कराता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें ऐसी स्थिति में?
1: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय बिल्कुल न गवाएं, घरेलू इलाज जैसे झाड़ फूंक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। रास्ते में मरीज की सुरक्षित रखने के लिए कुछ आपको हम टिप्स दे देते हैं। वो है कि बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में न दें, न पानी न दवा। बुखार ज़्यादा हो तो गुनगुने पानी की पट्टी लगाएं। फिट्स आए यानी कि बेहोशी छाए तो बच्चे के दोनों ओर करवट दिलाकर रखें। रास्ते में गिरने से बचने के लिए सिर को सपोर्ट दें। अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें। किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई उपचार बीच में न रोकें।
0: अच्छा भैया, बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की इस बीमारी को रोकने में भूमिका क्या है? हम AES या JEE को रोकने में क्या क्या कर सकते हैं?
1: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे उमा। AES या JEE के खिलाफ असली लड़ाई गांव में ही जीता जा सकता है। JEE वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को यह टीका जरूर लगे। यह टीका मुफ्त उपलब्ध है और प्रभावशाली भी है। दूसरा है कि मच्छरों को पनपने से रोकें, घर आंगन में पानी न जमने दें, सुअरों के बाड़े को घर से दूर रखें, नालियों की सफाई, पानी की टंकी को ढककर रखना और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग। इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखें, खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाएं, शरीर खुला न रखें और सुबह शाम बच्चे बाहर न जाएं। पानी और खाना हमेशा साफ रखें। स्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दें, बासी खाना न खिलाएं और लीची खाली पेट न दें। लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं। समय पर इलाज, मतलब कि जीवन बचाना।
0: मतलब समय पर अस्पताल जाना जरूरी है। अच्छा भैया, हमारे एक श्रोता हैं रामवरन, पिछले साल उनके पड़ोसी का एक बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले कि 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाए, पर जब अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी।
1: हाँ आरजे उमा, AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं। लोग समझते देर कर देते हैं और बीमारी अपना काम शुरू कर देती है। भाइयों बहनों, AES JEE कोई आम बुखार नहीं, यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय नहीं देती। हम जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी जान बचेगी।
0: अच्छा सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि AES या JEE कितनी गंभीर बीमारी है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे उमा, एक घटना आपको सुनाता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। यह कहानी है हमारे ही पास के एक गांव की, जहाँ सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और औरतें नए ओवरहेडेड टैंक से पानी भर रही थी और गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारे इलाके की आशा बहन ममता देवी अपने दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक उनका फोन बजा, दीदी मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार में है। मैंने 108 पर फोन कर दिया। एक घबराई हुई माँ की आवाज थी। ममता ने तुरंत कहा, बहुत सही किया बहन, बस मैं अभी जा रही हूँ, हिम्मत रखिए। वह अपना स्वास्थ्य बैग उठाकर तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा था, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गांव को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब पहुंचना। जब ममता ने दरवाज़ा खटखटाया तो दस्तक सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो परिवार के लिए उम्मीद थी, भरोसा था, जीवन रक्षक कदम था। देखिए आरजे उमा, कुछ साल पहले इसी इलाके में AES और JE ने बच्चों की जान ले ली थी। लोग डरते थे, समझ नहीं पाते थे कि यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है या कोई श्राप है, अभिशाप है, कोई जादू टोना है। बहुत से माता पिता झाड़ फूक में विश्वास करते थे और जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। ममता जैसी आशा बहनों सरकारी प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सिखाया गया कैसे शुरुआती लक्षण पहचाने, कैसे परिवारों को समझाएं और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस को ट्रैक करें।
0: ई कवच ये कैसे मदद करता है भैया?
1: बहुत जबरदस्त टूल है ई कवच पोर्टल। CHO और आशा को यह सुविधा देता है कि कौन बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किस परिवार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हों, पोषण NCD से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। यह ऐप उन्हें कदम कदम पर मार्गदर्शन देता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे।
0: वाह, ये तो अच्छी बात है। और ममता बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया?
1: अरे आरजी उमा, ममता तो इस काम में मिसाल बन गई। वो रोज घर जाती, उनके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहता। शुरुआत में परिवार टीके से डरते थे, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ऐसा उनका डर था। पर ममता ने कमाल कर दिया, उन्होंने अपने ही बच्चों का टीकाकरण गांव वालों के सामने करवाया और बोली, देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप भी डरिए मत। और धीरे धीरे लोगों का डर भरोसे में बदल गया।
0: अच्छा सेहतिया भैया, आपने बताया कि JE बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है? क्या इसका भी कोई टीका है?
1: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, JE से बचाव का सबसे अच्छा और मजबूत तरीका टीकाकरण ही है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चों को JE के 2 टीके जरूर लगाते हैं।
0: 2 टीके कब कब?
1: पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चों को खसरा का टीका लगता है। दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच, जब बच्चे को DPT बूस्टर लगता है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिले में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है।
0: अच्छा भैया, बच्चों के लिए तो टीका है, और बड़े लोगों के लिए भी टीका होता है क्या?
1: हाँ, जिन राज्यों में बड़ों में भी JE के केस देखे गए हैं वहाँ एडल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। 3 राज्यों जिनमें असम के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 26 जिले में 15 साल से ऊपर के लोगों को JE का टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक खास वैक्सीन इस्तेमाल होती है, JANVAC, जो कि वयस्कों के लिए बनाई गई है।
0: मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर अगर टीका लग जाए तो JE से बचाव काफी हद तक संभव है।
1: बिल्कुल आरजे उमा, आपने सही कहा। इसलिए हम आशा, ANM और CHO लगातार यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क JE का टीका लगवाए।
0: अच्छा भैया, आपको क्या लगता है हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती है?
1: बहुत बड़ा फर्क। जब रेडियो से सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचती है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़ता है, मच्छर रोकथाम पर जोर बढ़ता है, अस्पताल आने में हिचक खत्म होती है। इस तरह सेहत सही और लाभ कई जैसे कार्यक्रम व्यवहार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: तो दोस्तों, आज हमें AES या JE का पूरा ज्ञान मिला, यानी कि इस बारे में हमने पूरी जानकारी ली, इससे कैसे बचना है, इसे कैसे पहचानना है, क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
1: हम लगातार यही कह रहे हैं, आदत बदलें, सेहत सुधरेगी, साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं और जागरूक रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों ध्यान रखें, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेहत से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने फिर से, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को,
0: अपने
1: और अपने अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए। बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन के बारे में। सघन बागवानी क्या होती है और अगर सघन बागवानी करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छत्रक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे आम के पौधों के लिए, पेड़ के लिए फायदेमंद होता है, इस बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमारी करुणा से। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सघन बागवानी क्या है।
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सघन बागवानी जो है एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम दूरी पर और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित जमीन और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फलों या सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम सघन बागवानी की बात करते हैं तो क्या सघन बागवानी करने से कुछ फायदे होते हैं?
1: हाँ, कम जमीन में कई गुना अधिक पैदावार मिलती है इसको सघन बागवानी करने से, और फलों का आकार एवं गुणवत्ता भी अच्छा हो जाता है। तुराई हो, सिंचाई हो एवं देख रेख करना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पौधे के साइज को मेंटेन किया जाता है, छोटा रखा जाता है, तो जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही साथ किसानों की आय पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सघन बागवानी की विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों करना चाहिए?
1: सघन बागवानी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो इस पद्धति में मजदूर भी कम लगता है क्योंकि पौधा को छोटा रखा जाता है जिससे पौधे पर किया जाने वाला कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरे जमीन का सही सही उपयोग हो जाता है। सघन बागवानी में जैसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी इत्यादि का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है, जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस बागवानी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होती है और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक फलों की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ खेती एवं बाग लगाने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके चलते कि जमीन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अगर हम इस पद्धति से बागवानी करेंगे तो जो मेरी बढ़ती जनसंख्या का डिमांड है फल और सब्जी का, वो मिल पाएगा।
0: जी मैम। मैम, अगर हम सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई बहन तो क्या उसमें कुछ विशेष किस्म होते हैं जिनका चयन करना चाहिए?
1: सघन बागवानी के लिए ये होता है कि सभी का स्ट्रक्चर, पौधा हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, थोड़ा अलग अलग होता है। कोई अधिक ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, तो इसमें भी पौधा में भी आम में भी कुछ बौना किस्म होते हैं तो उसको प्रीफर करते हैं सघन बागवानी के लिए। इसमें वैरायटी की बात करें तो है आम्रपाली, जैसे इसको किचन गार्डन के लिए भी सूटेबल माना गया है क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होता है, कम स्पेस लेता है, तो आम्रपाली लगा सकते हैं सघन बागवानी में। मल्लिका का भी थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा ही है। पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है, ये सब का जो ढांचा होता है पौधा का वो थोड़ा छोटा होता है, इसको प्रीफर कर सकते हैं सघन बागवानी के लिए।
0: जी मैम। मैम, क्या सघन बागवानी करने के लिए भूमि की कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है और पौधरोपण कैसे करते हैं?
1: भूमि की तैयारी के लिए कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो परंपरागत बागवानी के लिए जो तैयारी होती है पौधा लगाने का, वही तैयारी इसमें भी की जाती है। सिर्फ पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी जब हम रेखांकन करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितना रखें।
0: जी।
1: तो एक आम के लिए अगर सघन बागवानी करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 5 मीटर बाय 5 मीटर है। और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढा बनाएंगे तो उसमें 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा मई के महीने में खोदकर उसको फिर मानसून आने से पहले 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भर देना चाहिए। पौधरोपण के लिए आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी, और ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा जो होना चाहिए उस गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसे किसी विश्वसनीय पौधशाला या शोध संस्थान से ही लेना चाहिए। फिर उन्हें जुलाई के मध्य तक सावधानीपूर्वक तैयार गड्ढों में विधिवत रोप देते हैं और रोपने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
0: जी मैम, अब आप हमें सिंचाई के बारे में विस्तार से बताइए कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए।
1: हाँ, अगर हम सिंचाई प्रथम 2 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, जब लगे कि हाँ पौधे को आप जरूरत है पानी का तो उसको 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि 2 साल के पौधे बहुत छोटे होते हैं 2 साल तक, तो उसका बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, कब उसे पानी की आवश्यकता है किसान भाई को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसको परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करें तो ठंडा में यानी जाड़े में 15 दिन के अंतराल पर और गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम पानी अगर देते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी पौधा को देना चाहिए, उससे पानी का बचत भी होता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: जी मैम, मैम अब हम छत्रक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: सघन बागवानी में प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौधरोपण के 1 वर्ष बाद मुख्य तने को भूमि के सतह से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर से दिसंबर जनवरी में काटते हैं। तनों की कटी सतह पर फफूंद नाशक दवा का पानी में या अंडी के तेल में घोल बनाकर अच्छी तरह लगाना चाहिए। कटाई के बाद तनों पर अप्रैल से बहुतायत में कल्ले निकलते हैं जिनमें से केवल 4 कल्लों को चारों दिशाओं में बढ़ने देते हैं। शेष कल्लों को यथाशीघ्र काट देना चाहिए। फिर इन्हीं कल्लों को पुनः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काटते हैं। इन 4 कल्लों को चारों कल्लों से पुनः 2 से 3 कल्लों का सृजन होने देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधे का वांछित छतरीनुमा आकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेड़ में जुलाई में निकले लगभग 80% शाखाओं में मंजर आ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष बाद पौधे से लगभग 10 से 12% टहनियाँ, जैसे सूखी टहनियाँ हो या रोगग्रस्त टहनियाँ हो, तो प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिले और स्वस्थ कल्लों का सृजन हो सके। इस प्रकार पौधों का सामयिक प्रबंधन करके 20 से 25 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण भरपूर फलन ली जा सकती है।
0: जी मैम, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो 20 से 25 वर्ष तक अच्छे फल मिल सकते हैं हमें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से आम की सघन बागवानी करें और सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे किसान भाई बहन जो बागवानी करते हैं, आप मैम की बातें जो मैम ने बताई है उन बातों का ध्यान रखिए, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे फल आएंगे, गुणवत्ता युक्त फल आएंगे और अधिक फल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है आपका अपना पसंदीदा FM ग्रीन, और मैं हूँ RJ अनु। उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जलवायु अनुकूल खेती पर आजकल ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड आज एक विषय हम लेकर आए हैं, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन। और इस विषय पर खास चर्चा के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर घनश्याम, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले सर, हम बात करते हैं जलवायु अनुकूल खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, तो इसके मुख्य आयाम क्या क्या हैं?
8: किसान भाइयों, जलवायु अनुकूल खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन हेतु प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 मृदा का प्रकार एवं प्राकृतिक परिस्थितियां, और नंबर 3 फसल पद्धति एवं प्रजातियां, और अंत में चौथा बिंदु है समग्र पोषक तत्व प्रबंधन।
6: तो सर, बिहार की जलवायु के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
8: हमारा जो प्रदेश बिहार है, बिहार का संपूर्ण भाग उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, जो एक मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु यानी ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर विशेष रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है, वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, और तीसरी शीत एवं शरद ऋतु जो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक चलती है।
6: जी, और साथ ही अगर मिट्टी के बारे में बता दें, खासतौर पर बिहार के बारे में, तो थोड़ी जानकारी हमारी और बढ़ जाएगी सर।
8: अगर समग्र रूप से देखा जाए तो बिहार की मिट्टियों में गंगा का उत्तरी मैदान, तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ, पुरानी जड़ोल मिट्टी या बांगर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, खादर या दियारा क्षेत्र की मिट्टी, गंगा का दक्षिणी मैदान, टाल की मिट्टी, अभ्रमक मिट्टी, कृषि उत्पादन, उपजाऊ मिट्टी एवं उपयुक्त जलवायु को ध्यान में रखकर बिहार को तीन भागों में बांटा गया है। क्षेत्र एक जिसमें 13 जिले हैं, क्षेत्र दो जिसमें 8 जिले हैं और क्षेत्र तीन इसमें 17 जिले हैं। इस क्षेत्र को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है, क्षेत्र तीन ए जिसमें 6 जिले हैं और क्षेत्र तीन बी इसमें 11 जिले शामिल हैं।
6: जी सर, अगर फसल और उनकी प्रजातियों के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन हम करते हैं तो कैसे करें, इसकी जानकारी दें।
8: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। फसल और फसल की प्रजातियां पोषण तत्व प्रबंधन में विशेष महत्व रखती हैं। यदि हम अपने फसल चक्र में केवल सस्य फसलों यानी सीरियल क्रॉप्स को ही शामिल करते हैं तो इस दशा में हमको अधिक पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि हम अपने फसल चक्र में सस्य फसल के साथ साथ दलहनी फसल भी लेते हैं तो इससे हमको कम पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दलहनी फसलें स्वतः ही वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में स्थापित करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देती हैं और साथ ही ये गहरी जड़ वाली फसलें होती हैं जो कि नीचे के पोषक तत्व जो ज़मीन में पड़े हुए हैं उनका उपयोग करके कम पोषक तत्व लेने में ही अच्छा उत्पादन देने में सफल रहती हैं।
6: जी सर, पौधे के लिए कौन कौन से पोषक तत्व ज़रूरी हैं जिनका प्रबंधन करना चाहिए?
8: वैज्ञानिक आधार पर ये पाया गया है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 17 है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ये सारे तत्व पौधे तीन तरह से प्राप्त करते हैं, कुछ तत्व जल से, कुछ थल यानी पृथ्वी से और कुछ वायु से, और इसके अलावा जो चौथा स्रोत जो होता है आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का वो जैविक

0: पर भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। साथ ही जलवायु परिस्थिति को देखते हुए कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो सूखे के मौसम में भी अच्छा करती हैं, जैसे धान की अर्जल और गेहूं की सबौन निर्जल। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो सूखे के क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं। और बहुत सी ऐसी प्रजाति हैं जो कि गहरे पानी में अच्छे से लगती हैं, जैसे स्वर्णा सबवन।
1: जी, तो सर अगर समग्र पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहेंगे हम, और इनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है इसे भी बताएं।
0: पोषक तत्वों के लिए समग्र पोषक तत्व एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। समग्र पोषक तत्व प्रबंधन में हम उन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं जो हमारे पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं। दूसरा, इनके प्रयोग से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक बना रहता है और हमको लाभदायक टिकाऊ उत्पादन मिट्टी से मिलता रहता है। हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। इसके लिए हमको जैविक खादों के साथ साथ उर्वरक और पौधों के अवशेषों और जीवाणु खाद का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ पर हम किसी तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करने में अक्षम हैं, वहाँ पर बरसात के समय में हरी खाद का उपयोग करके हम उस मिट्टी में जैव पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारी परिस्थिति सिंचित है तो उसमें हम पोषक तत्वों को पूर्ण रूप से अच्छी मात्रा में दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार की मात्रा उसमें स्प्लिट डोजेज दी जा सकती हैं, जबकि असिंचित अवस्था के लिए फसल के लिए हमको एक ही बार पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर सूखे की परिस्थिति है और पानी कम है तो ऐसे में हमको उर्वरक का पर्णीय छिड़काव करने में ज़्यादा फायदा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैविक खाद, उर्वरक, जीवाणु खाद और पौधों के अवशेषों का समुचित और यथासंभव प्रयोग मिट्टी में करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और श्रोताओं आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आज के इस वार्ता को सुनकर। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और इसमें किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए इसके बारे में आपने जाना। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU 8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति है तो यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यूं कहें, यह मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है। ये भी हम कह सकते हैं,
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है और जिसे हम बड़ी आसानी से, इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में एक झोपड़ी बनाकर इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसीलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का, इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व पाया जाता है। इसलिए इसका यदि हमारे हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण से मुक्त रहेंगे।
0: तो ये तो आपने बताया मैम कि कुपोषित अगर बच्चे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जो उनके कुपोषण को दूर करेगा, लेकिन इसके अलावे जो आम लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हुए, जो जवान लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कुपोषित नहीं हैं, तो उनके लिए क्या उपयोगिता है इसकी?
1: मशरूम की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ कुपोषण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, कल कारखाने चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है। घटती हुई कृषि योग्य भूमि से हमें बढ़ती हुई आबादी के लिए उम्दा किस्म का खाद्य पदार्थ चाहिए। तो इसके लिए मशरूम काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि मशरूम ऐसी खेती है जो कि खेती बिना खेत की होती है। इसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी बंजर भूमि पर भी यदि हम एक झोपड़ी बना देते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर जगह होता है, मतलब छत और ज़मीन के बीच का जो जगह होता है, उस जगह का उपयोग करके इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम यदि भूमि नहीं भी है तो भी हम इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ रोजगार का अवसर घट रहा है, तो ऐसे मशरूम एक स्वरोजगार का उत्तम साधन हो सकता है। इसके अलावा जिसे हम देखते हैं कि हमारे युवाओं का कृषि के प्रति रुझान घटता जा रहा है, क्योंकि वो कृषि का मतलब समझते हैं कि जेठ के धूप में कृषि में काम करना, सावन के मूसलाधार बारिश में खेती में काम करना और पूस की ठंड में खेती में काम करना। लेकिन इस सारी तथ्यों को मशरूम खेती में हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति में एक्सपोज होकर खेती नहीं करना है, बल्कि किसी कमरे के अंदर मौसम की मार से बचते हुए खेती करना है। तो ये इसलिए हमारे युवाओं का रुझान भी मशरूम की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इसमें आपका जो खेती में हम पैसा लगाते हैं, तो यह कोई ज़रूरी नहीं जितना हम पैसा लगाए हैं उतना पैसा हमें मिलेगा, और वो मिलता भी है तो एक फसल का जो क्रॉप सीजन होता है वो ख़त्म होने के बाद ही मिलता है। लेकिन मशरूम ऐसा फसल है जिसमें आज हम पूंजी लगाते हैं तो एक महीना से डेढ़ महीना के अंदर हम यदि हम 100 रुपया लगाए हैं तो वो कम से कम 200 से 250 रुपया हमको एक से डेढ़ महीने के अंदर मिल जाता है। तो इसमें हम कहते हैं आमदनी हमारा एक से डेढ़ महीने के अंदर आ जाता है। तो यह इसलिए भी हमारे युवाओं का रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो पारंपरिक फसल का उत्पादन होता है उसमें खर्च काफ़ी लगता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में मशरूम के उत्पादन में खर्च काफ़ी कम लगता है, इसलिए यह एक लाभकारी फसल है। इसके अलावा यह छोटे किसान और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसकी खेती के लिए काफ़ी कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो हमारा दूसरे फसल से जो उत्पादन के बाद जो कृषि अवशेष बचता है उस कृषि अवशेष का उपयोग करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। और इस खेती को चूंकि हम कमरे के अंदर करते हैं, इसे पाला आंधी तूफान पशुओं आदि से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके यदि हम इसको बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो इसको निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण जरिया ये हो सकता है, क्योंकि हर घर की महिला खेत नहीं जा सकती है, लेकिन यदि घर के पिछवाड़े में ही या घर के किसी कमरा में खेती करना हो तो वो हर की घर की महिला कर सकती है। इसलिए हम महिलाओं के खाली समय का सदुपयोग करके उनको सशक्त कर सकते हैं। इस तरह से मशरूम ना केवल हमारा एक पोषक आहार है, एक कुपोषण का जरिया है, बल्कि यह कई मायने में हमारे लिए उपयोगी है।
0: जी, तो ये आपने जाना कि इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, कैसे ये हमारे लिए खास है, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर धूप में और जो आंधियों में नहीं रहना पड़ता, यानी हमें भूमि पर नहीं जाना पड़ता है, बस अपने आप कमरे में ही इसे उगा सकते हैं, छोटे से कमरे में छांव में ही आप इसे उगा सकते हैं। और मैम, इसके औषधीय गुण के बारे में हम जानना चाहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग जो है हर चीज़ के औषधीय गुण को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और इसमें इससे बचाव के लिए क्या हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलेंगी, पौष्टिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी, तो इसके पौष्टिक एवं औषधीय गुण के बारे में बताएं।
1: मशरूम जो है वह सभी उम्र के लोगों के लिए स्वादिष्ट व उत्तम पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें का प्रोटीन ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन अमीनो अम्ल के कारण उच्च श्रेणी का माना जाता है, और इसे हम आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए इसके प्रोटीन को सुपाच्य प्रोटीन कहा जाता है। उत्तम प्रोटीन के कारण कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का भी उचित अवशोषण होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण दांतों की समस्याओं से दूर करता है। बी कम्प्लेक्स ग्रुप में इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है, जो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसमें लौह तत्व की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध होने की अवस्था में होती है, इसलिए यह जो एनीमिया है उस एनीमिया के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। इसमें भस्म और रेशे उपलब्ध होने कारण पेट का जो अम्लीयपन होता है या कब्ज होता है उसकी समस्या को यह दूर करता है। नियासिन और पेंटोथेनिक अम्ल जो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह चर्म रोग तथा हाथ व पैरों के जलन को समाप्त करने में सहायक होता है। मशरूम में पाया जाने वाला इंगेस्टेरॉल पाचन क्रिया के दौरान विटामिन डी में बदल जाता है। अतः यह हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा भोजन है और हड्डी के हमारे मजबूती के लिए भी अच्छा है। इसमें कम कैलोरी, कम वसा, कम स्टार्च, कम कोलेस्ट्रॉल तथा अधिक पोटेशियम सोडियम अनुपात के कारण यह उन व्यक्तियों के लिए वरदान है जो मोटापे, अधिक तनाव, हृदय रोग एवं मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। अतः यह मशरूम ना केवल स्वादिष्ट है, ना केवल पौष्टिक है, बल्कि औषधीय उपयोगिता और गुणों से भरपूर है।
2: जी,
1: इसे FAO ने एक मशरूम को संपूरक आहार का दर्जा भी दिया है।
0: संपूरक आहार यानी कि इसमें हर वो चीज़ मिलेंगी आपको जो आपके शरीर को जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आप जानते हैं कि बिहार का जो जलवायु है आप भी इससे अवगत हैं, तो क्या इसमें हम ये जान सकते हैं कि मशरूम के कौन कौन से प्रजाति हमारे इस बिहार की जलवायु में लगा सकते हैं हम, और ये अच्छा जो फल है वो हमें मिलेगा इसका?
1: मशरूम कैसे बिहार में हम लोग चार तरह की प्रजातियां जो कि लगा सकते हैं, एक बटन मशरूम, दूसरा ऑयस्टर मशरूम, तीसरा मिल्की मशरूम और चौथा पुआल मशरूम। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है वह बटन मशरूम का होता है, लेकिन बटन मशरूम की तकनीक थोड़ी जटिल है। उसमें हम लोग को कंपोस्ट बनाना होता है और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हम लोग करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट बनाने में छोटी विधि से यदि हम कंपोस्ट बनाए तो लगभग 15 दिन लगता है और लंबी विधि से बनाए तो 1 महीने लगता है। और लेकिन इसमें हमारे किसान भाई ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपोस्ट बनाने की जो खुले में प्रक्रिया होती है तो उसमें काफ़ी जो इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है और कंपोस्ट उम्दा क्वालिटी का नहीं बनता है। और लेकिन हमारे किसान भाई बना रहे हैं, भागलपुर में भी कई किसान भाई बना रहे हैं। तो आप यदि बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के लास्ट में आप इसके लिए कंपोस्ट बना सकते हैं, और कंपोस्ट बना करके फिर कंपोस्ट को निर्जीवीकृत करके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद उसको निर्जीवीकृत अखबार से ढक देते हैं। फिर जब उसमें माइसेलियम रन कर जाता है तो फिर उसमें हम लोग केसिंग करते हैं, फिर केसिंग के बाद उसमें फलन आता है। इसके इसी और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो खेती होती है हमारे यहाँ वह है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की तकनीक काफ़ी सुगम है, काफ़ी आसान है, और इसे बहुत कम कीमत पर आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। लेकिन है कि इसका मार्केट में बहुत डिमांड नहीं है, इस कारण से क्या कि इसको हम लोग लाइफ बहुत कम है, इसको हम कोई प्रोसेस करके इसको ताज़ा हम नहीं रख सकते। जैसे कि बटन मशरूम को हम हार्वेस्ट के बाद भी 1 सप्ताह तक रख सकते हैं, उसको हम लोग उसके कुछ रसायन है सोडियम पोटासियम मेटाबोसल्फाइट, उस रसायन के साथ उसको यदि ट्रीट कर दें तो इसको हम लोग 1 सप्ताह तक रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर मशरूम को हम किसी रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वह गलने लगता है। इसलिए इसका मार्केट नहीं है। लेकिन यदि इसको हम ताज़ा इसका यदि मार्केट उपलब्ध हो, यदि ताज़े रूप में हम इसका सेवन करें तो यह काफ़ी उपयोगी मशरूम है, काफ़ी पौष्टिक है और इसकी खेती बहुत आसान है। तो हम लोग जो भागलपुर में मुख्यतः इसकी खेती होती है ऑयस्टर मशरूम की होती है, और इसका भागलपुर में इसका लोकल में बाज़ार उपलब्ध है। जो भी किसान करते हैं उनको यदि पहले सीजन में जो किसान करते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग की समस्या होती है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे लोग जान जाते हैं उनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आती है। प्लस दूसरा कि इसका उत्पाद बना के रख के ऑफ सीजन में इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी भी तकनीक काफ़ी आसान है। इसके लिए गेहूँ का भूसा या पुआल की कुट्टी को हम लोग मौसम में भंडारित कर लेते हैं, जिस मौसम में उपलब्ध हो सस्ते में, उसके बाद इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकृत करने की अलग अलग प्रक्रिया है, भाप द्वारा, ताप या फिर रसायन द्वारा निर्जीवीकृत करके इसके नमी की जांच करते हैं। पर्याप्त मात्रा में नमी होने के बाद इसमें हम लोग मशरूम का बीज या स्पॉन्ज से बिजाई करते हैं और इसको पीपी बैग में, पन्नी में उसको पैक करके किसी कमरे में, झोपड़ी में, निर्जीवीकृत झोपड़ी में इसको रख देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माइसेलियम पूरी तरह से रन हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर पहला फसल निकलता है, और फिर पहला फसल तोड़ने के बाद हम उसमें लगातार नमी देते रहते हैं। फिर दूसरा फसल आता है, दूसरी फसल तोड़ने के बाद भी हम लगातार नमी देते हैं, फिर तीसरी फसल भी आती है। उसके बाद 3 फसल लेने के बाद भी उसमें फसल आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 3 फसल के बाद उसे या तो पशुओं को खिला देना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट पीट में उपयोग कर लेना चाहिए या जमीन के अंदर डाल दें कि वो कंपोस्ट में बदल जाए।
0: जी,
1: और इसकी तकनीक काफ़ी आसान होती है। इसकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने सबौर में है, भागलपुर में स्थित है, वहाँ संपर्क करके आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कई प्रशिक्षित किसान भाई भी हैं जो कि केवीके से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गाँव में भी प्रशिक्षण देते हैं, तो उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके आप इसकी खेती कर सकते हैं।
0: अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो इस मौसम में ऑयस्टर मशरूम जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं मैम, तो इसकी विधि के बारे में जैसा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे इसके उत्पादन की विधि होगी और कैसे वो इसे लगा सकते हैं।
1: ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आप गेहूं का भूसा ले लें। यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो गेहूं का भूसा ही लें। गेहूं के भूसा को आप रात भर भिगो दें पानी में। सुबह में जैसे आप धान को उबालते हैं धान से चावल बनाने के लिए, इसी तरह से उसको किसी बर्तन में लेकर के उसको उबाल लें। जब पूरी तरह से भाप आने लगेगा तो उसको उस बर्तन को उतार के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी टोकरी में, साफ़ सुथरा टोकरी में पलट दें, उसका पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे किसी प्लास्टिक सीट पर, साफ़ सुथरा निर्जीवीकृत प्लास्टिक सीट पर उसे फैला दें छांह में जहां हवा लगता रहे। फिर जब उसमें नमी लगभग 70-75% नमी बचे तब उसमें आप 10 kg जैसे आपका भूसा है तो 1 kg मशरूम का स्पॉन चाहिए, स्पॉन को उसमें मिला दें और पीपी बैग ले लें। पीपी बैग में आप मशरूम और स्पॉन को पैक कर दें, फिर उसमें रबर को बंद करके लगभग 15-20 छेद कर दें, 2-3 छेद ऊपर, 2-3 छेद पेंदा और बाकी 10-12 छेद बीच में आप कर दें। उसके बाद किसी कमरे में या तो मचान बना दें या फिर शीका बना दें या फिर ज़मीन पर आधा टुकड़ी ईटा को रख के उसको रख दें, कमरे को फिर बंद कर दें और लगभग आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे उसमें पूरा माइसिलियम रन कर गया है। तब फिर आप उसमें उसका देखेंगे कि पिन हेड निकलता है, पिन हेड निकलने के बाद 3 दिन के अंदर वो मशरूम का रूप ले लेता है। फिर आप उसको तोड़ लें और फिर नमी देते रहेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फसल ले सकते हैं। आपसे हमने बात किया बटन और ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा बिहार में मैंने बताया था 4 प्रजाति का मशरूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम है और आपका मिल्की या दुधिया मशरूम है और है पेडिस्ट्रा मशरूम। मिल्की या दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं आपका अप्रैल मई में उसकी खेती करते हैं और जो इसकी खेती के लिए भी आपको ऑयस्टर और बटन दोनों के बीच का तरीका अपनाते हैं। दोनों कुछ भाग ये ऑयस्टर का लेता है, कुछ भाग मिल्की का, ये बटन का लेता है। इसके अलावा चाइनीज या पुआल मशरूम है, उसका भी खेती हम लोग मई जून में करते हैं।
0: तो ये तो आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की विधि क्या हो सकती है और इसके अलावा भी मैम ने बताया आपको कि उपयोगिता इसकी क्या है, औषधीय गुण क्या है, मशरूम के पौष्टिक गुण क्या है। और मैम अंत में ये हम जानना चाहेंगे कि मशरूम से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि हम उत्पादन तो कर लिए लेकिन अब बारी आती है व्यंजन बनाने की, तो कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं।
1: मशरूम के लिए व्यंजन बनाने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों बहनों को कि बहुत लोग मशरूम खरीद के ले जाते हैं फिर कहते हैं कि उनको बनाने का प्रक्रिया सही ढंग से नहीं आता, कहते हैं कि बहुत बेकार लगा। एक्चुअली ये मशरूम में एक प्रकार का गंध होता है, यदि आप प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वह गंध रह जाएगा तो वो खाने में आपको फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या करें कि जब मशरूम तोड़ के आप हार्वेस्ट करके ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं तो उसे गुनगुना पानी कर लें, गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए मशरूम को डूबो के छोड़ दें, फिर उसे जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले का रस निचोड़ते हैं उसी तरह से उसको निचोड़ करके उस पानी को फेंक दें। फिर आप उसको धो करके मनचाहा तेल मसाला देकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप जैसे आप मटन बनाते हैं उस तरह से तेल मसाला देकर मटन जैसा इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप इसका भुजिया बना सकते हैं, आप इसका खीर बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका भरवा पराठा बना सकते हैं, इसका आप मशरूम कचौड़ी बना सकते हैं, मशरूम का आप कोफ्ता बना सकते हैं और मशरूम का अचार बना सकते हैं, मशरूम का बड़ी बना सकते हैं, मशरूम का खोता बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। तो इसलिए मशरूम का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है, आप जो सोच सकते हैं, बस यही एक लाइन में आप समझें, मशरूम का जो आप सोच सकते हैं, जो भी डिश सोच सकते हैं वो सारा डिश आप मशरूम का बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप मशरूम मंचूरियन की ही बात करें, जैसे मंचूरियन आप बनाते हैं तो मंचूरियन में जो आपका इन्ग्रीडियंट है वो सारा एसेसरी इन्ग्रीडियंट, मतलब जो उसको मशरूम मंचूरियन बनाने में सहायक सामग्री, वो सारा सामग्री सेम रहेगा, मुख्य इंग्रेडिएंट की जगह पे आप मशरूम को ले लें तो आप मशरूम मंचूरियन बना सकती हैं। जैसे मशरूम पकौड़े की बात करें, फूलगोभी के पकौड़ा आप जैसे बनाती हैं वैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना सकती हैं। तो फूलगोभी की के जगह पे आपको मशरूम लेना है, बाकी जो बेसन मसाला लेना था वो वैसा ही लेना है। तो मशरूम का आप जो सोच सकती हैं हर डिश मशरूम का बन सकता है, लेकिन हर ये ध्यान रखें कि उसको हम लोग थोड़ा पानी के साथ प्रोसेसिंग करके उस पानी को फेंक देंगे ताकि उसका जो एक गंध है वो गंध दूर हो जाए।
0: तो यहाँ पर हमने जाना कि मशरूम के कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं, और साथ ही आज का हमारा विषय भी था कि कुपोषण निवारण में मशरूम की क्या उपयोगिता है। तो मैम ने बखूबी बताया आपको कि इसके गुण क्या हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पौष्टिक गुण हमें मिलते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या क्या इसमें विटामिन्स मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, जो वसा फैट और इसके अलावा प्रोटीन सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं मैम ने बताया जैसे कि ये पूरक एक सब्जी है, पूरक आहार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर मशरूम मिल जाएगा तो सोचिए कि बच्चों के इस शारीरिक विकास के लिए कितना फ़ायदा होगा ये। तो इसीलिए अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत अब बच्चों को मशरूम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरक आहार में शामिल हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसकी उपयोगिता के बारे में बताई और ख़ासतौर पर कुपोषण निवारण के लिए। तो आगे भी आप सभी से मुलाकातें होंगी, हम एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें 90

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन।
11: दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सामुदायिक की बात BAU के साथ में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक किराना दुकान चलाते हैं। और जब हम किराना दुकान की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर समाज के हर तबके के लोग आते हैं और वहाँ पर बहुत सी बातें होती है। एक किराना दुकान में जब कोई बैठता है तो वहाँ पर कई बार ऐसे 4-5 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और अलग अलग बातों के बारे में वो चर्चा करते हैं, देश विदेश के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके समाज में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या उनकी परंपरा है उसके बारे में भी बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि किराना दुकान जो होता है वहाँ पर हर बात होती है, हर तरह की बात होती है और आप कह लीजिए कि हमारे जो समाज की होती है वो एक तरह से आत्मा है। हर किसी के घर पे राशन तो पहुंचता ही है, साथ ही हर किसी के घर की गपशप और हर किसी के घर की परेशानी भी वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही विस्तारित तरीके से वहाँ पर चर्चा की जाती है। ऐसे ही किराना दुकान एक संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत कुमार। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जितनी भी इनके जितना भी इनसे बन पड़ता है ये अपने आसपास के लोगों की मदद भी करते हैं और अगर इनके पास कोई जानकारी होती है, किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी है या फिर कुछ बदलाव हुए हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, ये बातें भी लोगों तक पहुंचाते हैं। और इनके पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म कह दीजिए है कि किराना दुकान है। इनके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की परेशानी बताते होंगे और इनसे जहां तक हो सके उनकी परेशानी का समाधान करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रंजीत कुमार का। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: नमस्कार मैम।
11: तो रंजीत जी, आप बताइए कि किराना दुकान आप कब से चला रहे हैं?
12: ये पारिवारिक है, बहुत पुराना है, करीब 10-20 साल हो गया।
11: 10-20 साल हो गया। तो जब किराना दुकान में आप बैठते हैं तो बहुत तरह तरह के लोग आते होंगे, बहुत तरह तरह की परेशानी बताते होंगे।
12: जी जी।
11: तो रंजीत जी, आपके किराना दुकान में तरह तरह के लोग आते होंगे, उनके तरह तरह की परेशानियां वो आपको बताते होंगे।
12: जी जरूर बताते हैं।
11: तो जब आप उनकी परेशानी सुनते हैं तो आप अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनकी मदद हो सके?
12: जी जरूर करते हैं।
11: तो किस तरह की मदद आप करते हैं?
12: पहले तो आर्थिक रूप से जरूर मदद कर देते हैं और क्या कहता है, न्यूज के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है, पेपर के द्वारा होती है, फेसबुक के द्वारा होती है, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो इस तरह से भी होता है। अब ऐसा नहीं कि बोल उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, वेरीफाई करके मतलब जो सही जानकारी होती है वही सिर्फ देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा।
11: तो मतलब आप जानकारी पहुंचाते हैं लोगों तक और
12: जी,
11: सही
12: जी।
11: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जानकारी, ना केवल जानकारी पहुंचाते बल्कि उसको वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं
12: जी।
11: जो सही बात है वही लोगों तक पहुंचे, ये बहुत ही अच्छी बात है। जानकारी पहुंचानी दूसरी बात होती है और सही जानकारी पहुंचानी सबसे ज़रूरी है। तो आप सामाजिक कार्य करते हैं तो मतलब कब आपने ऐसा काम करना शुरू किया और लोगों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, तो ये कब से आपने शुरू किया?
12: ये मैम करीब 2004 या 2005 से ये रेगुलर चल रहा है।
11: पहली बार आपने किसी की किस तरह की मदद की थी और क्यों की थी?
12: पहली बार मैम ये क्या कहता है, एक आदमी बीमार पड़ा था तो उनको हमने मायागंज ले गए थे, वहाँ डॉक्टर से जितना देर भी टाइम लगा सब चीज़ वो प्रोवाइड करवाएं, इलाज करवाएं, फिर वापस आ गए। फिर इस टाइप से मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता, ऐसा नहीं कि ये फैमिली को सिर्फ देखते हैं, समाज में जो भी आ सारे को देख करते हैं, कोशिश करते हैं।
11: तो जिनकी आप पहली बार आपने मदद की थी वो क्या बुजुर्ग आदमी थे?
12: जी मैम।
11: कई बार हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आसपास बच्चे नहीं हैं।
12: जी जी।
11: परेशान हो जाते हैं वो।
12: जी।
11: तो ऐसे और भी आसपास अभी मतलब अभी भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं?
12: जी।
11: जिस तरह की भी मदद हो।
12: जी।
11: जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पहली बार किसी बुजुर्ग को आप हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो इसके साथ आप और आर्थिक सहायता भी करते हैं, तो आपने कभी किसी की आर्थिक सहायता की हो तो किस तरह की वो आर्थिक सहायता थी?
12: आर्थिक सहायता मैम यूँ क्या कहता है, उनको दवाई जब दिला रहे थे तो उनके पास पेमेंट का इशू था, तो हमने पेमेंट इशू क्लियर कर दिया और वो ये नहीं सोचे कि वो कब देंगे। ये जब दिए तो दिक्कत
13: बस आपने यही सोचा कि दवाई के लिए पैसे दे रहे हैं तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है। तो और जब आप आर्थिक सहायता करते हैं रंजीत जी, तो क्या आप को कभी ऐसा लगता होगा कि जितनी उन्हें ज़रूरत है सामने वाले को उतनी जो रकम है हमारे पास नहीं है, तो फिर आप किसी और की भी मदद लेते हैं या फिर आपसे जितना बन पड़ता है वही आप करते हैं?
12: कोशिश करते हैं मैम कि दूसरे से भी हेल्प लें, लेकिन सब आदमी नहीं समझता है, तो जहाँ तक मेरा अपना होता है उतना ही करके छोड़ देते हैं मैम, और उनको रास्ता बतला देते हैं कि इस रास्ते से आप जाइए तो अगला आप और ज़्यादा आपका सहायता हो जाएगा मैम।
13: तो आपकी किराने दुकान पे कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जिन्हें कोई राशन नहीं लेना या कोई और चीज नहीं
12: खरीदनी? जी जी
13: जी, वो केवल पूछने आते होंगे कि भैया कोई परेशानी है तो उसके बारे में बता दीजिए, योजना के बारे में जानने आते होंगे। तो कई सारे कार्ड बनते रहते हैं, कई सारे और भी चीजें होती है, तो उसमें भी आप लोगों को मदद करते हैं?
12: ये आयुष्मान योजना जो निकला था उसमें भी बहुत सारे आदमियों को बताते रहते थे हमेशा, और ये स्वच्छ भारत अभियान का जो टॉयलेट वाला सिस्टम निकला था तो उसमें भी बहुत सारे को बतलाते रहते थे, अभी भी बतलाते थे, अभी भी छूटा हुआ है कि बहुत जगह अभी भी टॉयलेट नहीं बना है, तो उस बारे में भी बतलाते हैं कि इस रास्ता जाइए आपका टॉयलेट बन जाएगा, से करते रहते हैं।
13: तो रंजीत जी, आप लोगों को टीका के बारे में भी जागरूक करते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग टीका से डरते हैं।
12: जी जी जी मैम।
13: तो जब आप उन्हें टीका के बारे में बताते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें बताते हैं?
12: बतलाते कि नहीं, ये सरकार का जो टीका है ये वेरीफाई किया हुआ है, सब चीज़ सही है, आपको अपंग जो होता है वो नहीं होगा, बौंझपन नहीं होगा, इसी तरह से समाज में फैला हुआ ये सुई लेने से मतलब हो जाता है, लेकिन उसको बोलते कि नहीं ये कुछ नहीं होगा, हम भी लिए हैं और वो बहुत कुछ दिलाए में कहीं कोई इस तरह का शिकायत नहीं आई है अभी तक।
13: तो रंजीत जी, आपके जब किराना दुकान के इन सब के बारे में बातें तो होती हैं, लोग अपनी परेशानी लेकर भी आते होंगे, लोग अपने घर की परेशानी घर की बात भी लेकर आते होंगे, और कई बार जैसे अभी त्यौहार आने वाला है तो त्यौहारों के बारे में भी बात करते हैं, तो क्या आप कभी उन्हें कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं? जैसे अभी विश्वहरी पूजा आने वाली है तो क्या इसके बारे में भी आप उन्हें बताते हैं?
12: हाँ हाँ जरूर बताते हैं।
13: तो क्या कहानी जो है विश्वहरी पूजा के पीछे की, वो कहानी आप हमें हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
12: जरूर मैम, जरूर सुनाना चाहेंगे, क्यों और अगर हम कहीं बाहर किसी राज्य में जाते हैं, खासकर बंगाल तो जरूर जाते हैं, तो वहाँ इस सब का जो कहानी है ये बेला बेसरी वाला, तो उसको और वहाँ चाव से सुनते हैं, वहाँ बंगाल में उतना नहीं है इसकी जानकारी, तो जब हम लोग जाते हैं यहाँ का गाना वीडियो जो भी चीज़ होता है तो ये सब को बतलाते हैं, तो और वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, कभी कभी आते भी हैं वो लोग देखने के लिए यहाँ।
13: आप हमारे श्रोताओं को कहानी सुनाइए रंजीत जी।
12: जरूर मैं जरूर सुनाइए। ये कहानी है बिहला और विसरी के लिए, अभी जो अभी जल्दी इधर आने वाले हैं। ये कहानी है ऐसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये नाथ नगर चंपा नगर से शुरुआत होती है, इस कहानी में एक चांद सौदागर रहते थे, चांद सौदागर था, वो शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी के जो परम भक्त थे, तो शिवजी की पुत्री कथित पुत्री है, क्या कहते हैं मनसा देवी, वो एक बार चांद सौदागर से मिली और बोली कि आप जब मेरे पिताजी की या मेरे देव के पूजा करते हैं तो आप मेरी भी पूजा कीजिए, मैं भी तो उस लायक हूँ ना, तो लेकिन चांद सौदागर बोले कि नहीं नहीं देवी, मैं सिर्फ आप भगवान शिव के ही पूजा करूँगा, आपके नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हृदय को स्वीकार नहीं होगा। तो बेला मनसा देवी तो क्रोधित हो गई उस पर, तो क्रोधित हो गई तो का वो डराया गया, धमकाया गया कि आप अगर पूजा नहीं कीजिएगा तो मैं आपके सारे पुत्रों को मार दूंगी, आपका जहाज डुबा दूंगी, आपका बिजनेस बर्बाद कर दूंगी, हमने आपको किसी तरह से जीने लायक नहीं रहने दूंगी, सारे नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर भी चौन सौगत अगर बोले कि नहीं देवी आप कुछ भी कीजिए मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, ये अटल मतलब ये निर्णय लिया हुआ है फाइनल, तो फिर भी उनको उनका जहाज जो था वो डुबा दिए, बिजनेस खराब कर दिए, छह पुत्र जो थे सबको मार दिए, फिर भी वो नहीं माने। तो फिर जब छह पुत्र सारे को मार दिए तो भगवान शिव का पूजा करते करते चांद सौदागर के घर में फिर एक दो वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम लखिंदर था। तो जब लखिंदर बड़े हुए वो भी उसी टाइप से भी सब चीज़ करने लगे। लखिंदर जब बड़े हुए तो उनका भी साथ चांद सौदागर शादी करवा दिए देवी बिहला से, देवी बिहला से शादी करवा दिए। तो देवी बिहला को ज्योतिष जी ने बतलाया कि आपका ये जो शादी हो रहा है तो ये क्या कहते हैं आपके ज़्यादा शादी नहीं ज़्यादा दिन टिकने वाली है, क्योंकि आपका आपके पति को अकाल मृत्यु आने वाली है आज ही रात में। फिर भी वो नहीं माने कि नहीं ये मेरे रहते नहीं ऐसा हो सकता है। तो उसके पहले ये हुआ था कि चांद सौदागर एक महल बनवाए थे, तो वो लोहे का महल बनाया गया था, एकदम बारीक एक भी छिद्र नहीं हुआ, उनका जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन जो बनाने वाले वो थे विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जी, उनको देवी क्या नाम है मनसा देवी को बोला गया कि आप जो है मेरे कहने पे एक छोटा सा क्षेत्र दीजिए जो कि पता नहीं चले, चेक भी हो जांच भी हो फिर भी पता नहीं चले कि ये छिद्र है। तो सब चीज़ चेक हुआ, सब चीज़ सही हो गया, उसी महल में दोनों को रखा गया था, लखिंदर को और देवी बिहला को। तो जब प्रथम रात्रि थी तो उसी दिन रात में मतलब तो वो देवी मनसा देवी जी जिसके एक सांप को भेजा गया एकदम महीन छिद्र में, एकदम चीटी की मतलब हवा टाइप का एकदम, तो वो उसमें गया और जब गया तो देवी बिहला जो है जब पता चल गया कि इस मेरे में आ गया है, मेरे महल में आ गया है, तो देवी महल में आ गया तो उनको बोला कि आप मेरे पति को नहीं मारिए, आपको जो बोलिएगा हम करेंगे। रात भर उनका सांप का सेवा हुआ, दूध लावा जो भी चीज़ होता है खाने पीने का सब चीज़ रात भर दिया गया। लेकिन एक टाइम आया 2 से 3 बजे के रात में, दोपहर लास्ट पहरेरी में, तो उनका नींद आ गया, उनको तो नींद आ गया, बस वो उसको डस लिया तो लखिंदर को डस लिया गया। तो सुबह राजकुमार था, राजा था, तो सुबह आराम मचने लगा, पूरा राज्य में हाहाकार मच गया, मेरे राज्य का क्या होगा, सब मतलब परेशान हो गया, सब कहा कि इसको तो जलाया नहीं जा सकता है तो अब इसको क्या किया जाएगा। तो तब देवी बिहला बोली कि नहीं मैं अपने पति को जीवित करके दिखाऊँ, चाहे इसके मुझे संसार में कहीं भी जाना पड़े। तो एक केले का थम होता है, उसको मंजूसा बोला जाता है, उस पर वो नाव टाइप का बना दिए और उसी पे नदी के द्वारा चलते गए 2-3 साल 4 साल 5 साल। इस टाइप से जाते यात्रा करते करते बहुत दूर पहुँची, बीच में बहुत सारा तूफान आया, आंधी आया, बहुत कोई डराया कि नहीं आप नहीं जा पाइएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी परेशानी हुई, लेकिन देवी बिहला जो है नहीं डरी। तो वो यात्रा करते करते देवों का जो घाट होता है वहाँ धोबीन घाट कहा जाता है, तो उस घाट पे वो पहुँची। तो धोबीन घाट पे जो वहाँ का जो कपड़ा धोने वाली थी देवलोक का धोबीन घाट, मैं जो कपड़ा धोने वाले थे तो क्या नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उनको बोलेगी देवी, बोला बोले कि देवी आप, मैं इतने पृथ्वी लोक से आई हूँ, मैं इतना इतना कष्ट की हूँ, आप प्लीज़ मुझे देवों मैं भगवान शिव से मैं एक बार मुझे मिला दीजिए और देवी मनसा से भी मिला दीजिए ताकि मैं अपने पति को जीवित कर सकूँ। बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रयास किए, तब उनको दया आ गया, धोबिन जो थी तो उनको दया आ गई कि हाँ मिला देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मिला दिए। तब उनसे रिक्वेस्ट की देवी भगवान से, भगवान शंकर से भी बोले, तो बोला कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, ये जो किया है वो मेरी पुत्री है, उनसे ही बात कीजिए, वही कर सकती है इसके बारे में कुछ भी। तो देवी मनसा को बोले, तो बोले मनसा बोले ठीक है, मैं आपके सब चीज़ वापस कर दूंगा, आपके पुछे पुत्र को मार जो मरी मरा है उनको वापस कर दूंगा, कचरा हाई डूबा उनको वापस कर दूंगा, आपका व्यापार बिजनेस तबाह हो गया उनको ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी पूजा करनी होगी, ये शर्त तो आपको मानना ही होगा। तो जो राजा थे चांद सौदागर, तो वो बोले कि भगवान शिव का मैं पूजा करता हूँ, आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ। तब देवी मनसा बोली कि ठीक है आप में उनका भी पूजा कीजिए, लेकिन एक हाथ से उनका पूजा कीजिए, एक हाथ से मेरा भी पूजा कीजिए, नहीं मेरा बाएं हाथ से आपको कर कीजिए, और उनका जो जैसे ही करते हैं आप दाएं हाथ से वो कर सकते हैं। तो कहा ठीक है दे आप मान लीजिए, भगवान शिव उनको बोले तो मान लीजिए ठीक है, तो कहा ठीक है से हम पूजा कर देंगे। तो उनको जैसे ये बोले थे उसी समय से उनका सब चीज़ सही हो गया, छह पुत्र जिंदा हो गया, सातों पुत्र जिंदा हो गया, व्यापार बिजनेस सही हो गया, जहाज़ फिर वापस अपने जगह पर आ गया, सब सारे जो चीज़ समाप्त हुआ था सब चीज़ वापस आ गया। तब से लेकर आज तक वो देवी बिलाबुसरी का जो पूजा होता है वह हमारे समाज में ये चल रहा है, परंपरा के रूप में चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज इसका उद्भव स्थल चंपानगर नाथनगर ऐसे तो पूरा देश में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ का एक विशेष महत्व है।
13: चंपानगर में जो उनका स्थान है वहाँ पे एक महीने पहले से ही तैयार
12: जी जी जी जी,
13: और जो विवाह वाली रात्रि होती है पूरी परंपरा पूरी रीति रिवाज के साथ
12: जी जी बहुत होती है,
13: शादी भी कराई जाती है, और उसके बाद जो चीजें होती है मतलब जिस तरीके से बेटी को विदा किया जाता है दूल्हा की, वैसे ही पूरी शादी
12: जी। और उन्हीं की याद में जो मंजूषा पेंटिंग जो हम लोग हमारे समाज में दिख रहा है, सारे जगह दिख रहा है, सरकारी संस्थानों में या जहाँ भी दिख रहा है, उन्हीं के एक उन्हीं से वहाँ प्रेरणा लेके चल रहा है।
13: तो रंजीत जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से बिहुला बिशरी की जो कहानी आपने बताई, और साथ ही आप जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं आप करते रहिए, और हमारे समाज में ऐसे अगर कुछ और भी लोग हो जाए तो बहुत हमारा समाज बेहतर बन सकता है। तो रंजीत जी आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
12: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको जिस भी रूप में सामाजिक स्तर पे मदद करने का अवसर मिले, वो नहीं चुकी कि मेरा क्या भला हो रहा है, आपका भला बाद में होगा, पहले आप दूसरे का भला कीजिए, और ये भी नहीं देखिए उसके बदला में मुझे क्या मिलेगा। अगर आपके पास समय है और आर्थिक रूप से है करने का है तो ज़रूर कीजिए, अब पैसा नहीं है आर्थिक रूप से कम समय जरूर दीजिए, समय भी नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लिए उसको बतला दीजिए, ये प्रोसेस कीजिए, ये रास्ता पे जाइए, आपको ये हो जाएगा, इनसे मिलिए ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कीजिए कि उनका वो कुछ नहीं कर सकता था, मतलब वो नहीं कुछ बोला तो हम नहीं बोलेंगे करेंगे, नहीं, आपका ये भलाई का है, ये बाद में आपका इसको फल मिलेगा, तुरंत नहीं मिलता है। आदमी आज के ज़माने में कि तुरंत क्विक चाहता है, नहीं, हर चीज़ का थोड़ा सा समय लेना चाहिए, ये चीज़ मेरा मानना है।
13: बिल्कुल रंजीत जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि आप अपनी भलाई को बाद में सोचिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा वो बाद में सोचिए, सामने अगर कोई ऐसे परेशानी में व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी पहले मदद कीजिए, और उसका अगर जो फल मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, कह के गए हमारे कृष्ण जी गीता में गए, उन्होंने कहा है कि पहले कर्म कीजिए फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
12: जी जी मैम जी,
13: और अगर आपकी एक किसी की मदद करने से किसी एक का भी अगर भला हो जाता है तो समझिए आपने बहुत अच्छा काम किया है।
12: और एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, आप जिस दिन मदद कीजिएगा जिस भी रूप में, चाहे एक सेकंड ही समय क्यों नहीं दें, तो आप घर आइएगा, खाना खाइएगा, आराम कीजिएगा ना, तो आपको उस दिन लगेगा कि हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिए हैं। आपके पास एक बहुत पैसा है लेकिन अगर क्या कहता है शांति नहीं है मन में, तो वो खुशी नींद नहीं आएगी। ये चीज
13: किसी की मदद करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ आए, आपने जो बातें हमें, जो कहानी आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप काम करते रहिए। उम्मीद है कि आपकी कहानी से जो आप कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, उसे हमारे श्रोताओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने स्तर पर अपने आसपास के लोगों की जिस तरह से हो सके मदद कर सके।
12: धन्यवाद,
13: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। इसी कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त।

जिसकी शुरुआत भागलपुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल

पर आप कहानी भेज दीजिए और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8fmgreen के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती है और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है, और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुंझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज़ 5,000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही, इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर जरूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
7: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और फिलहाल आज जो विषय लेकर आए हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बाढ़ की स्थिति की बात करें तो इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन हम एक आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने आप के बचाव के लिए ऊँचे स्थान पर जाते हैं, अपने खान पान का पहले से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं, लेकिन जो पशु हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो तो पशुपालक भाइयों पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में पशुपालक भाई बाढ़ की स्थिति में अपने पशुओं के आहार का, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे, इन सारी जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले।
12: धन्यवाद
7: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जैसा कि हमारा विषय है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में पशुओं की रख रखाव, तो ऐसे स्थिति में पशुपालक भाई क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पशुओं के लिए उनके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
12: जी, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के में जल जमा के जल नदियों के पानी में जब काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है। तो जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है वहां के पशुपालक अपने पशुओं पशुपालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अचानक बाढ़ आ जाती है वहाँ पशुओं को के रख रखाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य तो छत पर जाके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा, कई ऐसे स्थान हैं जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में चिन्हित स्थान होते हैं, जहां से पूर्व से ही वो स्थान निर्धारित है जहां आप अपने पशुओं को बाढ़ के अचानक स्थिति में अगर पानी आ गया तो वहाँ से आप अपने पशुओं को निकाल कर ले जा सकते हैं और वहाँ रख सकते हैं। वहाँ वैसे जगहों पर उनके पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रति वयस्क पशु 3 से 5 किलो सूखा चारा और सूखा भूसा और कुछ दाना की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वैसे जगहों पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो वहां के पशुपालक अपने पशुओं के चारे के लिए ऊंचे स्थान पर चारा पहले से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वैसे स्थानों पर जहां अचानक बाढ़ आती है तो पूरी तरह से चारा भींग जाता है, भूसा भींग जाता है, हरा चारा डूब जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पशुपालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके पशुओं के चारे धन में। तो वैसे जगहों पर आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या जो ऊंची सड़कें हैं वहां अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लेकर जाते हैं या ऊंची स्थान पर लेकर जाते हैं, लेकिन पशु को ले तो जाते हैं लेकिन उनके सारा जो चारा है वो डूब जाता है। और भींगा हुआ चारा आप अगर अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप पहले से इसका निर्धारण करें, अगर बाढ़ आती है तो सूखे स्थान पर चारा का व्यवस्था करके रखें, अन्यथा ऊंचे स्थान पर जो सरकार के द्वारा चिन्हित है, पशुपालन विभाग के द्वारा, राज्य जिला प्रशासन के द्वारा, वैसे जगहों पर पूर्व से ही बाढ़ के समय जब आने की संभावना हो पूर्व से ही अपने पशुओं को ले जाकर रखें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लें।
7: जी, तो ये बात हो गई कि कैसे रख रखाव करना है। अब देखा जाता है डॉक्टर साहब की जब बाढ़ आता है तो चारे का काफ़ी अभाव हो जाता है, जो कि मुख्य यूँ कहें कि आहार है हमारे पशुओं का, तो ऐसे में पशुपालक भाई कैसे खाने का प्रबंधन करें?
12: जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब चारा एकाएक बाढ़ आने के बाद जब चारा पूरी तरह से घर से नहीं निकाल पाते हैं लोग, भूसा अपना या पुआल, तो वैसी स्थिति में जो वैकल्पिक चारा का स्रोत है, पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, या जो मकई का या सूखा डंठल है, या जो अन्य अवशेष है, फसल अवशेष हैं, अगर उसकी उपलब्धता होती है तो ठीक है, अन्यथा पेड़ की टहनियां, पेड़ के पत्ते को खिलाकर आप अपने पशुओं को वैकल्पिक रूप से खिलाकर जिंदा रख सकते हैं। लेकिन उनकी पोषक तत्वों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हरेक कॉम्फेड के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से या पशु चिकित्सा विद्यालयों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से हरेक जगह पर फीड ब्लॉक के संधारण की व्यवस्था की गई है, और खास करके अभी कंप्लीट फीड ब्लॉक जो एक ईंटे के शक्ल में कंप्रेस करके चारा को बनाकर जिसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, और जब बाढ़ की अवस्था होती है या जब चारे का अभाव होता है तो वैसे जगहों के पशुओं के लिए इस फीड ब्लॉक को आसानी से हम पहुंचा सकते हैं और वहां पर फीड ब्लॉक खिलाकर अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
7: जी, अब बात करते हैं जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो कई जगहों पर जो है गंदगी जमा हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी कई बीमारियां होने की जो खतरा है वो बना रहता है, तो ऐसे में इसका जो बचाव है वो कैसे करेंगे पशुपालक भाई?
12: जी, जल जमाव के बाद जब जब पानी जब उतरता है तो उसके बाद एक कई जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़ के बावजूद भी नई घास का बहुत तेजी से वहाँ पर पनपती है, और खास करके वैसे जगहों पर जहाँ बाढ़ का पानी जमता है या उन जगहों पर जहाँ पानी उतरता है, वहाँ के पशुपालक अगर अपने पशुओं को नया चारा जो निकला है उसको अगर खिलाते हैं तो पशुओं में छेरा नामक बीमारी जो लीवर फ्लूक के चलते होता है, जिसमें कि काफ़ी पतला दस्त होता है और उसके जबड़ा के नीचे सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हर जगह नमी की अधिकता रहती है, ऐसे समय में कई प्रकार की परजीवी जनित रोग या जो ब्लड प्रोटोजोआ है उनके द्वारा होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, जैसे बेबीसिया, थैलेरिया और ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा नामक बीमारी का भी काफ़ी प्रकोप होता है। खास करके जल जमाव अधिक होने के चलते मच्छर, मक्खी और जो चमोकन की भी अधिकता होती है उसके चलते भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इन जैसे आपने अभी हमने बताया कि वहाँ पर ब्लड पैरासाइट या ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं उससे बचाव के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में अगर आपके पशुओं में रेड वाटर या किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उसके हिसाब से चिकित्सा करवा सकते हैं। लेकिन खास करके छेरा से बचने के लिए आप अपने पशुओं के बाढ़ग्रस्त इलाके में खास करके ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल ग्रुप की दवा का प्रकोप करें जो कृमिनाशक है और आपके पशुओं में छेरा से बचाव में काम आ सकता है। खास की जब जल की निकासी हो जाए और नया घास आए तो वैसे जगहों पर अगर आप देखें घोंघे की अधिकता है तो घोंघा एक प्रकार से वेक्टर का काम करता है, तो उनको जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक का सॉल्यूशन से घोल बनाकर देकर घोंघे को नष्ट करें। अगर घोंघे नष्ट हो जाएंगे तो ये जो छेरा नामक रोग है इसके जो वेक्टर में बीच में ब्रेक होगा और ये जो छेरा बीमारी है इससे आप बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने पशुओं को जो पेरिनियल जो प्रत्येक वर्ष टीका लगाया जाता है पशुपालन विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा, इसका भी आप ले सकते हैं। HSBQ का टीका पड़ता है, फुट एंड माउथ डिजीज का टीका पड़ता है, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका पड़ता है, बकरियों में PPR का टीका पड़ता है। इन बीमारियों का टीका जो है खास करके मई जून के महीने में HSBQ का टीका, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी में जब FMD का टीका पड़ता है, तो रोग से बचाव के से टीका से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अर्थात रोग होने से अच्छा है कि रोग से बचाव हम कर लें टीका के माध्यम से। तो अपने पशुओं को टीका लगवाएं, समय समय पर कृमिनाशक दवा का प्रयोग करें, और अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में आपके का चारा डूब गया है और उसके बाद जल्द ही पानी निकला है तो अगर आप उस चारे का प्रयोग करें भी तो उसको पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा जो एफ्लाटॉक्सिन या इस प्रकार के कई फंगस लग जाते हैं जिससे भी कि पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही करेंगे।
7: जी जी, तो इस अच्छी सी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से बातें होंगी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजेश कुमार सर से, और बहुत ही उपयोगी वो विषय होगा। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और नमस्कार। उन्नत कृषि।
13: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
3: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
5: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
3: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
5: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं, वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
3: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी, उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
5: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो, बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
3: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
5: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भुट्टे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भुट्टा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
3: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
5: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
3: और बुआई की विधि क्या?
5: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
3: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
5: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पे डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM 1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
3: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
5: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
3: सर, बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
5: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में भुट्टे में, आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
3: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
5: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
3: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
5: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
3: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
5: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेड़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है पौधा है उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इसे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें, कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
3: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि,
6: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
8: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री

केसी 9081, डीएचएम 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 379, आरयू 8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.5

8% इसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना।
3: जी,
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओ, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी,
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी,
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया। है ना मजेदार बात।
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी,
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है। अजीत जी, एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी,
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
3: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी,
3: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
3: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
2: जी,
3: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
3: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
2: जी,
3: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दे।
2: इसका संबंध खान पान से है।
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
3: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: श्रोताओ, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
3: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958। स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
2: सरिया के लते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे
0: आवा। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
3: प्रणाम पिताजी।
4: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
3: लेकिन क्या पिताजी?
4: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
3: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
4: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
3: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
4: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
3: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
4: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
3: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
5: पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
6: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर साहब जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिदअली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पर कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊं कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियां भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
5: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
6: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊँगा पर मैं रियाज करूँगा, पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या है। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दे दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
5: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
6: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथे ही ताते ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथे ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं। तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
5: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
1: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
0: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
7: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
8: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
9: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
8: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
10: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
7: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
11: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
7: भगत सिंह
12: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
13: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
12: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
14: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
15: कौन है?
16: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
15: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
16: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
15: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
16: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
15: ये इस शीशी में क्या है?
16: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
15: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
16: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
15: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
16: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
12: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
14: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
16: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
17: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
16: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
12: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
14: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
7: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
11: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
18: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
19: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
20: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
19: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
21: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
22: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
21: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
23: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
24: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा। और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके तो वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी। तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा सर। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: सर, आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए हर सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियाँ या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा है।
0: तो सर, बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसे है?
1: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छी तरह से बेच सकता है, कम लागत में, जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहां पे भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
0: सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती। हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
1: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसके FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5 लाख 8 लाख 6 लाख पहुँच गया है। तो अगर 5 लाख किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
0: सर, जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
1: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको FPO भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छा आय भी, आमदनी भी कर सकते हैं, और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
0: सर, आप लगातार FPO के बारे में बात कर रहे हैं, ये FPO क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
1: हाँ, तो FPO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो FPO जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं। सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए, और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है। FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है FPO बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं FPO, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी NABARD जो है वो मदद भी करती है FPO खोलने के लिए, क्योंकि FPO एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन NABARD उसके उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका FPO का जो मालिक होते हैं, जिसको CEO बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि FPO के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान। क्योंकि जानते होंगे आप कि FPO के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर ज़रूरत, अगर उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में, इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का FPO बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए FPO का बहुत सारा संभावनाएं हैं, और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
0: सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि FPO के लोग होते हैं, उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
1: हाँ FPO के लोगों को नहीं, जो FPO के CEO होते हैं, मतलब जो FPO के मालिक होते हैं, CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस NABARD की तरफ से कवर कर लिया जाता है, और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी NABARD ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई FPO खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं FPO खोलने का।
0: तो सर, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
1: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं। अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50 से लेके 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर वो शुरू करेंगे तो उनको एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
0: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
1: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में, और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाएँ। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में। तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
0: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक एक एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें जरूर मुनाफा होगा।
0: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
1: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएँ होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले के लिए अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती अगर करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
0: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
1: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल यूज़ रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाज़ार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जानते होंगे कितना अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए, जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
0: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए और खास तौर से आप के घर पे अगर युवा हैं तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
1: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?

0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंगारू केयर डे के बारे में। अलग है, सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रहा है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत भी रखता है। और इस विषय को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हमारे शो में।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत में ही इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाले कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रही हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगा कर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी ज़िंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और ख़त्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चे की देखभाल कितनी ज़रूरी है।
0: ये तो सच में बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की ज़रूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गाँवों और दूर दराज इलाकों में। और जहाँ उपलब्ध भी होती है, वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधा लगा कर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगा कर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: ओ, तो इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफ़ी है?
1: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफ़ी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगा कर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इसमें बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीके सच में इतने असरदार हैं?
1: बिल्कुल असरदार है। कई शोधे में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज़्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर मन भर आता है।
1: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: वाह, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चे घर लौट आते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
1: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदा क्या क्या हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन सामान्य से तेज़ी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बढ़ने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उसके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहता है या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी शामिल होते हैं तो बच्चे को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती है। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूर बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चों पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
0: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए, क्या इसका कोई समय तय होता है?
1: कम से कम 1 घंटे तक तो लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ी झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए।
1: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे को बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं है बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज एक शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जाँच और टीकाकरण और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कहीं।
0: मैं आपकी दोस्त आरजे रुचि आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे इसी शो

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज़ के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। खासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
6: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो है, हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40 रुपये 30 रुपये से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
5: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
6: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
5: अच्छा,
6: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत, आप देखिए ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है। तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया था कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैटो इसमें, पॉइंटेड गार्ड में, परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूज़र है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जी और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
5: जी।
6: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से, कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
5: परवल में,
6: हाँ परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
5: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, खास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्वों की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में। तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है, और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
6: परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीने में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए, और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे अब लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पर तैयार करिए, या 2x1 मीटर पर तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है, कतार से कतार की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, और मिट्टी ले करके आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डाल डालिए 2 ग्राम, एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए, और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए, और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहें तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए, इतना उसके साथ कोई मरोहत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
5: जी।
6: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी से ढक दीजिए, और हल्का सा उसमें फवारे से इरिगेशन कर दीजिए, और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कल्ले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है, और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको, तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा, और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी ऑनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोट्स उसमें 7-8 नोट आपने बताया, हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए, और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए, और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए
5: जी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थीं यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो है इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
6: देखिए परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियां तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियां इसकी जो है, अक्सर किसान भाई क्या करते हैं जाते हैं वेस्ट बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्राप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है। तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले जाते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है। कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियां जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है। तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं, नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है। तो ये सब प्रजातियाँ हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के, 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
5: जी।
6: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
5: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, किस प्रकार के खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
6: देखिए अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट से देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
5: जी।
6: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो है 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो है नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
5: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
6: देखिए किसान भाई बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है और वह क्यों होती है, किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
5: जी,
6: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके से संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी का मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप जो है एक एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फिरामोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है, वो तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
5: अच्छा।
6: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता, वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है।
5: जी।
6: तो इस चीज़ का ध्यान देकर एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
5: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है, यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
7: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या

मान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ही चाव से खाते हैं, किसान भाई बहन बहुत ही चाव से उगाते हैं और उससे अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो अपनी फसलों को रोगों से बचा सके। अगर रोग लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है और आज हम परवल के प्रमुख रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो सब्जी है परवल। परवल के कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाटिल। सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं रोग विज्ञान विभाग से BAU सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे परवल में आने वाला रोग, इससे कैसे पहचानें और इसका कैसे प्रबंधन करना है। अभी हम परवल हम सोचते परवल ऐसे एक सब्जी है इसमें रोग लगता ही नहीं, हम सोचते पहला इसमें रोग और कीट का प्रभावित नहीं होता था। आजकल जलवायु परिवर्तन से वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं परवल एक ऐसे हुए सब्जी है इसमें भी रोग बीमारी और कीड़ा लगने के लिए स्टार्ट शुरू हुआ है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से ये रोग और कीट से क्या हो रहा है, इसका उत्पाद भी घट रहे और इसका गुणवत्ता भी प्रभावित भी हो सकता है।
0: जी सर, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले रोग देखने के लिए कम मिलते थे, तो अगर अभी रोग दिख रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो परवल में लगते हैं?
2: परवल में होता है अभी तीन चार तरफ का होता है। पत्ता में दिखने वाला रोग होता है, मृदु जनित रोग होता है, और नंजन और विष वायरस का रोग होता है, और आजकल जंतु हम बोल देते हैं नेमेटोड का भी तरफ से फैलने वाला रोग भी हम लोग को दिख रहे हैं आजकल।
0: जी सर, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पत्तों में भी लगते हैं, फिर विषाणु जनित भी रोग होते हैं और भी कई तरह के रोग होते हैं। हम शुरुआत करते हैं परवल के पत्तों के रोग के बारे में, तो परवल के पत्तों में कौन कौन से रोग आते हैं?
2: परवल के पत्तों में दिखता है झुलस रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ का होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृदरोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
0: जी सर, सबसे पहले आप हमें हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि झुलस रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है?
2: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल में झुलस रोग के बारे में। झुलस रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है, सारा पत्ता को हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल, जब वो अनुकूल मौसम होता है, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग का ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते है, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तभी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकता है। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे बोरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे, वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा झुलस रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते है, पत्ता पूरा सूख जाते है। इसी वजह से प्रकाश संशोषण संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाते है, वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
0: जी सर, बचाव के लिए क्या करेंगे?
2: बचाव के लिए हम लोग को क्या, पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है। रोगग्रस्त पत्तियों पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है। खेत में जलभराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देता है, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा, पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो झुलस रोग का प्रॉब्लम से दिख जाता है। इसी के आवश्यकता से, जो भी आवश्यकता से, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो परफ्यूम नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा। आवश्यकता से, आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंद नाशक, उसी का ही किसी का कृषि विज्ञानी का संपर्क करें, उसी के करें। जो आपको लिए आपको जानकारी होना है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसे फफूंद नाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी, यानी कि जितनी जरूरत हो उतना ही छिड़काव
2: करना चाहिए,
0: उतना ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, मतलब झुलस रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है।
2: जो खाद और पानी कम देना, जितना चाहिए उतना। जी, जब हम पानी ज्यादा देते खाद ज्यादा देते पत्ता ज्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंग है, वो झुलस रोग करने वाला फफूंग है, वो पत्ता में आराम से दिख जाएगा। इसी वजह से हम लोग का गुणवत्ता और उत्पादन भी घट जाएगी।
0: जी, तो हमारे किसान भाई बहनों, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर, अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं। तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उसकी पहचान क्या है?
2: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है। चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृदु रोग में असीता होता है। हम लोग ये बोल देते मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो देखते थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं। जो भी पत्तियाँ आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है, उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है। जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा। बाद में इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते हैं ना, वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी। इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असीता, मृदु रोमित असीता। अभी हम बोल रहे थे वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ तो ऊपर दिखते थे, अभी मृदु रोमित में क्या होते हैं, उसमें उल्टा हो जाते, उसमें ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग का श्रेणिया के जैसा आपको ऊपर दिखता है, नीचे आपका नीचे पत्ते के नीचे साइड में क्या होता है, आपको फफूंग दिख जाते हैं, वो बैंगनी रंग का फफूंग दिख सकते हैं। इसी की वजह से क्या हो जाते है, आपको ज़्यादा उत्पादन घट जाते हैं। ये दोनों रोग, एक रोग आता है जून जुलाई में एक रोग आता है जब गर्मी ज्यादा, वो चूर्णित असती रोग आते हैं जब गर्मी ज्यादा होती है ना, उसी टाइम में ए रोग दिख सकता है। जब उम्र ज्यादा होता है, मृदु असती होते हैं ना, वो डाउनी मिल्ड बोलते हैं हम लोग, जब उम्र ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग शाम में हम लोग दिख सकते हैं, वो बारिश आते रहते हैं। अभी जो आजकल हम देखते हैं ना, वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से उम्र ज़्यादा, जब उम्र ज़्यादा होता है मृदु रोमित का डाउनी मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा।
0: जी सर, इनसे बचाव के लिए क्या करें?
2: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए। जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और और खेती में क्या होता है ना, जो भी पत्ता दिखता है, अभी आप चूर्ण जनिक दिखा है और मृदु जनिक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाता है और पानी से फैल जाते हैं, जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा, और बालों में पूर्णित दूरी से जब भी, जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का प्लांट, एक पौधे से दूसरा पौधे को डिस्टेंस अच्छा से कहें, जैसे सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए। जो फफूंग होता है, फफूंग दोनों को जाता है, जो कचरा पत्ता का कचरा हो नीचे गिरता है उसी से फैलता है, इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
0: जी सर, तो मतलब अगर कोई

0: ये रोग लगे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें,
1: नष्ट करें पहला
0: जी। और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
1: जब भी ये रोग ज्यादा हो जाते हैं ना, तब भी हम लोग को फफूंग नाशक का चढ़ाई छिड़काव करना है। जब भी इसमें फफूंग नाशक के चूड़िया असिता में हम लोग फफूंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफूंग नाशक है 1 ml पर लीटर छिड़काव कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत वो चीफ एंड बेस्ट है उसी का भी कर सकते हैं। और मृद्रोमित के लिए हम लोग मेटालाक्सिल MZ है उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा
0: जी। यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
1: वही बोल रहा हूँ अभी, ये जैसा परवल इतना क्रॉप है इसमें ज्यादा फफूंग नाशक के लिए हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना, उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं
0: जी। सर अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए।
1: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफूंग का, फफूंग वजह से होने वाले 2 रोग जो जुलास्कोसी के बारे में, और वैसे ही पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है ना, इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना। इसी में क्या होता है, पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है, इसी को सब लोग जानते हैं। जब पत्ता इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है एक जगह पीला हो जाता है, ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरे वजह से, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकता है और दूसरे वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं। मोज़ेक होना चाहिए, जैसा एक एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक दोनों मिक्सचर हो सकता है, इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके और पीलापन भी हो जाता है, पूरा पत्ता दूर से भी हम लोग को दिख सकता है, पीलापन हो जाता है। और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना, फूल और फल आने वाला ना, पूरा अचानक वो घट सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पत्ता पूरा पौधों को नुकसान करेगा। वो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से, क्योंकि ये वायरस से कीड़ा से फैलता है। जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं, ये फिर देखते हैं, थ्रिप्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना, यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है
0: जी। सर तो इन अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन कैसे करें?
1: हमेशा हमको क्या करना है, पहला स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है। और रोगग्रस्त पौधा, जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना, इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है, ये पहला हम लोग करें। क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठता है, उसी से पूरा फैल जाता है, एक भी नहीं रखना है जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है, नष्ट करना है। और खेत में जो भी खाद हम देते हैं, जो भी जितना भी कम देना पड़ेगा। अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक, क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना, इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने। अभी इसमें फॉर्मल में हम लोग वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है। जो भी होता है नीम ऑयल, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो इसी का स्प्रे कर सकते हैं हम लोग, छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये सफ़ेद मक्की दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी रख सकते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफ़ेद मक्की देखते हैं, तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से, इसी से हम लोग ये कीड़ा के संख्या घटने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा
0: जी। सर तो अब हम मृदा जनित रोगों के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
1: इसमें जड़ एवं थना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते हैं उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होता है ना, पौध

0: ना अचानक क्या होते सूखने से स्टार्ट हो जाते अचानक से उसे एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तरफ ठीक लगता है, एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। जड और थाने में निचल हिमसड़न हो जाता है, इसी से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये मृदा जनक होता है। फफुंग और जंतु जो हम बोल देते हैं नेमेटोड, आजकल जो भी पुराना खेत होते हैं ना, जब भी आप परवल डालने के बाद 2 साल हो गया, अभी 3 साल 4 साल 2 साल के बाद आप रखे, तो जो जंतु फफुंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होता है क्योंकि अभी ये मृदुजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा। पौधा सूखने से क्या होता है, पूरा आपका उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
1: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं।
0: ये क्योंकि मृदा जनित फफुंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफुंग नाशक नहीं डाल सकते क्योंकि जितना भी फफुंग नाशक होगा इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफुंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं, और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर, वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जीसी में होते हैं, एक संक्रमित रोग हम देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो केस से बाहर हटाना है, ये देखना है, ये ध्यान में रखना है, केस से बाहर हटाना है। और जो भी जैविक फफुंग नाशक होता है, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, ये जब जैविक फफुंग नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफुंग निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
1: जी सर, अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: किसान के लिए हम क्या बोलते हैं, पांच महत्वपूर्ण बात किसान भाई, परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है, हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री का प्रयोग करें। जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और दूसरी बात है, खेत में जल भराव ना देना है, जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है, रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है, खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है, हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते है, रासायनिक दवाई जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की, केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक शिलिंद्र है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब ज़रूरत हो, है ना सर? जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें?
0: वही ये जो हम बात किया था इसी के बारे में ध्यान में रखना है, वही पांच रोग हम डिस्कस किए ना, उसी अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज़्यादा होने वाला रोग है।
1: तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।